मी टीवी 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को है। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान

0: राजस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीटर वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशी को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए।

हम बाहरी दुनिया से कभी भी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक हमारा मन अंदर से शांत ना हो, और हमारा मन अंदर से तभी शांत होता है जब हम अपना ध्यान प्रभु की आराधना में लगाते हैं।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

0: अभी आप अनूप जलोटा, हरि ओम शरण, अनुपमा देशपांडे और लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है।

0: शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

0: Akashvani at 90.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं कश्मीर की संत कवियत्री लालेश्वरी के विचार।
2: मैं सीधी राह ही आई हूँ और सीधी ही राह चली जाऊंगी, भला मुझे टेढ़ा संसार क्या करेगा। प्रेम योगिनी ललेश्वरी ईश्वर भक्ति में पागल सी थी, कहती हैं लो लुक नार लली लली ललनोम मरनाए मोयस तो रुजिस्न जरे, अर्थात प्रेम भक्ति की आग को लल्ला ने अपनी गोदी में दुलारा। मैं मरने के बगैर ही मर गई और अपनी जिंदगी को जीवन को समाप्त ही कर दिया। लल दद ने यह भी कहा था कि खन खन करान कुन्नो वातख नखन गसख अहंकारी सुमय खमाली सुमय आसख समी खन मुसरनाई बर्णंतरी, अर्थात अपनी क्षुधा को तृप्त करते करते तुम किसी भी स्थान या लक्ष्य तक न पहुंचोगे। साधारण भोजन करो और साधारण ही रहो, इसी से तुम्हारे बंद द्वार खुल जाएंगे और माता ललेश्वरी की आत्मा अपने प्रियतम के दर्शनों के लिए तड़प रही है। आमिपन सुदरस नाविछस लमान कति भोज दाय म्यून मिति दिए तार आमिन ताकिन पॉइजन शमान जूछुम ब्रमान गरचख गरगसहा, अर्थात मैं कच्चे धागे से नाव को समुद्र में खेती जाती हूँ। काश कि मेरा मालिक मेरी आवाज़ मेरी पुकार सुन ले और मुझे पार उतार दे। मेरा हाल मट्टी के उस कच्चे बर्तन का सा है जिसमें पानी सूख कर जाया हो जाता है। मेरी आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुँचने को लालायित है। दमी जूठुम शबनम प्यवान दमी जूठुम प्यवान सूर अनिगट रातस दमी ड्यूठुम दोहस नूर दमी असिस लोकुटकूरा दमी सपनस जवानहापूर दमी असिस फेरान थोरान दमी सपनस दजित सूर। दम भर में ही मैंने शबनम गिरती देखी, दम भर में ही मैंने पाला पड़ता देखा। रात्रि में अंधकार हुआ, दिन का उजाला हुआ। दम भर में ही मैं एक छोटी सी बालिका थी, युवा हुई। दम भर में ही मैं चलती फिरती थी और दूसरे ही क्षण में मैं जलकर राख की ढेरी हो गई। माता ललेश्वरी संसार को बता गई कि वास्तव में पूजा कैसी की जानी चाहिए। शिव शिव करान शिव नो तोषे कुश पोष दुप्तना गच्छे, अर्थात शिव शिव करते करते शिव प्रसन्न नहीं होते। कुशा फूल धूप इत्यादि हमें नहीं चाहिए, वे तो कहती हैं उचुम पंडित पन्न गरे लोल किनार वोलिंज बुजुम, अर्थात भगवान तो अपने ही घर में हैं, भीतर ही हैं और हमें अपने दिल को प्रेम भक्ति की अग्नि में जला देना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कश्मीर की संत कवियत्री ललेश्वरी के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं फलदार वृक्षों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व विषय पर डॉक्टर नीरज पांडे से अरविंद कुमार की बातचीत।

0: किसान भैया परंपरागत खेती किसानी से हट के थोड़ा बहुत और जौन खेती किसानी हो रही बाटे, विशेषकर फल और सब्जियन का, उसे कम से कम लागत में हम किसान भाई के हाथ में 4 पैसा ज़्यादा आ जाता है। तो फल और सब्जियन का खेती बहुत महत्वपूर्ण है आजकल। लेकिन बात यह है कि अगर आधुनिक ढंग से, नई तकनीक से, नए कृषि यंत्रण के माध्यम से और उन्नतशील ढंग का बीज और साथे साथे ओकरे खातिर सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोगिता बाटे, ये सबके ध्यान में रख के अगर खेती किसानी कीन जाए तो निश्चित रूप से हमारे सभी के पैदावार भी बढ़िया मिलत है और आमदनी भी ज़्यादा हो। तो फल और सब्जियन के खेती में सूक्ष्म पोषक तत्वन का उपयोगिता बाटे, ये विषय पर आज अपने बीच में श्री नीरज पांडे भैया आए बाटे। ये कृषि विशेषज्ञ हैं, खेती किसानी के जानकार हैं। इनसे इनका अनुभव बांटा जाए, इनसे जानकारी ली जाए, जोने से कि हम किसान भाइयों के ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। भैया आप बताएं कि जो फल और सब्जी हैं इनमें पोषक तत्व कहाँ हैं और इनका उपयोगिता का बट बताएं।
1: कुछ पोषक तत्व तो बहुत आवश्यक होते हैं पौधों में, जो कि बड़े जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और भी एक दो होते हैं। इनके अलावा कुछ पोषक तत्व एकदम सूक्ष्म मात्रा में पौधे उपयोग करते हैं, आपकी फसल उपयोग करती है, जिसमें तांबा, जिंक, लोहा, जस्ता, मॉलिब्डेनम, बोरान, मैग्नीज जैसे छोटे छोटे पोषक तत्व हैं। काम तो इनका बहुत छोटा होता है, परंतु अगर ये नहीं होते हैं तो फसलों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है।
0: जी
1: तो इनमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे तांबा की, जिन्हें हम कॉपर भी कहते हैं। तो इनका कार्य फसलों में ये है कि जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इनके निर्माण में ये तांबा सहायक होता है और पौधों को और भी सहनशीलता प्रदान करता है, और बहुत सारे उनके आंतरिक कार्य होते हैं
0: जी जी
1: पौधों के, जैसे अपना भोजन बनाना या रोगों से लड़ना, ऐसे कई सारे काम होते हैं जो तांबा की कमी से प्रभावित होते हैं।
0: अच्छा आप ये बताओ कि ये

0: अपने फल या सब्जी में जौन तांबा आप बताएं सूक्ष्म पोषक तत्व है एकर कमी हो जाते तो हम किसान भाई लक्षण का है कि जान पावा जाए कि हाँ ये पोषक तत्व का कमी बाटे एक बारे में थोड़ा आप बताओ।
1: पौधों में अगर तांबे की कमी होती है तो पहला लक्षण ये होता है कि नई पत्तियों का जो एकदम अभी 2-4-10 दिन में आई होती हैं उनका सिरा सड़ने लगता है।
0: अच्छा,
1: और दूसरी बात कि पत्तियों का जो पैदावार होती है जो बढ़न होती है वो बढ़ना कम हो जाता है। और तीसरा ये कि पत्तियों में जो हरापन होता है वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है हरापन में।
0: अच्छा
1: इसकी कमी से देखेंगे अगर नींबू की बात करेंगे तो नींबू और आपका संतरा हो गया और माल्टा हो गया ऐसे पौधों में डाईबैक एक रोग है जिसमें कि पौधा पीछे की तरफ से धीरे धीरे मरने लगता है पौधा।
0: जी जी।
1: और चुकंदर में देखेंगे तो इसका चुकंदर का जो सिरा है वो थोड़ा सफ़ेद होने लगता है। ऐसे ही सेब में भी उसका सेब का जो सिरा होता है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। बाकी इन फलों की जो खाल है वो भी खुरदुरी होने लगती है।
0: अब दूसरी बात आई कि ये जोन है आप बताएं कि एक कमी से ये सब दिक्कत होता है फल में तो ये निदान का है एक बारे में थोड़ा बताओ कमी के हमारे किसान भाई कैसे दूर कर सकें।
1: कमी के लिए सीधे कि कॉपर सल्फेट नाम जिसे आमतौर में नीला थोथा भी कहते हैं
0: जी
1: वो 10 से 20 किलोग्राम पाउडर फॉर्म में आता है। तो 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूमि में जब जुताई होने लगे तभी छिड़काव कर दें और इससे तांबे की कमी दूर हो सकती है।
0: ये हिसाब से अगर हम किसान भाई अपने फल और सब्जियों की खेती में कीन जाए तो निश्चित रूप से जो तांबा है या जो कि कावर कहा जाता है उसे भैया अपने सूक्ष्म पोषक तत्व के पर्याप्त मात्रा में दे के हमरे सभे अपने फसल के बचावा जा सकते हैं अपने फल के अपने सब्जी के बढ़िया पैदावार लिया जा सकते हैं। दूसर पोषक तत्व का है एक बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताओ।
1: दूसरा पोषक तत्व जिंक है हमारा जिसे जस्ता कहते हैं
0: जी।
1: और ये मुख्य रूप से जो पौधों में विभिन्न तरह के एंजाइम बनते हैं उनको बनाने में ये सहयोगी की भूमिका निभाता है उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। और साथ ही ये प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को भोजन बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और साथ ही नाइट्रोजन फिक्सेशन जो नाइट्रोजन का पाचन होता है जो नाइट्रोजन वायु में है पौधे उसे विभिन्न तरह के रूप में दूसरे तरह के रूप में लेते हैं तो उसके उसमें ये हमें मदद करता है।
0: और एक कमी से कौन कौन लक्षण आवत हैं
1: इसकी कमी से जिंक की कमी से आम नींबू और लीची में पौधों में आप देखेंगे कि पत्तियां इसकी छोटी ही रह जाती हैं। पत्तियों की जो ग्रोथ है जो पत्तियों की लंबाई चौड़ाई ये सब है वो सामान्य नहीं होती थोड़ी छोटी रह जाती है। और साथ ही आम सेब और आड़ू ये दो ऐसे फल हैं जिसमें एक रोजेट डिजीज है रोजेट बीमारी आती है वो देखने को मिलती है।
0: जी एकर निदान हम किसान भाई कैसे कीन जाए।
1: निदान के लिए हम जिंक सल्फेट नाम का एक नमक है लवण है जो कि आसानी से दुकानों पे मिल भी जाता है वो 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। और जिंक सल्फेट 0.5%
0: जी
1: या 0.2% चूने की घोल चूने के घोल में इसे बना के पत्तियों पर भी छिड़काव कर सकते हैं इससे जिंक की कमी दूर हो जाती है।
0: अब तीसर पोषक तत्व तो आवत है लोहा।
1: लोहा
0: लोहा की कमी से का होता है या कौन परेशानी हो सकत है हमारे सभी के फसलन में कौन दिक्कत और कौन कमी हो सकत है एक बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं और हम किसान भाई निदान कैसे करें एक भी चर्चा आप कर दें।
1: लोहा भी मुख्यतः क्लोरोफिल जो पौधों का हरा पत्तियों में हरा तत्व है उसके निर्माण में सहायक होता है। और पौधों में जो ऑक्सीकरण और अवकरण ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो चीज है इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसकी कमी से पत्तियों में देखी जाती है कि हरिमाहीनता यानी कि पत्तियां जो हरी होती हैं वो धीरे धीरे पीली पड़ती हैं और भूरी हो जाती हैं और इसके कारण पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। पौधों के मध्य में पत्तियों में जो सिराएँ होती हैं वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है उसका। और आयरन की कमी दूर करने के लिए 20 से 40 किलोग्राम फेरस सल्फेट मिट्टी में मिलाया जा सकता है या 0.4% फेरस सल्फेट चूने के घोल में मिला के आप पत्तों पर भी छिड़क सकते हैं।
0: एक और सूक्ष्म पोषक तत्व

0: मॉलिब्डेनम। तो एकर काम का है और एकर लक्षण का है कि हमरे सबे ओके ठीक किया जा सके अपने फल में या सब्जी में डाल के, बताऊं।
1: मॉलिब्डेनम मुख्यतः दलहनी जो फसल हैं जैसे अरहर है, चना है, इनके लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर ये नहीं है तो, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थायीकरण जो पौधों का एक कार्य है उसके लिए बहुत आवश्यक है। और जो दलहनी फसल हैं उन्हें नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो अगर मॉलिब्डेनम नहीं है तो नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। अच्छा, इसका मुख्यतः कमी का लक्षण ये है कि अगर फूल गोभी है तो फूल गोभी में देखेंगे तो आप लंबी लंबी विपटेल एक बीमारी है जो घोड़े की पूंछ की तरह ऐसे रेशेदार लगती है। और नींबू, जो नींबू और ऐसे खट्टे फल हैं
0: जी
1: उनकी पत्तियों में पीला धब्बा पड़ने लगता
0: जी
1: है।
0: जी तो एक निदान के खातिर हमरे सब है ये किया जाए कि मॉलिब्डेनम की कमी के दूर करे के खातिर सोडियम मॉलिब्डेट के पर्याप्त मात्रा में छिड़काव करके भैया इसे बचा जा सकता
1: हाँ,
0: है।
1: 200
0: भैया
1: ग्राम
0: नीरज पांडे जी आप स्टूडियो में आयन और हम किसान भाइयों के बहुत बढ़िया जानकारी दी हैं, हम सब इसे जरूर फायदा उठावा जाए। जानकारी देवे के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फलदार वृक्षों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व विषय पर नीरज पांडे से अरविंद कुमार की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल की वार्ता, हेपेटाइटिस कारण लक्षण और उपचार।
1: हेपेटाइटिस यकृत यानी लीवर का एक रोग है जो अधिकांशतः विषाणुओं यानी वायरसेस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस को मुख्यतः पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है क्योंकि पीलिया हेपेटाइटिस का प्रमुख लक्षण होता है। हेपेटाइटिस से दुनिया में प्रतिवर्ष लाखों लोग कालकल्पित हो जाते हैं। विषाणु जन्म हेपेटाइटिस मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, ए बी सी डी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई संक्रमित भोजन व पानी के उपयोग से होती है। हेपेटाइटिस बी सी व डी का इन्फेक्शन संक्रमित रक्त या बॉडी फ्लूइड से होता है, जैसे इन्फेक्टेड रक्त चढ़ाने से, ड्रग एडिक्ट्स में संक्रमित निडल के द्वारा, एक दूसरे के टूथब्रश व दाढ़ी के ब्लेड के प्रयोग से, टैटू कराने से और असुरक्षित यौन संबंधों से व स्वास्थ्य कर्मियों को इन्फेक्टेड निडल अचानक चुभ जाने से हेपेटाइटिस का खतरा हो सकता है। यदि माँ को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो नवजात शिशु में इस इन्फेक्शन के होने की प्रबल संभावना होती है। हेपेटाइटिस ए तुलनात्मक रूप से कम खतरनाक होता है व इसके क्रॉनिक लिवर डिसीज होने की संभावना नहीं होती है। हेपेटाइटिस बी अधिक गंभीर इन्फेक्शन होता है क्योंकि यह क्रॉनिक लिवर डिसीज में परिवर्तित हो सकता है व औरों को भी संक्रमित कर सकता है। इस संक्रमण से मरीज को लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर भी हो सकता है व लिवर फेल होने से मृत्यु भी हो सकती है। विषाणु जनित हेपेटाइटिस चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, उसके सामान्य लक्षण एक से होते हैं, जैसे बुखार होना, भूख न लगना, जी मिचलाना व उल्टी होना, पेट दर्द, पीला मूत्र होना व आँखों में पीलापन आ जाना। वायरल हेपेटाइटिस को डायग्नोज करने के लिए विभिन्न प्रकार के पैथोलॉजिकल टेस्ट उपलब्ध हैं। इन टेस्ट के द्वारा हेपेटाइटिस किस प्रकार की है इसको जाना जा सकता है व बीमारी की गंभीरता का भी आकलन किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक स्टेज में जा चुकी है या अभी यह एक्टिव स्टेज में है या नहीं, इसका आकलन भी कर सकते हैं और दवाओं के रिस्पॉन्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस अधिकतर सेल्फ लिमिटिंग यानी

0: ठीक हो जाने वाली बीमारी है। इसमें कोई विशेष दवा की आवश्यकता नहीं होती है। मरीज को आराम करने और सामान्य भोजन की सलाह दी जाती है। उल्टी को दवा या इंजेक्शन से कंट्रोल करते हैं। दर्द निवारक दवाएं, शराब व गर्भ निरोधक गोलियों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। यदि हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक स्टेज में चली गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए विभिन्न प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे इंटरफेरॉन या अन्य एंटीवायरल दवाएं। ये चिकित्सकीय देखरेख में दी जानी चाहिए। गर्भवती माँ यदि हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है तो नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। वह 12 घंटे के अंदर नियमित हेपेटाइटिस बी टीकाकरण करते हैं। इससे शिशु को पूर्ण सुरक्षा मिल जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूषित पानी व भोजन के प्रयोग ना करने से हेपेटाइटिस ए और ई से बचा जा सकता है। वह संक्रमित रक्त, इन्फेक्टेड निडिल, दाढ़ी के ब्लेड, टैटू या असुरक्षित यौन संबंधों इत्यादि से बचकर हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से बचाव कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल अग्रवाल की वार्ता, हेपेटाइटिस कारण, लक्षण और उपचार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। शाम 4 बजे आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन, दिन में 12:15 पर उस्ताद अली अकबर खां का गायन और रात 10:30 पर संगीता शंकर का वायलिन वादन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर वरुण मिश्र के स्वर में भजन सुनिएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे धारा सिंह, सुरेंद्र कुमार पटेल और ओम प्रकाश दीपक और साथी। 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। 11:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। दिन में 12:30 पर आपकी पसंद कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, प्रस्तुति मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी अमरावती देवी से कविता पाठ। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर।

शाम 5 बजे फिल्म संगीत 5:15 पर आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे मेरी खेती मेरी बात के अंतर्गत श्याम बाबू और शिवजीत गौतम की बातचीत। शाम 7:31 पर काव्य कौमुदी कार्यक्रम में कवि होंगे शैलेश कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर विजयानंद तिवारी। रात 8 बजे चित्रपट संगीत। रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और रात 9 बज

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: यात्रामुद्देश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पञ्जीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी से श्री रामचरित मानस तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनकर गरुड़ कृतकृत्य हो गए। अब उनके इस आश्रम से विदा होने की घड़ी आ पहुंची थी, किंतु विदा होने से पहले वे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते थे। ये 7 प्रश्न थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत और असंत का भेद, सबसे महान पुण्य, सबसे भयंकर पाप और मानस रोग कौन से हैं? काकभुशुंडी ने उत्तर दिए, सबसे दुर्लभ मानव शरीर है और अभागे हैं वे जो इसे पाकर हरि भजन नहीं करते। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। संत मिलन के समान अन्य सुख नहीं है। संत परोपकार करते हुए दुख स्वीकार कर लेते हैं और असंत दूसरों को दुख देने में सुख का अनुभव करते हैं। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म अर्थात सबसे महान पुण्य बताया है और पर निंदा को घोर पाप। सभी प्रकार के मानस रोगों की जड़ है मोह अथवा अज्ञान, क्योंकि इसी से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीटरवेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म से भजन। लीजिए सुनिए गोपी फिल्म का ये भजन। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

अभी आपने जुबिन नौटियाल के स्वर में ये भजन सुना और अब फिल्म से भजन का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है चित्रकूट। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ। और वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर बनाया जा रहा है देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेश के 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 1,10,00,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए अभिभावकों के खाते में करीब 1,320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण भी किया। इस अवसर पर 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है।
1: हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10,00,000 का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
0: प्रदेश के अन्य जिलों में भी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस अवसर पर सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित कार्यक्रम को डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने संबोधित किया। श्री पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस पहल से शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लाखों परिवारों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को

0: माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
1: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं। श्री योगी ने कहा कि 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है।
2: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने कल 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग भी पहुंची। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से कल कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कल उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। वहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का कल 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने भाषा विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहे नए कोर्सेज के बारे में चर्चा की।
3: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधि भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
1: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाअभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57,62,00,000 पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
4: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275

0: करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
1: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में कल हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में हल्की बूंदाबांदी का क्रम जारी है। इस अंचल में हल्की हवाओं के चलने के बावजूद उमस का असर कायम है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है चित्रकूट। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ। और वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर बनाया जा रहा है देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन राग है भोपाली तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन, राग था भोपाली तोड़ी। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे सुभाष कामंत। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। हम सब ईश्वर की संतान हैं, हमें चाहिए आपस में भाईचारा बनाए रखें।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, AI, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
3: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह

0: और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक

0: सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से PF खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा

0: युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू ऑल्सो होल्ड टॉक्स विद हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट एंथनी अल्बनेजी इन मेलबर्न टुडे। Centre approves procurement of copra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सी का समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
2: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
1: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership.

0: www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथोनी अल्बनीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भी मुजाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मुफादात के तहफ़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातजा के साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। बैलोकमी मालियाती फंड की जानिब से इस साल के दौरान भारत की शरे तरक्की 7% रहने के तखमीने के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है और विंबलडन जूनियर्स 2026 में भारत के अर्नब पापरकर ने एक तारीख रकम की है और वो 36 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम और इक्तसादी रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। सप्लाई चेन में रुकावट के अलावा तवानाई के बहरान से भी दोचार है। वजीर आजम ने कहा कि ऐसे वक्त में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए फितरी और लाजमी है कि वो एक भरोसेमंद शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ें। वजीर आजम ने मजीद कहा कि माशी ताउन और तिजारती समझौता 2022 में एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं।
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत से शोबों में भारत में दस्तियाब वसी मौके का जिक्र करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया की मईशतों के दरमियान तकमील को भी वाजे किया।
2: न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकते। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बढ़ाए।
1: जनाब मोदी ने मुल्क में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मौके का फायदा उठाने की गरज से ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकारों को मदद किया और साथ ही साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों की बढ़ती हुई मौजूदगी का भी खैर मकदम किया।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर

0: एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: सीईओज फोरम के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इक्तिसादी रोडमैप बिजनेस से मुतालिक तकरीब से भी खिताब किया, जिसमें दोनों मुल्कों के 200 से ज्यादा सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फितरी तालमेल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुश्तरका जमहूरी कदरें भारत बहरुल काहिल के लिए एक मुश्तरका विजन, अवाम से अवाम के दरमियान वसी ताल्लुकात और मजबूत सियासी मफाहमत ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी शराकतदारी के लिए एक जबरदस्त बुनियाद की राह हमवार की है, जिससे दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ेंगे और खुशहाली लाएंगे। अब हम मेलबर्न में अपने नामा निगार के पास चलते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम ने मुतबादिल सिफारती रास्तों से हटकर एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए महफूज इक्तिसादी इंजन की तरफ एक फैसलाकुन तब्दीली की निशानदेही की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लामरकजी इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का इशारा देते हुए बराह रास्त मुल्क से मुल्क के कॉरिडोर का मुतालबा किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खाम मसाइल को बराह रास्त भारत के बड़े पैमाने पर साफ सुथरी तवानाई, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचा पाइपलाइन से जोड़ते हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बाद में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तजारत, दिफा, अहम टेक्नोलॉजी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 रोज़ा दौरे पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। वो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर उस मुल्क का दौरा कर रहे हैं। मरकज ने तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आम की खरीदारी को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों के मुफादात का तहफ्फुज़ किया जा सके। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि इससे किसानों के लिए बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मजबूरी में कम कीमत पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज़ किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ये मंजूरी तमिलनाडु के जरिए पेशकर्दा तजवीज पर मुबनी है। इस मंजूरी के तहत 87,000 मैट्रिक टन से ज्यादा खोपरा रियासत में फरोख्त किया जा सकेगा। मंजूर शुदा खरीदारी के कम से कम कुल इमदादी कीमत की कदर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मजीद ये कि इस साल के दौरान तमिलनाडु में 96,000 मैट्रिक टन से ज्यादा तोतापुरी आमों की खरीदारी को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत मंजूरी हासिल हुई। खरीदारी MIS के तहत की जाएगी। इंटरवेंशन स्कीम का मकसद इस बात को यकीन बनाना है कि तोतापुरी आम की काश्त करने वाले किसानों को उनकी पैदावार की मुनसिफाना और मुनासिब कीमतें हासिल हो सकें और मार्केट की कीमतों में अचानक गिरावट की वजह से नुकसान पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज किया जा सके। इस इकदाम से तवक्को है कि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकेगा और किसानों की आमदनी का तहफ्फुज किया जा सकेगा। सखलीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम शुरू की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 15 लाख से ज्यादा तदरीसी अमले को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर फराहम किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस स्कीम के तहत रियासत भर के असातिज़ा और उनके खानदानों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। बुनियादी और सेकेंडरी तालीम से वाबस्ता तकरीबन 15 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। बाकायदा असातिज़ा के अलावा इस स्कीम से शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अहल अमले को भी फ़ायदा पहुँचेगा। असातिज़ा और उनके अहल खाना को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मीटिंग में मुफाहमत नामे पर दस्तखत भी किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने असातिज़ा की सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अपने वादों को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के महकमे बुनियादी तालीम के मुलाज़मीन के लिए ये जामे समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंश्योरेंस प्रोग्राम भारत में अपनी नौइयत का पहला इकदाम है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी

0: एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह इम्तिहान इस माह की 17 और 18 तारीख को मुनाकिद किया जाएगा। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो इम्तिहान के लिए अलॉट किए गए शहर के बारे में जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cisirnet.nta.nic.in से अपनी स्लिप डाउनलोड करें। बैन अल-अक़वामी मालियती फंड IMF की जानिब से रवां कैलेंडर साल के दौरान भारत की तरक्की की शरह 60% रहने के तखमीने के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। IMF की फ्लैगशिप ششماہی रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट ने अगले कैलेंडर साल में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार की शरह मोतदिल होकर 6.4% रहने का तखमीना लगाया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जिली हिमालयी, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने आज दिन में साहली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान आज सुबह कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में औसत बारिश हुई, जिससे शहरों को काफी राहत मिली। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए, जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी मौसर तौर से खत्म हो गई है। सदर ट्रंप ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि वह अब नए हुर्मुज में तिजारती जहाजों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ताजा हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए हैं। उन्होंने इस बात के लिए भी खबरदार किया कि अगर ईरान ने मजीद हमले जारी रखे तो वाशिंगटन और ज्यादा सख्ती से जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरानी हमलों का सख्त जवाब देगा। भारत के अर्णब परकर ने 36 साल में विमंडल जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। 18 साल पापरकर ने क्वार्टर फाइनल में महज 52 मिनट में जापान के रियो तबाता को 6-2, 6-1 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा सरकारी दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वजीर आजम का यह दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात को एक नई समत देगा। रोजनामा प्रताप ने कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली NCR में बारिश शुरू, मुंबई से उत्तर प्रदेश तक संगीन सूरत हाल। वजीर दाखिला ने 3 रियासतों के वज़राए आला से फोन पर बात करके मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, मशरक़ वस्ता में फिर जंग के खतरात, सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदा खत्म किया। अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह है, विजय दिवस से पहले फौज ने कारगिल के जाबाजों को याद किया, नायब सदर जमहूरिया आज 1 रोजा दौरे पर उड़ीसा जाएंगे।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथोनी अल्बानीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के CEO फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ भी मुजाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मफादात के तहफ़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के बयान के बाद किए गए हैं, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का

0: सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सभी श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप कैसे हैं? जाहिर सी बात है, अच्छे होंगे, खुश होंगे और हो रही बारिश का आनंद ले रहे होंगे। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है समय का सदुपयोग। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय हमारे जीवन का एक बहुत ही कीमती संसाधन है और श्रोताओं, समय अगर एक बार चला गया ना तो वापस कभी नहीं आता। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। समय का सदुपयोग मतलब समय को व्यर्थ में ना गंवाना, बल्कि उसे सही और उपयोगी कार्यों में लगाना है। हमारे सभी काम का एक फिक्स टाइम हो, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो, या परिवार के साथ बैठना या फिर कोई अन्य ज़रूरी काम, हम एक समय निर्धारित करके रखेंगे तो हमारा काम भी टाइम पर होगा और समय भी खराब नहीं जाएगा। इससे हमारा मन और शरीर शांत रहेगा। जैसे कभी कभी जब हमारा काम पूरा नहीं होता है तो मन में उथल पुथल मची रहती है, अरे अभी हमारा ये काम बाकी है या अभी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, ये सब मन में हमेशा चलती रहती है। अगर हम समय की कद्र करें और उसका सदुपयोग करें तो हम अपने लक्ष्य को भी आसानी से पा सकते हैं।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं नमस्कार प्रयागराज, और जो आज का हमारा विषय है वो है समय का सदुपयोग। समय अमूल्य धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। समय नष्ट करना मतलब जीवन को नष्ट करने के बराबर है। उचित अवसर पर उचित कार्य पूरा कर लेना ही समझदारी है। जो लोग आज का काम कल पर डाल देते हैं उनका काम कभी भी पूरा नहीं हो पाता। आज कल छात्र हों, बच्चे हों या हम हों, अधिक समय हम अपना फ़ोन में निकाल देते हैं और इससे हमारा बहुत सारा समय नष्ट हो रहा है। कबीर दास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जी हाँ, हमें जो कार्य कल करना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए और यह हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। हमें समय का सदुपयोग अपने अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई, व्यायाम और परिवार के साथ उठना बैठना। समय हमारे जीवन की सबसे बड़ी निधि है, इसे खोना उचित नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अगर जो वक्त हमारे पास है वह बर्बाद हो गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा और हमें पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा।

श्रोताओं, समय ही वह चीज़ है जिसे जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा खराब समय का ही उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम समय पर रहते अपना कार्य करेंगे तो हमें जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी और हमारा मन और शरीर स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा। श्रोताओं, अब चलते चलते आपको कुछ टिप्स दिए देते हैं अमरूद के महत्व के बारे में। श्रोताओं, अमरूद हमारे प्रयागराज का प्रसिद्ध फल है, ये तो आप सभी जानते हैं। अमरूद एक बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। इसमें संतरे से भी अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अमरूद में फाइबर की मात्रा अन्य फलों से ज़्यादा होती है। इसमें कम कैलोरी होती है। यह फल विटामिन और खनिज से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है।

श्रोताओं, अब आपको एक सुविचार पढ़ के सुना रहे हैं जो हमें नीरज त्रिपाठी जी ने भेजा है। कहती हैं, क्षमा करना भी एक अजीब औषधि है। देते हम किसी और को हैं, लेकिन घाव हमारे हृदय के भर जाते हैं। और एक सुविचार है, जीवन से पराजय शब्द पूरी तरह हटा दीजिए, क्योंकि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर पराजय एक सीख है और विजय उस सीख का परिणाम। तो श्रोताओं, इन्हीं सुविचार के साथ कार्यक्रम आज का नमस्कार प्रयागराज समाप्त होता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए नमस्कार प्रयागराज को समाप्त करने की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, पहला गीत हमने लिया है तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने, संगीत दिया है नदीम शोर ने और रचना है समीर की।

0: will you
1: dance with me?

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए आप सुनिए प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत। शान और साथियों की आवाज़ों में संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और रचना है इरशाद कामिल की।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए पैड मैन फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह के आवाज़ों में। संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने और रचना है कौसर मुनीर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए लखनऊ और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। लखनऊ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ा। लखनऊ में यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ एक रोजगार योजना से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य पहली नौकरी में प्रवेश करने वाले युवाओं की आकांक्षाओं को मजबूत करना और उद्योग व कार्यबल के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना है।
3: हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से EPFO की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया। पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया। लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया।
2: लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र अब क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज लखनऊ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। यह विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम पिछले 65 वर्षों में नहीं हो पाया उसे बीते एक दशक में पूरा करने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में आधुनिक मौसम उपकरणों की स्थापना से अब सटीक और समय पर पूर्वानुमान लगाना संभव हो सकेगा। योजना भवन लखनऊ में 25 जून 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना, मसूर जैसी फसलों की MSP पर खरीद अवधि 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए चरण के तहत यूपी के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति का अनुमोदन पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री रोनी सिंह बिट्टू 1 जुलाई 2026 को लखनऊ स्थित अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच अब भारतीय रेलवे के 3,500 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क पर तैनात हो चुका है। यह प्रणाली ट्रेन की टक्कर रोकने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 4 जुलाई 2026 को प्रथम लखनऊ आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित कैबिनेट मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और विधायकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय तक निकली अभिनंदन यात्रा में 42 स्थानों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन श्री नवीन ने 5 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून 2026 को लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास किया गया। योग अभ्यास कार्यक्रमों में अधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के और समाज के संभ्रांत नागरिकों के साथ गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक व्यवसायिक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न नेताओं ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात। मामले की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह जांच रिपोर्ट जल्दी मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और ADG जोन लखनऊ प्रवीण कुमार को सौंपी थी। 23 जून 2026 को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में लखनऊ के प्रसिद्ध रंगकर्मी डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी भी शामिल थे। लखनऊ के कलाकार को पद्म पुरस्कार मिलने पर शहरवासियों ने प्रसन्नता

0: पेट की है। पूरे विश्व में ताजियादारी और अदादारी के लिए मशहूर लखनऊ में मुहर्रम का महीना शोक के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाहों, इमाम बाड़ों और घरों में मजलिसों का दौर जारी है। 26 जून 2026 यानी 10 मुहर्रम को ताजियों को जुलूस की शक्ल में करबला तक ले जाकर दफन किया गया। पहली मुहर्रम को शाही दरी का जुलूस अपने रवायती अंदाज में निकला। 7 मुहर्रम को मेहदी और 8 मुहर्रम को अलम फातह फरात के बाद 9 मुहर्रम को अलम शब आशूर का जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया।
1: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
2: रामपुर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं नकल विहीन वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा जनपद के केंद्रों पर शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक निगरानी के बीच आयोजित कराई गई। परीक्षा में 92% उपस्थिति दर्ज हुई। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी। सभी अधिकारियों ने अपने दायित्वों का पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया, जिससे परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं तथा दैनिक आवश्यकताओं को सहज रूप से पूरा करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का वातावरण बच्चों के लिए आकर्षक एवं प्रेरणादायी होना चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन कायाकल्प के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों तथा नामांकन अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को एक अनुरोध पत्र सौंपा। इस अवसर पर संगठन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश अग्रवाल ने कहा कि PPE मॉडल पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 100 बीघा भूमि ग्राम जगतपुर व ग्राम बेनजीर में अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कार्रवाई पूर्ण न होने से मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज शुरू न होने से आम जनता समय से बेहतर इलाज न मिल पाने से परेशान है। संगठन ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द पूरी होनी चाहिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद योग में दिखाई दिया। जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पनवड़िया स्थित सांस्कृतिक सद्भावना मंडप में जनपद स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों एवं आमजन की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में सभी प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। मुख्य अतिथि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्व के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत की प्राचीन योग, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा परंपरा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योग हमारी हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र कुमार मीणा ने तहसील सदर के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए तथा उसके वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल एवं संरक्षण भी सुनिश्चित करे।
3: जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक पेड़ माँ के नाम, उसको जरूर अपनाएं और सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कम से कम एक पेड़ जरूर अपने संरक्षण में उसको बड़ा करें।
2: रामपुर में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा किया गया। डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद गेट स्थित पोलियो बूथ पर फीता काटकर एवं बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक अभिभावक जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

को चीरते हुए सीधे बाहर निकल गईं। उसी वक्त पास के ट्रैफिक सिग्नल पर एक खातून अपनी गाड़ी में ग्रीन सिग्नल होने का इंतजार कर रही थी। गोली गाड़ी के दरवाजे को पार करती हुई खातून के हाथ में लगी। मौके पर मौजूद एक शख्स ये नज़ारा देख कर सन्न रह गया, क्योंकि गाड़ी के अंदर से एक कुत्ता फायरिंग कर रहा था। सामाइन कहते हैं कि जिंदगी में कब कौन सा लम्हा इंसान की तकदीर बदल दे, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ है बहरीन में रहने वाले भारतीय नज़ात कृष्ण कुमार श्यामला रविंद्रन के साथ। बरसों से लॉटरी खरीदते आ रहे कृष्ण कुमार को इस बार एक टिकट करोड़पति बना गया। उसके लिए उन्होंने कोई पैसा भी खर्च नहीं किया था। एक प्रमोशनल ऑफर के तहत मिली मुफ्त टिकट ने उन्हें करीब 52 करोड़ रुपए का मालिक बना दिया। दरअसल 43 साल कृष्ण कुमार पिछले 23 बरसों से बहरीन में रह रहे हैं। तमाम जिद्दोजहद के दरमियान उन्होंने मुस्तकबिल में कुछ बड़ा हासिल करने की उम्मीद से अबू धाबी बिग टिकट लॉटरी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पिछले 7 सालों में वो हर महीने टिकट खरीदते रहे। किस्मत ने आखिरकार इस साल उनका साथ दिया। 4 जून को निकले अबू धाबी बिग टिकट ड्रॉ में उनका टिकट फातह करार दिया गया और उन्हें 2 करोड़ दिरहम का जैकपॉट मिला, जिसकी भारतीय करेंसी में कीमत लगभग 52 करोड़ रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि ये टिकट उन्हें एक खास प्रोफेशनल स्कीम के तहत मुफ्त मिला था। सामाइन, न्यूजीलैंड में एक खातून के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेडिकल साइंस को हैरान कर दिया और उस खातून की जिंदगी में 13 साल बाद उजाला भर दिया। ये अनोखी दास्तान न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की लीजा रेट की है। जब लीजा महज 11 साल की थी, तब उनके दिमाग में एक ट्यूमर हो गया था। इस ट्यूमर ने उनकी आंखों की नसों को इतना दबा दिया था कि उन्होंने अपनी देखने की कुव्वत पूरी तरह खो दी थी। लेकिन नवंबर 2000 की एक रात में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लीजा रात को सोने से पहले अपने गाइड कुत्ते को गुड नाइट कहने के लिए नीचे झुकी, तभी उनका तवाजुन बिगड़ गया और उनका सर पास रखी कॉफी टेबल से जोर से टकरा गया। सर में दर्द होने की वजह से लीजा उस वक्त तो सो गईं, लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो दंग रह गईं। उन्हें धुंधला ही सही, लेकिन सामने की चीजें साफ नजर आ रही थीं। समाइन सोचिए, एक ऐसा जानवर जिसकी 5 आंखें हों, हाथी जैसी सूंड हो, लेकिन साइज में वो आपकी उंगली के बराबर हो। सुनने में ये आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म का एलियन लग सकता है, लेकिन आज से करीब 50.5 करोड़ साल कब्र समंदरों में सच में ऐसा एक अजीबोगरीब जानवर राज करता था। इसका नाम ओपिबीनिया है। कैम्ब्रियन दौर का ये अनोखा जानवर आज के किसी भी जानवर से मेल नहीं खाता। साइंसदान के मुताबिक ओपिबीनिया के सर पर डंठल जैसी 5 आंखें होती थीं, जो देखने में छोटे मशरूम या बल्ब जैसी लगती थीं। इनमें से 2 आंखें आगे, 2 पीछे और 1 बिल्कुल बीच में हुआ करती थी। इसके चेहरे के आगे एक लंबी और बेहद लचीली सूंड थी, जो इसके पूरे जिस्म की लंबाई के करीब 1/3 थी। उसका मुंह सीधे आगे नहीं, बल्कि सूंड के नीचे सिर के पिछले हिस्से में नीचे की तरफ होता था। ओपिबीनिया के पास ज़मीन पर चलने के लिए पैर नहीं थे। पानी में तैरने के लिए इसके जिस्म के दोनों तरफ 15 जोड़ी फ्लैप या पंख बने हुए थे। भले ही इसकी बनावट किसी हॉरर फिल्म के मॉन्स्टर जैसी लगती हो, लेकिन हकीकत में इसका साइज बहुत छोटा था। सामाइन, समंदर की गहराइयों में रहने वाला मेंटिस श्रिम्प पहली नज़र में बिल्कुल आम सा जानवर महसूस होता है। इसे देखकर शायद ही कोई अंदाज़ा लगा पाएगा कि इसके अंदर कितनी हैरान कर देने वाली ताकत और अनोखी खूबियाँ छिपी हुई हैं। साइज में छोटा होने के बावजूद ये समंदर के सबसे ख़तरनाक और दिलचस्प शिकारी जानवरों में गिना जाता है। इसकी रफ्तार, ताकत और देखने की कुव्वत ऐसी है कि बड़े बड़े समंदरी जानवर भी इससे दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं। मेंटिस श्रिम्प असल में एक तरह का समंदरी कॉन्स्ट्रिशियन है, जो एस्टोमेटोपोटा की जमात से मुंसलिक है। साइंसदान अब तक इसकी 250 से भी ज़्यादा नस्ल की पहचान कर चुके हैं और माना जाता है कि अभी भी कई नस्ल ऐसी हैं जिनकी मुकम्मल मालूमात सामने नहीं आई है। इसका रंग बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन ये खुले में ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर वक्त ये समंदर की तलहटी में बने अपने छोटे छोटे बिलों के अंदर छिपे रहते हैं। सामाइन, अमेरिका के मैसाचुसेट्स के मछुआरे माइकल पैकेट के साथ पेश आए सच्चे वाक्य ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। बात साल 2021 के जून माह की है, जब सुबह केप कॉड के ठंडे समंदर में
56 سالہ تجارتی گوتہ خور مائیکل

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, लीजिए सुनिए वरुण मिश्र के स्वर में भजन।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की।
2: हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। भारत ने 2030

0: अभी तक
1: 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
2: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
3: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। मेलबर्न सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्वेडर ने आज मेलबर्न में इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में राज्य के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क चिकित्सा उपचार मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जल भराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्ष में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur.
5: मीडियो वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई को महान भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता गुरुदत्त की जयंती है। उन्होंने अपने निर्देशन और अभिनय से भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम दिया। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, आर पार, चौदवी का चांद। तो श्रोताओं, आपको सुनवा रहे हैं चौदवी का चांद फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, जिसका हमें इंतज़ार था वो मौसम आ गया, हमें तपती गर्मी से राहत दे रहा है। जी हाँ श्रोताओं, बारिश का मौसम। श्रोताओं, यह प्रकृति का अनमोल तोहफा है। जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं और मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को आनंदित कर देती है, पेड़ पौधे फूल सारे हरे भरे नजर आते हैं, बच्चे पानी में भीगने लगते हैं, सभी छतरी लेकर नाचने लगते हैं,

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। हर दोस्त हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई नया रंग भरता है। दोस्त के बिना जीवन बेरंग और फीका सा लगता है। दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि जीवन के हर रंग को खूबसूरत बनाने का एहसास है। श्रोताओं।

जीवन के सफर में एक साथी मुसाफिर की तरह है जो अनजान रास्तों से गुजर रहा है, और दूसरा साथी उस राह की तरह होता है जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाता है।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं आप उन चीज़ों में खुश रहें जो आपको खुशी देते हैं, आप उन चीज़ों से परहेज करें जो आपके लिए सही नहीं है। जब मन खुश हो तो संगीत ज़रूर सुने, और इस बात पर हम आपको भी सुनवा रहे हैं एक ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये था हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का गीत श्रेया घोषाल अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। संगीत दिया था विशाल शेखर ने, रचना थी इरशाद कामिल की। और अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। कलाकार हैं धारा सिंह, सुरेंद्र कुमार पटेल, ओम प्रकाश, दीपक और साथी। तो पहले आपको सुनवाएंगे धारा सिंह और साथियों के स्वर में ये बिरहा गीत।

अभी आपने धारा सिंह और साथियों के स्वर में ये खेमटा गीत सुना, और लीजिए अब सुनिए सुरेंद्र कुमार पटेल और साथी के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आपने सुना सुरेंद्र कुमार पटेल और साथियों के स्वर में ये लाचारी गीत। लीजिए अब सुनिए ओम प्रकाश दीपक और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के हमारे कलाकार हैं फेमस संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती। आइए सुनते हैं इनके प्यारे प्यारे से नगमे।

बजरंगी भाईजान, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत अदनान सामी की आवाज़ में। कौसार ने गीत लिखा था, प्रीतम ने तर्ज बनाई थी। लीजिए आप सुनिए भूल भुलैया फिल्म से ये गीत। श्रेया घोषाल की आवाज़ है, समीर ने गीत लिखा है, प्रीतम ने तर्ज बनाई है।

प्रीतम चक्रवर्ती बंगाली हैं, जिन्हें प्रीतम के नाम से जाना जाता है। 14 जून 1971 में इनका जन्म हुआ। बॉलीवुड फिल्मों के एक प्रख्यात भारतीय संगीत निर्देशक, संगीतकार, गायक, वादक और रिकॉर्ड निर्माता हैं, जो वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। लगभग 150 दशकों में फैले करियर में प्रीतम 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत रचना की है। कई शैलियों को कवर करके प्रीतम भारत के सबसे बहुमुखी संगीतकार हैं। वह फिल्म फेयर पुरस्कार 2 बार जीत चुके हैं। 4G सिने अवार्ड्स भी इनको मिल चुका है। 3 स्टार स्क्रीन पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। 3 IFA अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गैंगस्टर से। सईद कुरैशी की आवाज़ है, प्रीतम ने तर्ज बनाई है।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। इरशाद कामिल ने गीत लिखा था, प्रीतम ने तर्ज बनाई थी। लीजिए अब सुनिए गरम मसाला फिल्म से गीत सोनू निगम की आवाज़ में। मयूर पुरी ने गीत लिखा है, तर्ज बनाई है प्रीतम ने।

इसी गीत के साथ एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के हमारे कलाकार थे फेमस संगीतकार प्रीतम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम बोलते नगमे। स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के।

0: ना ऐसा ही महसूस हुआ मुझे।
1: अच्छा, तो क्या ये गाना बारिश से संबंधित है?
0: नहीं, उसका कुछ हिस्सा नदी में शूट किया गया है, हुगली नदी के आसपास। मुझे लगता है आप पहुंच जाएंगी। ये उसमें शर्मिला जी नहीं है,
1: ओ ओ
0: ठीक है, उसमें विद्या बालन है।
1: ओ, हावड़ा ब्रिज दिखाया गया है?
0: हाँ, दिखाया गया है।
1: अच्छा, कुछ कुछ पहुंच रही हूँ।
0: हाँ, और ज़रा देखिए, जब सांझ का वक्त होता है और रंग भी, लोग अपने काम से मुझे लगता है थोड़े विरत हो जाते हैं, और एक समय होता है जब वो कुछ रचने बैठते हैं। एक कमरा है बहुत ही प्यारा सा, जिसमें सैफ अली खान है, और जब वो धुन बनाते हैं पियानो पर बैठकर, तो वो कहते हैं कि यू आर माइन, से यू आर माइन। अब वो कहते हैं इससे काम नहीं बनेगा, अब इस पर कुछ शब्द, फ्यू वर्ड्स, मतलब इतना बढ़िया है दो लोगों का रिश्ता, वो किसी बंधन में नहीं है, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे चौखट के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन चौखट के अंदर, यानी कि प्रेम के अंदर नहीं डूबे।
1: बहुत सारी बातें और भी हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, इस गीत से जुड़ी हुई, जो कि हम आगे बताएंगे, लेकिन मैंने पूरी तरह से पहचान लिया है। अब मैं प्ले करती हूँ ये गीत, और आप ये बताइए कि ये वही गीत है जो दिल में आपके बातें उठ रही हैं, वो कुछ कुछ इससे मिलती जुलती है।

0: यही गीत है। ऐसा लगता है स्वानंद करकरे जी ने कितना सुंदर उन भावों की बयानी की है। पीयू बोले, क्या ये बोले जानू ना, मतलब कुछ हो रहा है लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है।
1: और ये जो शानदार सा गीत है जो दिल को छू जा रहा है, और इस गीत को जब हम देखते हैं पर्दे पर नेहा जी, तो इतनी बढ़िया केमिस्ट्री दोनों की दिखाई जा रही है, सैफ की और विद्या बालन की, कि जिस तरह से वो रच रहे हैं संगीत, वैसे वैसे वो गीत को बनाते हुए मन के भावों को वो एक रूप एक आकार दे रही हैं, जिसमें कि उनका भी कहीं कुछ जो दिल है वो भी धड़कता हुआ सा दिखाई सुनाई पड़ रहा है। अव्यक्त रूप में जो प्रेम को प्रदर्शित करने की बात होती है वो इस गीत में भी समाई हुई है। और ये बंगाली जो उपन्यास, महान उपन्यासकार थे शरद चट्टोपाध्याय जी, जिनका की बांग्ला ये उपन्यास है परिणीता, और उस पर ये फिल्म बनी थी। और हाँ, इस फिल्म से जुड़ी हुई एक बात और भी है नेहा जी, जो मुझसे जुड़ी हुई है वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन बाद में पहले इस जो ये जो लाइन आ रही है कितनी खूबसूरत सी है, कितनी चंचलता से भरपूर है और मन को भी तरंगित कर रही है, वो सुन ले।

0: वंदनी जी, जब आप कह रही थी कि ये जो लाइन आ रही है बहुत ही खूबसूरत है और मन को तरंगित करने वाली है, तो मैं वहीं रुक गई थी कि ज़रूर इसमें कुछ ख़ास बात होगी। जैसे ही श्रेया गाती हैं, मैंने पूछा एक नदी से,
1: बलखा के चल दी
0: हाँ कहाँ, तो वो कहती हैं कि सागर से मिलने का सपना है। पहले वो घबराती है, फिर इठलाती है, उछलती है, फिर धीरे धीरे पहुंच जाती है। तो ये एक बात जो स्वानंद करकरे जी ने भी स्वीकार किया कि भाई कोई भी भाव आता है उसमें घबराहट भी होती है, लेकिन जो सपना है वो ही मुझे लगता है कि अल्टीमेट काम करता है। और ज़रा देखिए, इतने सुंदर ढंग से श्रेया घोषाल ने इन शब्दों को आवाज़ दिया है, मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ।
1: साथ ही साथ एक आवाज़ और भी है सोनू निगम की
0: जी,
1: जो कि मधुरता से भरपूर है। और एक बात और भी आपसे साझा करना चाहते हैं कि परिणीता फिल्म 1953 में भी आई थी, जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी अशोक कुमार और मीना कुमारी ने। और 2005 में आई जिस फिल्म परिणीता की हम बात अभी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें विद्या बालन के अभिनय की चर्चा तो बहुत रही, साथ ही साथ शांतनु मोइत्रा का जो संगीत रहा वो इतना शानदार बन पड़ा है। वो जो बंगाल की मिट्टी की जो खुशबू होती है वो उनके संगीत में समाई हुई सी दिख रही है, और जो कि पूरी तरह से ये जो पूरा परिवेश है बंगाली परिवेश इस फिल्म में है, तो वो उसको उभारने में पूरी तरह से मदद करता है उनका ये संगीत जो कि बेइंतहा खूबसूरत है। साथ ही
2: इसके शब्दों में उसका असर महसूस हम कर सकते हैं। और ये जो कहानी है, जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, वो स्वानंद किरकिरे ने बखूबी किया है गीत के जरिए। और देखिए आगे जब अगर हम बात करते, जब मैंने कहा था कि मैं
0: एक बात बताएंगे,
2: हाँ एक बात बताएं जो मुझसे जुड़ी है, तो बस इतना कहना था मेरा कि जब मैं इलाहाबाद आई तब जो पहली फिल्म मैंने थिएटर में देखी थी इलाहाबाद आने के बाद, वो परिणीता ही थी।
0: माय गॉड।
2: तो इसलिए इस फिल्म के साथ मेरा बड़ा ही एक अलग सा, एक तरह से कहते नहीं, एक रिश्ता बन जाता है, बहुत सुखद यादें इससे जुड़ी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: सुंदर, ये जो सोचिए कि आपका रिश्ता इस फिल्म से जो है बहुत सारी बातों को याद दिला रहा होगा आपको ना
1: जी।
0: वो फिल्म से तो एक रिश्ता है ही, और मैं सुधी श्रोताओं को कहूँगी कि इनका आना हुआ था इलाहाबाद तो आप अंदाज लगाइएगा और चिट्ठी लिख भेजिएगा कि और कौन सा रिश्ता जुड़ा होगा जिससे कि एक नया रिश्ता इस फिल्म के साथ बनपा होगा। सुधी श्रोताओं, ये एक क्लू है और मुझे पता है कि आप ये क्लू समझ गए होंगे। ज़रा देखिए, जब हुगली नदी पर ये गाना शूट हो रहा है और सैफ धोती पहने हुए हैं, चप्पू धीरे धीरे चल रहा है और विद्या उनके जस्ट घुटनों के पास हैं, है ना
1: जी।
0: और ये ख्यालों में हैं वो दोनों, असल में वो पियानो पे साथ में बैठे हुए थे लेकिन ख्याल में वो चले जाते हैं उस तरह, वह डूब जाते हैं। कहते हैं जब लोग डूबते हैं तो शायद अपने पन को याद करते हैं, तभी वो धोती पर आ गए और उन्होंने जो परिधान पहना वो साड़ी है।
1: नेहा जी, ये तो कहते हैं ना कि अपनायत वाली जो बात आपने की है ना कि अपनेपन में जब हम व्यक्ति होता है तो वो अपनी मिट्टी को ही याद करता है।

0: और अपनी संस्कृति में वो अपनी वेशभूषा में वो और ज़्यादा नज़दीक आ जाता है दिलों के भी। तो ये वही भाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब जब इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली है तो कोई दूसरा गीत भी दस्तक देने के करीब है और सामने नजर आ रही हैं शोक अल्हड़। बंगाल की भी हम बात कर रहे हैं तो बंगाल का जादू जो आंखों में समाया हुआ है जिनके, वो सांवला सा खूबसूरत सा जो रूप है वो है किसका?
1: विपाशा बसु का।
0: तो चलिए गीत की आमद हो चुकी है तो गीत की गुनगुनाहट को, जो पहली गुनगुनाहट है, उसको श्रोताओं तक साझा करते हैं।
1: जरूर।
2: चाह है तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

0: सच में ये जब गीत शुरू हो रहा था उससे पहले ये जो लाइनें सोनू निगम जी ने अपनी आवाज में कही कि चाह है तुझको चाहत से ज्यादा, माना है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, मतलब एक चाहत होती है और एक गहरी चाहत होती है। पहले भी हम लोगों ने कहा कि प्रेम ने अभी दस्तक नहीं दिया है, हृदय में सिर्फ आहट भर है। यहाँ पर भी वही बात है कि वो जो एहसास है गहरे होने का वो अभी नहीं है। और जब कोई एक पक्ष अपनी बयानगी कर रहा होता है अपने भावों की और दिल दिमाग जहन में जो हलचल चल रही होती है तो वो इस तरह की बातें करते हैं जिसको सोनू निगम ने बखूब समझा है और अपनी आवाज़ के जरिए व्यक्त किया। वंदना जी लिखा किसने है?
1: फैज़ अनवर साहब ने इस गीत को लिखा है। और देखिए हर बार बोलते हैं नगमे में ये बात उठती है कि जब शायर या कवि गीतकार बनता है तो उसकी जो रचनाएं होती हैं उसमें आप देखेंगे कि अलग सा एक गहरापन होता है। उसके जो अर्थ होते हैं, अर्थ के जो उसके जो मायने होते हैं बोल के, वो इतने असरदार होते हैं जो सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं,
0: छूते हैं और ठहर जाते हैं ना
1: जी।
0: जब वो लिखते हैं कि तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कने चुराए, ज़रा देखिए 24 घंटे में से सिर्फ पल दो पल की बात है और उस पल दो पल में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो धड़कन पहले यादों में सिर्फ हम ही होते हैं लेकिन जब किसी से मुलाकात होती है किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे प्रभावित हो जाते हैं तो धड़कन वही होती है उसमें लेकिन यादें और बातें दोनों लोगों की हो जाती हैं ना।

0: नेहा जी, जब हम इस गीत को सुन रहे हैं तो सोनू निगम की जो आवाज है वो किस तरह से इस गीत को इतना पूरा असर बना रही है कि बस मन कर रहा कि इस गीत को हम सुनते जाएं और इस गीत में हम खो भी जा रहे हैं। और जिस तरह से सोनू निगम है सामने दिखाई भी पड़ रहे हैं, दृश्य में भी उन्हीं हैं, बिपाशा बसु के साथ में अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, वो प्रेम जो बस उन्होंने एक झलक जिसकी देखी है और उनकी धड़कनें बेतरतीब हो गई हैं। लेकिन देखिए, जब चीज़ें हमारे सामने आकर गुजर जाती हैं और फिर मिलने की तमन्ना होती है और वो मुलाकात नहीं हो पाती है तो हम बेबस से हो जाते हैं। सब कुछ वही होता है, हवाएं वही चलती हैं, हमारी सांसें, हमारी धड़कनें वही होती है, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा, रूठा रूठा सा, उदास उदास सा लगता है हमको, क्योंकि वो जो एक ख़ास व्यक्ति है जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे पास नहीं है। तो ये उदासी का जो भाव है, वो भी जो बेकरारी है, उसके जरिए यहाँ बयां की जा रही है।
1: आपने कहा कि जब कोई शायर गीतकार बनता है तो जब वो गीत लिखते हैं तो उनका जो अंदाज होता है लिखने का या किसी चीज़ को पढ़ने का, देखने का, बिल्कुल जुदा होता है। अब ज़रा देखिए, उन्होंने कहा चुपके से ये बात पता नहीं चली और एक छोटी सी रोशनी, जिसको इन्होंने आग कहा है, यहाँ पे आग लगा दिया है और अब कुछ संभाले नहीं संभल रहा, अब किस तरह का इम्तिहान दूँ। मतलब जब भाव अपने पराकाष्ठा पर है, प्रेम का भाव, और कह रहे हैं कि भाई हमेशा वही वाली बात है हृदय में, बातों में, निगाहों में, तो अब इससे बढ़कर कि हाँ, इस हृदय में सामने वाले के लिए बहुत सारा प्रेम प्यार है, इससे अधिक इम्तिहान और क्या दूँ।

0: हमने स्वानंद किरकिरे जी के बोलों को हमने देखा, अभी हमने फैज़ अनवर साहब को देखा, और उसके बाद आपको पता है कई बार हम लोगों ने बात की है, किसकी
1: किसकी?
0: मजरूह सुल्तानपुरी जी की।
1: क्या बात है।
0: वो वाला गीत याद होगा ना, जिसमें संध्या थी और रेत वाली बात कर रहे थे, वो मजरूह साहब ने लिखा था ना?
1: नहीं,
0: याद
1: आया? वो नेहा जी, वो हसरत जयपुरी साहब का गीत था, तुम तो प्यार हो।
0: अरे माफ कीजिएगा, देखिए श्रोता
1: आप बहुत इस तरह की गड़बड़ करती है नेहा जी, लेकिन हम बात को सही कर रहे हैं, दुरुस्त करते चले।
0: नहीं, मैं आपको चेक कर रही थी कि आपको याद है कि नहीं।
1: ये आपका चेक करना कभी बंद होगा कि नहीं?
0: ये आप समझेंगे नहीं ये बात क्या है असल में।
1: मुझे चेक करने के बजाय मेरी चेकबुक चेक कीजिए, तो मुझे लगता है वो ज्यादा फायदेमंद मेरे लिए होगा।
0: सुदेश्रोता, पता है कई बार कौन किसको चेक कर रहा है पता ही नहीं चलता। बस ये सबसे अच्छी बात है कि सही बात तक हम पहुंच जाएं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी जी।
1: तो देखिए, मजरूह यानी कि जख्मी, जो अपने बोलों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए हमारे दिल को जख्म से भर देते हैं, ये जख्म इतना प्यारा होता है नेहा जी, क्योंकि इसमें प्यार की बातें होती हैं, मोहब्बत की बातें होती हैं, उदासियों की भी बातें की जाती हैं, उसकी भी बयानियाँ होती हैं, लेकिन वो जो दुख होता है, वो जो पीड़ा होती है, वो भी बहुत शानदार होती है। लेकिन फिलहाल अभी तो हम पीड़ा की तरफ या उदासी की तरफ नहीं ले जाएंगे, अभी देखने दिखाने की बातें हो रही है कि किसी की एक झलक जब हम देखते हैं, जैसा कि भी पहले गीत में सुना कि किसी की एक झलक देखकर क्या क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई एक झलक दिखा रहा है तो सामने वाला क्या कुछ कह रहा है वो सुनवा दे पहले, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं।

0: भाई, पहली बार जब मैंने इस गीत को देखा सुना, देवानंद साहब, माय गॉड, बहुत हैंडसम नज़र आ रहे हैं। और पहली बार जब वो नंदा को देखते हैं, क्यूट भोली भाली सी, आह, दिल हार बैठते हैं। तभी वो बोल निकले, ऐसे तो ना देखो कि नशा छा जाए। और मोहम्मद रफ़ी साहब, माय गॉड, ऐसा लगता है जैसे कंठ में उस समय प्रेम का रस भरा हुआ था, तब उन्होंने ये गीत गाया है। ऐसा था क्या?
1: नेहा जी, देखिए, जब रफ़ी साहब की बात होती है
0: जी
1: तो दिल थम सा जाता है और धड़कने बिखरने सी लगती है, क्योंकि वो आवाज़ का जो जादू है, जो नशा है, वो सर चढ़कर बोलता है और हम बिल्कुल खो से जाते हैं। और जिस तरह से शब्द लिखे गए हैं, मजरू साहब के जो शब्द हैं, वो कितने मानी खेज नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम संगीत को नहीं भूल सकते हैं। एस जी बर्मन साहब का जो संगीत होता है वो इतना तरोताज़ा होता है कि जब कभी भी कोई भी गीत उनका हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो बंगाल से, क्योंकि आज हम लोगों ने जितनी काफ़ी बातें की तो बंगाल से जुड़ी हुई बातें रही हैं, तो यहाँ पर भी बंगाल का जो जादू है, जो संगीत में घुला मिला सा दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक अलग सी धुन पिरोना, अलग सी लयबद्धता की जो बात होती है वो सुनाई जब पड़ती है, और उसमें नए नए प्रयोग करके ऐसे गीत की रचना करना, ऐसे संगीत को बनाना कि जो हमारे हृदय को छूते हुए हमारी रूह में उतर जाए, वो कमाल बरवंदाही कर सकते हैं। तो अब देखिए कितनी खूबसूरत सी बात कही जा रही है, देखिए सुनते हैं।

जब वो कहते हैं कि ये देखिए, ये जो प्रेम की बयानगी है कि हम झुक करके खड़े हो जाएंगे, तुम अगर काफिर कहोगी तो भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं पे सजदा करूंगा। मुझे लगता है कि ये जो पवित्र प्रेम का भाव है, इसे समझने की ज़रूरत है, और प्रकृति में इस तरह का प्रेम पनपे, इसकी चाहत होनी चाहिए।

जब ये गाना शूट हो रहा है और गाने के बीच में देवानंद साहब एक ऐसा लम्हा आता है कि वो एक चित्र बना रहे हैं, उस पर मजरूह सुल्तानपुरी साहब लिखते हैं कि ज़रा देखिए ये खुदी से बेखुदी का दौर जब आता है तो जो हंसी से गेशों हैं वो अपने आप खुल जाते हैं।

0: रहे हैं। उस पर मजरूर सुल्तानपुरी साहब लिखते हैं कि ज़रा देखिए, ये खुदी से बेखुदी का दौर जब आता है तो जो हंसी से गेशो हैं वो अपने आप खुल जाते हैं। क्या इंसान इतना बेकल हो सकता है? तो देवानंद साहब जब आगे कहते हैं कि मैं तो आनंद में हूँ, मस्ती में हूँ, मैंने पता नहीं क्या क्या कहा, ऐसा ना हो कि आप उस खेमे में आ जाएं जिस खेमे में मैं हूँ और अपनी बेकरारी कह जाएं मुझसे।
1: बिल्कुल सही बात है। तो ये असर तो देवानंद साहब रखते ही रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनको देखेगा तो ऐसा नहीं है कि उसका दिल की धड़कने ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और नेहा जी देखिए, इतने खूबसूरत गीतों का जो ये उपहार था, हमारे दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा, ऐसी आशा रखते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में अपना प्यार बरसाते रहिए संदेश के माध्यम से। संदेश आपको लिखना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8004926250।
0: तो अब हमें दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बोलते नगमे। स्वर थे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार बस थोड़ी ही देर में।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर

0: सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India and Australia are true, vibrant democracies, two multicultural societies and two significant ocean powers whose shared values and common worldview continue to strengthen mutual trust between the two nations. Speaking at a joint press statement, along with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, the Prime Minister said the comprehensive strategic partnership has made unprecedented progress over the past few years, and the summit has added new dimensions to bilateral cooperation.
2: Comprehensive Economic Cooperation Agreement, yani CECA par, तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।
1: The Prime Minister said Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but it also represents the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. He said India and Australia have reaffirmed that cooperation in defence and security is the cornerstone of the partnership in an increasingly complex strategic environment.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में दिन के 12:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विवरण। अब से थोड़ी देर में यानी कि 12:15 पे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद अली अकबर खां का ख्याल गायन। दिन के 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद कार्यक्रम, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पे बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघट, इसके अंतर्गत सुनिए अमरावती देवी का कविता पाठ। 2:30 पे हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 4 बजे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर, जो कि हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज के हमारे प्रेरणा पुंज होंगे वीर अब्दुल। शाम 5 बजे और रात 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन सकते हैं पंचायत घर, इसके अंतर्गत सुनिए राजमणि धवाल और साथी के गाय लोकगीत। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिए शैलेश कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर विजयानंद तिवारी का काव्य कौमुदी।

शाम 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए विनीता मिश्रा से गीत व भजन। रात 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम का लुफ्त उठा सकते हैं आप। रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम लेकर आएंगे हम। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए संगीता शंकर का वायलिन वादन। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विवरण।

लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्ति की सूचना। पहली सूचना है लक्ष्मण प्रसाद सैनी की। सूचना के अनुसार कोमल सैनी लगभग 22 वर्ष की हैं। शरीर सामान्य है, चेहरा लंबा है, आंखें सामान्य हैं, कोई शारीरिक विकृति नहीं है। इनकी जन्म तिथि 10 जून 2004 है। ऊंचाई 5 फीट है, रंगोरा है, बाल काले हैं, पहनावा इन्होंने नीले रंग का सूट पहन रखा है। ये 17 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दें, चुंगी चौफट का थाना धूमनगढ़ प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 9624897130। सूचना समाप्त हुई।

लीजिए एक और सूचना सुनिए। सिकंदर अली हसन की सूचना के अनुसार उच्चैक जिनकी आयु 9 वर्ष है, शरीर सामान्य है, चेहरा गोल है, आंखें सामान्य है, कोई शारीरिक विकृति नहीं है, इनकी ऊंचाई लगभग 3.5 फीट है, रंगे हुआ है और इन्होंने शर्ट और जींस की पैंट पहन रखी है। ये 22 मई 2026 से लापता है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दे पिपरी थाना सराय मरेज प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 9451807034। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अली खां का ख्याल गायन, राग है मधुमाद सारंग।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अली खां का ख्याल गायन, राग था मधुमात सारंग। तबला पे संगत की थी अनूप कुमार बैनर्जी ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम, आपकी पसंद प्रस्तुति है मधु कुमार की।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ, कभी तानों में कटेगी कभी तारीफों में, ये जिंदगी है यारों पल पल घटेगी, पाने को कुछ नहीं ले जाने को कुछ नहीं, फिर क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी, ये जिंदगी है यारों पल पल घटेगी। बार बार रफू करता रहता हूँ, बार बार रफू करता रहता हूँ जिंदगी की जेब, कम वक्त फिर भी निकल आते हैं खुशियों के कुछ लम्हे। तो भाई जिंदगी को जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चलते रहिए। और चलिए आज के इस सफर पर मेरे साथ आपकी पसंद कार्यक्रम में। तो पहले हम लेते हैं अपने इन श्रोताओं के पत्रों को, जिन्होंने हमें बहुत ही दूर से अपनी फरमाइशी फिल्मी गानों के बारे में लिखा है। तो पहला नाम आ रहा है जबलपुर मध्य प्रदेश से।

अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, प्रीति सिंह, कृष्ण सिंह और इनके परिवार के अन्य सदस्य। राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा, पार्थ कश्यप, उमेश और प्रमिला वर्मा। गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। प्रयागराज से तुलसी कुमार। कोल सिटी से अफजलताज, शाहीन, सोनू, तस्नीम, प्रीति और अफजल मलिक। आप सब सुनना चाहते हैं प्यार का मौसम फिल्म का ये गीत।

0: बिन।
1: श्रोता सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम आपकी पसंद, और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 800-492-6250, 800-492-6250। इस नंबर पर आप हमें अपने संदेश भेज सकते हैं और अपनी पसंद के गानों को भी लिख सकते हैं जिसे हम इस कार्यक्रम में आपके नाम के साथ सुनवाएंगे। तो देखिए, हमारे एक श्रोता हैं और ये हैं संभलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। पहले इनका संदेश सुनिए। इन्होंने लिखा है, सप्रेम नमस्कार मधु जी, आपकी पसंद कार्यक्रम हमें बेहद पसंद है। और आगे लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति मधुर शब्दों का प्रयोग करता है तो वो न केवल सुनने वालों के कानों को तृप्त करता है बल्कि उसके मन को भी शांति प्रदान करता है। ऐसे वचन हितकारी होते हैं और सभी को संतुष्टि प्रदान करते हैं। मीठे बोल वर्तमान क्षण को सुखद बनाने के साथ भविष्य के लिए भी सकारात्मक संबंधों की नींव रखते हैं। इसलिए जब भी बोले तो कोशिश करें कि मीठा बोले। और इस मीठी मीठी बातों के साथ इन्होंने

जिस मीठे से गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म बेटा और गाना है कोयल सी तेरी बोली। लेकिन इस गीत की फरमाइश हमारे कुछ और श्रोताओं की भी है जिनके नाम है नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी, गगनदीप थांदी, धनौरी से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां और इनके परिवार के अन्य सदस्य, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब, रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकर, नायमा धाकर, रंजूबाई धाकर, युवराज सिंह और शिवांगी। तो चलिए सुनते हैं बेटा फिल्म का ये गीत।

एक श्रोता हैं लखनऊ से और इनका नाम है वारिस अली खान साहब और साथ में है इस्लामुन्निशा शकील अहमद शहनाज खान बेबी नुसरा क्योंकि इनका संदेश भी है साथ में तो पहले संदेश भी सुन लेते हैं। इन्होंने लिखा है अर्ज किया है शब्द शब्द बहु अंतरा शब्द के हाथ ना पाओ एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे खाओ। भाई बहुत सही बात लिखी वारिस अली खान साहब आपने कि शब्दों का मूल्य बहुत होता है कभी कभी वो हमारे लिए मरहम का काम करते हैं और कभी कभी घातक हथियार का भी। तो इसलिए शब्दों का प्रयोग बेहद ही संभल के करना चाहिए और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म अमानत और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की भी आई है जो है हिसार से राजकुमार ढूडी प्रमोद कुमार ढूडी और पुष्पेंद्र कुमार ढूडी छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी कृष्णपार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना भिलाई से उत्तम सिंह जंघैल मोरस जंघैल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष जंघैल नंदनी जंघैल सुखरी कला से अमित जंघैल शकुन आरुषि ओशिका आदित्य जंघैल और अंजलि जंघैल पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू सुजाता साहू शशांक साहू और सीमा साहू दिल्ली से रेशमा अंसारी शकीला अंसारी रेहान अंसारी दिल्ली से ही विनोद यादव पूजा रानी और विजय यादव छत्तीसगढ़ से जानवी पिंकी रोहित और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: ये खूबसूरत सी पंक्तियां हैं मेरे सामने, मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिंदगी को समझना बहुत ही मुश्किल है जनाब, कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहते हैं, कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहते हैं, कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर हो जाते हैं। और इस बात के बाद आ गया है एक बेहद ही प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है इज्जत, और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से और इनके परिवार के अन्य सदस्य, रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन, उमा, संजय, दीपक और कमल, खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना, राकेश ताई, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या, सहारनपुर से महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यमुना यादव और नरेंद्र यादव, टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, ततरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और अंकित कांगड़ा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति थी मधु कुमार की मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह

0: रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese delivered joint press statements at Government House, Victoria, following the conclusion of the third India-Australia annual summit. The two leaders hailed a transformative step change in the bilateral relationship, locking in comprehensive frameworks for regional stability, energy security and technological innovation. Prime Minister Modi declared that the bilateral partnership is a definitive bond built for the future. Addressing the media, he highlighted that the relationship has entered an expansive era anchored in deep mutual trust. A major highlight of the summit was the significant momentum given to economic and trade integration. Building on the success of the 2022 Economic Cooperation and Trade Agreement, the two nations have committed to fast-tracking a balanced, ambitious and mutually beneficial comprehensive economic cooperation agreement alongside a bilateral investment treaty. In a massive breakthrough for energy security, a critical agreement was signed to pave the way for long-term Australian uranium supply to India, injecting major strength into India's clean energy objectives. This complements the thriving renewable energy partnership under which both nations have jointly established a rooftop solar training academy in Gujarat to empower women and youth. Strategic technology and resource security also reached new heights with the operationalization of the Australia-India partnership on cyber critical technologies and supply chains and a dedicated critical minerals corridor. To secure the Indo-Pacific, the leaders issued a historic joint declaration on defense and security cooperation, launching a maritime security collaboration roadmap and an innovative defense innovation corridor to connect startups and industries. Prime Minister Albanese underscored that the relationship has never been more consequential or dynamic.
2: Comprehensive Economic Cooperation Agreement, yani CECA par tezi se kaam karne ka nirnay liya hai, jo dono deshon ke liye balance, ambitious aur win-win hoga. Hum bilateral investment treaty par bhi tezi se aage badhenge. Hamari renewable energy partnership

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में 710 करोड़ रुपए के 229 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों को चेक्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत की बदौलत बुंदेलखंड में बेहतरी आई है, पीने का पानी दस्तयाब है, नई तरक्याती स्कीमें बुंदेलखंड तक पहुंच चुकी हैं, आज समाज की तमाम तबकात बिला तफरीक स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला ने मजीद कहा,
1: नौजवान को प्रदेश के अंदर इस सरकारी नौकरियों या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है कि अब बुंदेलखंड का नौजवान अब प्लान नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए के 124 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें समाज के हर तबके की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चित्रकूट में अब सरमायाकारी आ रही है, जिससे जिले की तरक्की में तेजी आई है।
1: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
0: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के नजराने में मुबैना बेजाबतगियों की तहकीकात करने वाली पुलिस टीम ने कल 3 मुलजमीन अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछगछ की। पुलिस तीनों मुलजमीन के साथ 14 कोसी परिक्रमा के रास्ते पर भी गई। इस दौरान कई संतों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि

0: पनघट सुने बैठी सब बनिहरन के गुंजा सरस्वती के
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। और बतावा गुंजा, का हाल चाल भाई बद्री में?
1: देखा सरस्वती बहनी, देखा आज तो पनघटे पे आए मुला देव राजा के बार रही। आज तो कई दिनों से बारिश होती है मुला, जैसे ना हम घर से निकले लगी, देखा तर तर तर बरसे लगा खूब। अब बहनी कैसे तो उसे मिले आई, अब इधरों मन लगा रहा कि अपने सखी से भी मिल ली और
0: हाँ
1: अपने सहेली हरे से भी मिल ली जो नमा
0: बनिहरन
1: सोता
0: से।
1: बनी।
0: हाँ
1: लेकिन मुला जोन बादल जब गरजा थे बरसा थे तो रुके वाला है बहनी
0: नहीं, बिल्कुल नहीं रुके वाला, वो सुनत
1: तो
0: नहीं
1: जब
0: के। आ
1: हाँ
0: देखा गुंजा, तू
1: हाँ
0: तो बहुत मन से जोहत रहू कि कब बरसिंग, तू तो थक गई
1: बिल्कुल
0: रहू घाम ऐसे।
1: बिल्कुल बहनी। देखा आवे वाला जो समय रहा अभी जो बीत गवा बहनी, कुल इतना ज्यादा गर्मी से सब जगह हाहाकार हुई गरा
0: बिल्कुल सही
1: मुला।
0: कहा
1: देखा
0: तू,
1: जो समय कहा नहीं, समय बलवान होते
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही कहा तू। और देखा अब कितनी राहत मिलत
1: बिल्कुल।
0: है
1: देखा
0: ना।
1: हम सभी तो जीवन जिया थे मुला, जीवन में जोन जोन जीव जंतु है हम सभी के, हाँ वो सब भी तृप्त हैं पानी बरसे से।
0: बिल्कुल सही कहा तू, बिल्कुल सही कहा तू। देखा हम सभी परेशान रहे, साथे साथे सब पशु पक्षी भी परेशान
1: हाँ
0: रहे,
1: बिल्कुल।
0: का बच्चा का बूढ़ा सब। देखा हाहाकार एकदम मचा रहा।
1: बिल्कुल।
0: अब जाए कि तो कुछ राहत मिली है। तो देखा एक बात समझ में आवा थी कि परिवर्तन जीवन का नियम
1: बिल्कुल।
0: है ना। सब समय एक से नहीं रहा, थोड़ा
1: हाँ बहनी
0: धैर्य रखे के
1: चाहिए
0: चाहिए। अब देखा
1: बिल्कुल।
0: समय थोड़ा बदली भवा
1: हाँ।
0: बाटे।

0: अब तो कुल इतना नीक मौसम है कि एमा
1: हाँ
0: तो हर जगह हरियाली हरियाली दिखाती है, प्राकृतिक में
1: बिल्कुल
0: भी, घरे
1: बिल्कुल
0: में भी, और कुल पहनावा में
1: हाँ बिल्कुल सही कहते हो।
0: भी। देखा हम घरे से आवत रहे
1: हाँ
0: तो हमार बगले में जो कमला चाची हैं,
1: हाँ
0: देखा कि अपने गदेला के खूब ढेर सारा बैग में किताबन भरे रहे
1: अच्छा
0: और गदेला के ना ही देत रहे कि बच्चा तू ना ले जा, हम तोहका स्कूल तक चलब छोड़ब विद्यालय तक, और तुहार जो बस्ता के बोझा है ओका हम लेके चले। तो देखा वो गदेला जो ना है, तू कहा नहीं अम्मा तू ले जाबू तो तोहका दर्द हुई, तोहका घरे के भी देखे का है। तो हमका इतना नीक लगा कि सच में देखा कैसे माँ बेटे के और बेटे माँ के देखा एक दूसरे कैसे सहायता कराता है,
1: बिल्कुल सही
0: देख
1: कहा तो,
0: आपस में सामंजस्य कितना अच्छा बना बटे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखा ये देख के कितना अच्छा लागत बाटे ना, मन खुश हो जाता है ऐसा
0: बिल्कुल
1: दृश्य देख के।
0: हाँ
1: तो देखा काहे नहीं आज हम सबे यही बात पे चर्चा कर लीन जाए, परिवार और रिश्तों का
0: महत्व
1: महत्व
0: बिल्कुल भी
1: है
0: नहीं।
1: ना। जैसे
0: बहुत
1: तू
0: नेक के बात
1: बतावत हो
0: कही।
1: गुंजा
0: हाँ
1: कि माए और बेटा है ना
0: हाँ
1: कैसे एक दूसरे की चिंता करत रहे
0: बिल्कुल
1: है ना, तो जब यही वातावरण हमका पूरे परिवार के हर एक सदस्य में देखे के मिल
0: हाँ
1: जाते है, तो कहा जाता है ना कहीं स्वर्ग खोजे की जरूरत ना ही, घर ही
0: ये
1: में स्वर्ग मिल
0: बिल्कुल भी
1: जाता
0: नहीं।
1: है ना। हम
0: हाँ
1: सब भाई अपना एक सद्भावपूर्ण व्यवहार परिवार में रख के स्वर्ग बनाए सकत ही घरे में है
0: हाँ
1: ना। और उहे जब घरे में लड़ाई झगड़ा होता, बहस होता और मन ना ही मिलत एक दूसरे से, तो बहुत अजीब सा एक माहौल बन जाता जहाँ की सब अपन अपन राग बोलत हैं
0: बिल्कुल सही कहा
1: है
0: बनी।
1: ना।
0: हाँ और जाना तो परिवार और रिश्ते हमार सबाई के बीच के सबसे अनमोल आधार है। वो हमें भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक संबल और जीवन जिए के सही प्रेरणा देत बा। सुख दुख के साथ खड़े रहते हैं और ये रिश्ता ही लोगन के संपूर्ण विकास और ओकर खुशी के भी मुख्य स्रोता है बहनी।
1: और जाना तो गुंजा बहनी
0: हाँ बहनी
1: कि देखा जैसे तू बताओ ना कि एक
0: हाँ
1: भावनात्मक रूप से पूरे परिवार के
0: हाँ
1: बांधे रहते है ना।
0: बिल्कुल
1: तो जब हम अपने परिवार के प्यार से
0: हाँ
1: संभारे रहती, ये नहीं कि हर छोटी बात पे सबका हम बतावत रहेंगे तू गलत हो
0: हाँ
1: और
0: हम
1: हम
0: सही
1: सही है।
0: है या तो बहनी तुम्हार तो कथा कथित सही नहीं ना, हम सही
1: हाँ
0: बोलत है तो
1: बोलत
0: एमेन
1: है।
0: विवाद पड़त है।
1: देखा हर समय अपन तारीफ और दूसरे की कमी ना दिखावा
0: सही
1: करें
0: कहो बहनी।
1: है ना,
0: हाँ
1: तो देखा कभो कभो खुद भी झुक जाया करें। देखा
0: हाँ
1: कहा
0: बहनी
1: जाता है ना कि भारी पेड़ झुकत है।
0: हाँ
1: देखा अगर परिवार के ले के चले के है, देखा हमरे हाथे में जोन पांच उंगली है वो बराबर ना है,
0: सही कहो
1: तो परिवार के सदस्य कैसे सब एक बराबर हो जाए।
0: बिल्कुल।
1: कौनो सीख चुका है, कौनो कुछ सीखत है ना, तो सब अलग अलग स्तर पर हैं। तो
0: देखा
1: देखा जोन घरे के बड़ा हैं उनके
0: हाँ
1: थोड़ा सा सहनशील होए के पड़ी है
0: बिल्कुल
1: ना। तो अगर सहनशील हुई ही दो बात देखी ही कि कहाँ हमके
0: हाँ
1: बोले के
0: हाँ
1: है, और हर बात पे बोलिए तो उनके बात के वजन ना होई, कीमत ना होई है ना।
0: हाँ
1: तो थोड़ा सोच समझ के बोले, काहे कि भाई देखा पूरे परिवार के तो ही के संभाले के है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और यही परिवार जब छिन्न भिन्न हो जाता है तो देखा हर जोन प्रेम परिवार में मिले के चाहत रहा
0: हाँ
1: परिवार के हर सदस्य होके बाहरे खोजे के लगत
0: बिल्कुल
1: है, और
0: देखा।
1: बाहरे इतने सुरक्षा हमरे सदस्यन के ना ही मिल
0: ना ही
1: सकत
0: मेरा
1: है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: सही कहो बनी। देखा एक कहा के होते ना, जैसे तू परिवार की बात कर रहे थे तो परिवार में जो एक हमार घर के बड़ा बुजुर्ग जो कि मुखिया कहलाते हैं, वो चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, अब तो समान है बेनी
1: बिल्कुल
0: मुला। देखा जब बड़ा जैसे करते हैं ऐसे हमारा सब छोटा भी सीखते हैं, वो चाहे लड़का के दिलो चाहे हम सभी बच्चे ने भी,
1: बिल्कुल
0: कुल परिवार के जब बड़ा समेट के रखा थे जैसे कि कहा तो बने कि एकता में ही शक्ति होते, अगर वो परिवार के महत्व को समझाते हैं और सबके विचार के समझाते कि वो कौन प्राणी कैसे है हमारे घर के लोग, अगर उसके अनुसार अपन सारा नियम बनाए सकते हैं और ओका सब घर वाले भी करत है पूरा, तो उम्मीद कहा होते बहनी एक दूसरे के सम्मान, एक दूसरे का प्यार, सब कुछ एकदम मिलत है। और जो कहा थे कि हम सभी के जो मिलत है संस्कृति से वो तो है ही नहीं मैंने मुला, जो आचरण हमारे परिवार से मिला था वो कोनो और जगह से नहीं मिल सकत।
1: बिल्कुल सही कहा तू गुंजा बहनी। तू एक परिवार है जोन की आगे आवे वाली पीढ़ी के अच्छा संस्कार,
0: हाँ
1: अनुशासन, चरित्र निर्माण आदि गुण के विकसित करत है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: देखा हमार कहे के ई मतलब बा कि परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, और
0: हाँ
1: पुरजोर प्रयास करे के चाही कि ई पारिवारिक संस्था ऐसे मजबूती से बनी रहे। छोटी छोटी बात पे, कहा सुनी पे
0: हाँ
1: परिवार के तोड़े की कोशिश बिल्कुल भी न करें।
0: बिल्कुल
1: जितना

0: चल सके ओकर चलावे की कोशिश
1: करे के
0: करे।
1: चाहिए। बिल्कुल देखा बहनी, काहे कि देखा अधिकतर आज के समाज में एकांकी परिवार कैसा जगह फैला जाता है, मुला ई ठीक ना है यार। जो हमार सब के संयुक्त परिवार रहन, काहे के मतलब जो बड़ा परिवार रहत रहा, वो कुल सब चीज के देखभाल करत रहा, चाहे वो हमार घरे गृहस्थी के होए, चाहे हमार नौकरी व्यवहार या खेती किसानी से होए,
0: हाँ
1: कुल गदेला के तो देखत रहे, माई बाप कमाए चले जात रहे, नौकरी धंधा करत रहे बहनी, तो कुल गदेला के हमार जो बड़े बुजुर्ग रहत रहे, दादा भाई बाबा, वो सब देखत रहे और लड़कन के खाना
0: सबकर
1: पीना
0: अपन एक भूमिका
1: हाँ
0: होत रहे।
1: निभावत
0: देखा
1: रहे।
0: घर के बुजुर्ग देखत रहे लड़कन बच्चन के, और जन नई पीढ़ी रही वो
1: हाँ
0: अपने सब पूरे बच्चन के बुजुर्गन के संभारत रहे,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: और लड़कन भी बुजुर्गन के बहुत सहयोग करत
1: सहयोग
0: रहे, है
1: करत
0: ना।
1: रहे,
0: एक तरह से परिवार बहुत अच्छा से
1: अच्छा
0: चलत
1: चलत
0: रहा।
1: है बिल्कुल।
0: लेकिन देखा आज के समाज के कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो गई है,
1: हाँ
0: जन शहरी पलायन हो गया है,
1: हाँ
0: ओकरे वजह
1: हाँ
0: से
1: सही कहो,
0: एकल परिवार भी बहुत तरह से विकसित हो गए हैं। तो लेकिन एकल परिवार भी संभर के रहें, ये भी बहुत बड़ी बात है ना।
1: हाँ
0: वहाँ
1: काहे से
0: भी
1: कि देखा बेटी, एकल परिवार के ई है कि जनो माता पिता जैसे नौकरी कराता है चला जाता है, तो कुल गदेला अपने जिम्मेदारी के ध्यान नहीं देते, वो गलत संगत ना करें।
0: वही वही का वही बतिया कहती कि देखा परिवार चाहे संयुक्त हो चाहे
1: हाँ
0: परिवार एकल हो,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हाँ
0: लेकिन परिवार बना रहे, है ना।
1: बिल्कुल
0: एकर
1: हाँ
0: पूरा प्रयास करें कि परिवार में जो छोटी छोटी बात होता है ओका नजरअंदाज करें, और कहाँ से कैसे प्रेम से सुधार हो सकत है, कहाँ दू बात बर्दाश्त करे लायक है, कहाँ दू बात बर्दाश्त करे लायक नहीं है, एकरे ऊपर ध्यान दें और बहुत प्रेम से आगे निकले के कोशिश करें, है ना।
1: बिल्कुल सही कह
0: काहे कि
1: बेटी,
0: देखा परिवार इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि अगर परिवार न रहे तो धीरे धीरे धीरे धीरे समाज में एकजुटता न रहे
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कह बेटी।
0: समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है, ना।
1: और
0: एक
1: बेटी
0: जन कहा जाते कि एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण एक अच्छे समाज से होता है।
1: और समाज के निर्माण एक अच्छे परिवार से होते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो देखा मजबूत रिश्ते में ना केवल हमार मानसिक और शारीरिक बल्कि कठिन समय में जौन जीवन में हम सभी के साथ देते हैं वो परिवार है होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। तो अब देखा गुंजा बहिनी, समय एक सा नहीं रहता। अभी हम सब बात करते रहे मौसम के कि
1: हाँ
0: परिवर्तन देखा जीवन का नियम है।
1: हाँ
0: जीवन में बहुत चीज हम सब के देखे के पड़ा था। अब देखा हम बहुत संपत्ति इकट्ठा कर ली, अर्जित कर ली, हम बहुत यश प्राप्त कर ली, उन्नति प्राप्त कर ली, लेकिन हमारे खुशी के कोनो अगर बांटे वाला परिवार में सदस्य नहीं बांटे तो
1: तो
0: खुशी
1: व्यर्थ है,
0: के का मतलब है
1: कोनो
0: ना।
1: मतलब नहीं बनी
0: और
1: देखा।
0: अगर हम बहुत परेशानी में है, तकलीफ में है, लेकिन हम अपन बात केहू से ना कह सकत ही, वो परेशानी में हमार कोई सहयोग नहीं करे चाहत है ना, तो यो अच्छी बात नहीं बा। तो देखा
1: बिल्कुल
0: आपन व्यवहार ऐसे बना, इतना अहंकार में अपने मद में ना रहें कि केहू का कुछ न समझें,
1: बिल्कुल
0: है
1: सही
0: ना।
1: कहो बेटी। देखा कहा जात है ना कि हम आए हैं खाली हाथ जाप खाली हाथ, मुला हम सबे अधिक कमाए के चक्कर में कोनो तरह के गलत अगर परिवार के साथ या कहीं भी करत है तो वो आदत बहुत ही खराब
0: और
1: बटे।
0: लड़कन बच्चन परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर देखा परिवार में वैमनस्य होए, द्वेष होए, तो लड़कन बच्चन के ऊपर इतना गहरा
1: प्रभाव
0: असर
1: पड़ा
0: पड़ता
1: था
0: है,
1: बहनी।
0: उनका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास टूटत है ना। तो कम से कम देखा लड़कन बच्चन के ध्यान करके अच्छे से परिवार के बनाए और अपने जौन जौन रिश्ता है सबके पूरा प्रयास करे ओके संभारे के, है ना। तो चला अब इतनी अच्छी अच्छी बातचीत तू हमसे करे हो, तो
1: हाँ
0: अब तो का एक ठे गीत सुनवाए दे प्रतिमा
1: मिश्रा
0: मिश्रा
1: से,
0: से।
1: तो चला सुन लीन जाए और बहनी हरे भी सुने।

0: देखा सरस्वती बहनी, सही है जी कि कुछ भी भाई या ना भाई, थोड़ा बहुत तो तकरार हो ही जाए.
1: बिल्कुल सही कहा थू। और टकरार होते तो भाई आगे अच्छे से चला थे थोड़ा बहुत,
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: थोड़ा.
1: तो देखा कितना सूनापन हो जाए जीवन में अगर ये टकराव ना हो तो,
0: हाँ देखा,
1: है ना।
0: थोड़ा सा कहीं प्यार है तो कहीं टकराव है,
1: और ज्यादा ना
0: मिला.
1: होवे की चाहिए,
0: हाँ
1: है ना।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: कहे कि
1: देखा
0: जिंदगी
1: तो
0: पैसा रावत है.
1: बिल्कुल देखा, थोड़ा ही थोड़ा अच्छा लगता है, ज्यादा ना ही अच्छा लगता है। तो अब देखा गुंजा बहनी का
0: हाँ
1: सुनवाई बू हमरे बहनी हरन के।
0: देखा, हम सोचा था ये बहनी हरन के आज एक थो अपने पनघड़े पे कविता पाठ है अमरावती देवी से, तो चला सुन लें जाए.

डाई सखी उपज बढ़ाई सखी ना। लहर खेत में फसलिया मेहनत करा सगरी सखिया।

धन लाई सकी, उपज बढ़ाई सकी ना। किसानी गीत कर संग संग किसानिया, किसान की धनिया कर संग।

खेत में बिलिया चलावे किसान करें खेत की सिंचनिया किसान की धनिया।

की धनिया। मन में उमंगली है दुई नौ परानिया, मन में उमंगली है दुई नौ परानिया, करें हंसी हंसी मड़ानिया किसान की धनिया, करें हंसी हंसी मड़ानिया किसान की धनिया। दे

हर समय प्रार्थना मेरी भगवान से, हर जन्म ये जहाँ भीले फूले फले, सब कुछ निछावर है मुन पर मेरा, जिससे दिस

0: देखा कितना नीक के अमरावती देवी बहनी बताएं कविता पाठ। देखा इतना अच्छा कविता पाठ सुने एक बात चला, एक ठुप बढ़िया से लोकगीत सुन ली जाए और बहनी अरे भी सुने।
1: प्रतिमा मिश्रा से कजरी।

0: गुंजा हाँ बढ़िया तो का कचरी लगी ना
1: एकदम नीक के लगी और देखा हमारे बहनी अरन की भी लगी काहे कि देखा आवे वाला है सावन और सावन में कजरी ना सुना जाए तो ऐसा हो नहीं सकत।
0: बिल्कुल सही कहा तू और तू खूब झूमत रहो हम देखत रहे।
1: देखा बहनी इतनी नीक की गौ नहीं है कुल जो गीत संगीता है ये सब हम सबके जीवन में कितना आनंद देता है। कुल सारी चिंताएं और जो उन्हें दुख है कष्ट है उका दूर करके कुछ देर के मन के शांत करे
0: हम सब जहाँ बैठे ही जो नहीं हाल में ही हम सब हाँ। के सुन के दिमाग एकदम बदली हो जाता
1: बिल्कुल
0: है,
1: देखा एकदम ऊर्जावान जेका कहते हैं एक गीत संगीत ऐसा माध्यम है जोने के जीवन मन के परिवर्तित कर सकता
0: हाँ,
1: है।
0: स्थिर बैठे मन आई के हिलाए डुलाए देते हैं
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: देखा अब इतनी नीक नीक बढ़िया बढ़िया गुने सुने के बाद हम सोचते ही कि देखा हर चीज जब कोनो घरे से हम लोग कुछ काम करते थे सीधा पहले रसोईया से कुछ होते है खाए पिए के फिर उसके बाद कुछ काम किए जाते
0: हम तो हार इशारा
1: समझा
0: तो
1: बिल्कुल देखा सखी एक सखी के पहचान जाते
0: बिल्कुल
1: तो हम सोचते है कि बहनी हैं से रसोई घर से आज तू काला है बतावा जरा
0: गुंजा देखा आज हम तोहरे बदे
1: हाँ
0: और अपने सब बहनी हरे बदे लेके आए है अरबी का भरवा। तो चला तो कह बताई सब बहनी हरन कभी बताई कैसे बनावे का है अरबी का भरवा। देखा एकरी बदे 500 ग्राम अरबी ले लें ओका अच्छे से धो लें ताकि ओकरे ऊपर जो मिट्टी उट्टी लगी हुई सब हट जाए ठीक। और बाकी सामग्री लिख लें देखा काका चाहिए ओकरे बदे 2-3 चम्मच बेसन ले लें हाँ धनिया का पाउडर ले लें आधी चम्मच हल्दी ले लें आधी चम्मच लाल मिर्ची के पाउडर ले लें आधी चम्मच ऐसे ही आधा चम्मच अमचूर ले लें आधा चम्मच गरम मसाला ले लें और आधा चम्मच सौंफ ले लें दरदरा और ऐसे स्वाद के अनुसार नमक ले लें और 2-3 चम्मच तेल ले ली है हमारे बहनी हरे हाँ। तो देखा हम कह रहे हैं ना 2-3 चम्मच बेसन लेवे का है
1: अच्छा
0: तो बेसन के सबसे पहले हम सब भून लेबे

0: अच्छा
1: फिर ओकरे बाद में जौन हम सब अरबी
0: धीमी आंच में बहनी भूने ताकि जो है
1: हाँ, तो हाँ, जर
0: हल्का भूरा रंग के रहा है।
1: बिल्कुल तो जौन जौन हम अरबी है
0: हाँ।
1: अरबी के जौन हम धो चुका है
0: हाँ।
1: ओका उबाले के है अब
0: अच्छा
1: तो उबालत के ई ध्यान रखे के है कि ओका एकदम इतना अच्छे से ना उबाल लें कि जौन है वो एकदम टूट के इधर से उधर हो जाए है ना ओका हल्का सा कच्चा रह दे कि चाकू में से आर पार हो जाए बस
0: अच्छा
1: है ना ऐसे उबालें मतलब 80 से 90% ओका उबाल ले लेते हैं। अब ओका उबाले के बाद में एक जगह रख दे वो ठंडा होत रहे है ना तो जब वो ठंडा हो जाए तो हम सब ओकर छिलका उतार के अलग कर देवे। अब हम सब के जौन का करे के है आप जौन बेसन हम सब भून के रखे है वो बेसन में थोड़ा सा एक चम्मच तेल मिला देवे हम सब हाँ और भरावन तैयार कर अब जोन मसाला रखे है अमचूर पाउडर
0: हाँ।
1: लाल मिर्ची पाउडर गरम मसाला दरदरी सौंफ और धनिया पाउडर हल्दी एक सबका हम सब वह बेसन में मिला ले तेल के साथ ही और अच्छा से एक ठे भरावन तैयार कर देवे हाँ। अब भरावन तैयार हो गए तो ओका अरबी के चाकू से बीच में चीर देवे ऐसे चीरबे कि उम्मा भर के रख सकी भरावन के है ना पूरी अरबी एकदम आर पार न कटे ठीक
0: मतलब काहे बनी कि थोड़ा सा जगह छोड़ दें
1: हाँ
0: पूरा कट ना लगावे चाकू के।
1: बिल्कुल तो कब मतलब कि जैसे भरावन भरे तो उनमें टिक जाए है ना ऐसे काटे अपने अरबी के। अब अरबी में भरावन भर दिए हो तो अब का करा अपने कढ़ैया में तेल गरम कर ला
0: हाँ
1: तेल गरम करके जो तोर भरावन वाली अरबी बा ओका डाल दे और अच्छे से ओका तले है ना मध्यम आंच पे तले और जब तुहार जौन भरावन वाली अरबी है जब ये सुनहरी हो जाए है ना जब तो का लगे कि हाँ अभी निकाले लायक हो गए तो का धीरे धीरे निकाल ले और ऊपर से हरी धनिया काट के छीट दे ओकरे ऊपर। अब तुहार अरबी तैयार है अब चाहे तू एक रोटी के साथ खा चाहे तू एक पराठा के साथ खा और ये बारिश में तो का एकदम हरे भरा मन हो जाए।
0: देखा इतनी नीक बढ़िया तू बताओ अरबी का भरवा तो हमारे बहनी अरे भी सुनी हुई है और उन्होंने बनी है
1: बिल्कुल बनाए के देखा हमारे बहनी अरे
0: कितना स्वादिष्ट रहा था बहनी जब एका जब बनावा जाए थे बहनी इतना बढ़िया स्वादिष्ट और इन मौसम में तो अरबी के बाहर आ रहा है
1: बिल्कुल तब वही से तो हम बतावा थे गुंजा बहनी कि देखा मौसम के हिसाब से हम सब कहती ना मौसम के हिसाब से अपन खान पान भी कर लेवे के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: तो देखा ये मौसम में बढ़िया बढ़िया अरबी के भरवा बनावे और खा पूरे परिवार के खियावे तो चला अब भरवा तक खियाए दे हम सब अब साथे साथे एक ठे गीत हो जाए बढ़िया से है ना तो चला सुन लीन जाए एक ठे बढ़िया से गीत उषा मंगेशकर से।

0: दिखा सरस्वती बनी, दूल्हा गंगा पार के कितना निक गौ नहीं रहन,
1: बिल्कुल सही
0: उषा
1: कहा तू।
0: मंगेशकर बहनी अरे कितना
1: हाँ
0: निक के सुनवाइन, और माँ बहनी अरे भी सुनवाई, और दिखा ई गीत गुना ही जीवन के एक खुशी रखे के माध्यम है।
1: बिल्कुल सही कहा तू। और देखा अब हम सब एक टे महत्वपूर्ण संदेश सुन लीन जाए, जौने के माध्यम से हम गुजारिश करती कि हमार सब बहनी हरन अपने मन के बात हम तक पहुँचाए, काहे कि हम सब बहुत ही बेसब्री से जो
0: उनका
1: हथी।
0: कोनो बदलाव चाहते हैं या कुछ बतावे चाहते हैं तो उके बारे में ई मैसेज के
1: संदेश
0: द्वारा
1: सुन ले और हम
0: बताए
1: सबका
0: सकते हैं।
1: बताएं अपने मन की बात, तो चला सुन लीन जाए।
2: पनघट जहाँ बातन में होता है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमार ईमेल एड्रेस आ है
5: pangatprogram@gmail.com, स्पेलिंग है PANGATPROGRAM@gmail.com, pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कोनी बात के तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
6: बेसब्री से इंतजार रही।
0: देखा इंतजार तो हम सभी के भी रहा था कि हमारे बहने संदेश भेजेंगे और हम सबके सुने की मिली कि हम सबसे कितना प्रेम करते हैं।
1: बिल्कुल। और देखा मुंजा बहनी तू मौसम के बात करत रहो ना,
0: हाँ
1: है ना, देखा ऐसे नमी वाला मौसम हो गया है ना, तो हमार सब बहनी हरन जानते हो अपने सुंदरता के बदे कितनी चिंतित रहा थी है ना।
0: हाँ।
1: और हमार सब बहनी हरन और बिटिया लोगन जो है वो सभी परेशान हो जाती, उनका सबका मुहासा बहुत निकल जाते ये मौसम में है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ हम तो का बतावे चाहत है
0: बताओ
1: कि अगर ऐसन तकलीफ हो जाए मौसम में तो का करे के। देखा कच्चा दूध होता ना,
0: हाँ
1: कच्चा दूध में थोड़ी सी एक चुटकी से भी कम दालचीनी का मिला ले,
0: अच्छा हाँ?
1: और ओका रुई के फाहा से लेके अपने मुंह पे त्वचा पे लगावे धीरे धीरे, और ओका 5-10 मिनट तक सूखे दे,
0: अच्छा
1: हाँ। और ऐसे करे से जो है मुहासा उनके चेहरे पे ना ही निकली। और क्या कह सकती है हमार बहनी एकरे अलावा, बस ध्यान रखे कि दालचीनी के

0: ज्यादा ना लगाए, नहीं तो भभाए लगे चेहरवा पे, है ना। सबकर त्वचा अलग अलग होता है, सबकर त्वचा नहीं बर्दाश्त कर पावे, तो थोड़ा सा लगावे एकदम। और क्या कर सकते हैं हमारे बहनी, अरे दही में एक चम्मच दही ले लें और थोड़ा सा ले ले मुलेठी, है ना, मुलेठी और दही को मिलाए ले और फिर ओकरे अपने चेहरा पे लेप कर लें।
1: अच्छा।
0: 20 मिनट तक ओका रह दें अपने चेहरे पे ऐसे, और 20 मिनट बाद ओका अच्छे से धोई ले। तब अपन ऐसे एक हफ्ता करे के बाद में अपने चेहरा के देखेंगे, उनके चेहरा पे जो मुहासा का दाग उग होएगा है।

0: 20 मिनट बाद उसका अच्छे से धोई ले। तब अपन ऐसे एक हफ्ता करे के बाद में अपने चेहरा के देखिए कि उनके चेहरा पे जो मुहासा का दाग उग होएगा है एकदम साफ हो जाए और घर ही पे उनके एकदम बढ़िया त्वचा मिल जाए।
1: देखा भाई नहीं आप तू तो इतना बढ़िया बढ़िया बताओ तो देखा हम सोचा था ही कि तू इतना बताओ सौंदर्य के बारे में तो हम सोचा था कि एक हम बताए
0: बिल्कुल बतावा।
1: देखा अगर हम सभी बहनी हरेन कुछ ना करी केवल कच्चा दूध ही चेहरे पे लगावा थे गाय के शुद्ध अगर हम उनका लगाए कि 5 मिनट तक छोड़ देते हैं तो और सिर्फ साफ पानी से धो लेते हैं तो बहनी कुल देख ला कि उम्मीद जितने भी हमारे सबके त्वचा जो कहते नहीं टीनेजर्स जैसे कि सुकड़े लगते हैं तो वो त्वचा के सुकड़न से भी रोका था और जो कील मुहासे होते उनका भी दूर करा था।
0: देखा कच्चा दूध तो अपने आप ही में एक कितना बढ़िया से साफ सफाई कर देता है
1: बिल्कुल
0: है ना। तो बहुत अच्छा बताए हो। अब चले के बेरी हो गए है
1: घड़ी इशारा कराती है बहनी
0: हाँ,
1: तो चला चले कि बेरी हो तैयार है तो हाँ, बहनी हरेन से राम राम कीन जाए
0: तो बहनी हरे फिर राम जाए तब तक बदे राम
1: राम, राम, राम, राम बहनी हरे।

0: against the backdrop of the centre's decision to constitute a high-level committee a few months ago to examine the extent of demographic changes taking place in different parts of the country and identify the factors responsible for them. The Indian Pickleball Association has announced the Indian contingent in both men's and women's category to represent India in the pro category at the Pickleball World Cup 2026. The competition will be held at Da Nang in Vietnam from August 30th to September the 6th. Harsh Mehta, a recurring name on the international pickleball circuit, will be leading the charge. Arjun Singh, Anish Walian and Aman Patel have also made the cut in the men's category. Mihika Yadav, Alia Ibrahim, Pearl Amal Sadiwala and Naomi Amal Sadiwala will make up the contingent on the women's side. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% up in the afternoon session today. The Sensex climbed 565 points. To 77,069, while the Nifty added 168 points to 24,050 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia signed landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Australia and India partnership on cyber critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वी ट्वेंटी जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
2: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर

0: एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से

0: गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
1: आई अर्ज आवर इंस्टीट्यूशंस टू कंटिन्यू सपोर्टिंग आवर फिशिंग कम्युनिटी विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। मे दिस हिस्टोरिक इनिशिएटिव ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू एवरी कोस्टल फैमिली एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रियलाइजेशन ऑफ विकसित भारत बाय 2047।
0: प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
2: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल

0: अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल

0: क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं?
1: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं,
0: जी
1: यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा
0: जी
1: और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
0: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं, जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़। ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
0: बिल्कुल
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
0: जी
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
0: जी जी जी विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
1: आज का प्रश्न है क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। यह नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
3: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
3: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
3: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
3: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
3: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
3: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
3: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रु मर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: ने कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहां रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
3: जी पिताजी।
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
4: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं

0: जौ और चावल ले जाना।
1: जी पिताजी।
0: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
1: अच्छा पिताजी।
0: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
2: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
3: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
0: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
3: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया है कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
4: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
3: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
0: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
1: जी पिताजी।
0: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
5: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेश से भी रथ आ रहे हैं।
5: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
0: हाँ ये तो है।
6: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
7: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: अरे शुरू शुरू कुछ कह रहे।
1: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
2: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है।
1: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
2: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
3: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
4: अरे वो देखो
1: क्या
4: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
1: क्या बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
4: वाह वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
5: लगता है जीतने का।
6: वो वो पहुंच गया, जीत गया।
3: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद
1: मित्र। कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा है।
2: वाह, हाँ, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
2: चलो।
4: अरे वाह, अरे चलो इसे पकड़ लेते हैं।
3: अरे ये पकड़ा।
2: अरे ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
2: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध न कर बैठे।
2: अरे रुको तो सही। अरे देखो
3: क्या
2: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: हाँ, अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
2: हाँ,
3: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
2: हाँ,
3: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
6: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे

0: धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की ओर से उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बजने वाले हैं। आज की हमारी ये सभा संपन्न होती है। शाम 4 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। हम आपको बता दें, विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम

गीगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बजने वाले हैं। आज की हमारी ये सभा संपन्न होती है। शाम 4 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। हम आपको बता दें, विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में शाम के 4 बन रहे हैं। लीजिए अब फौजी भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहां पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनकी जीवनी उनके करियर के बारे में भी जानते हैं और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक करके उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को उनके करियर को उनके जोश और जज्बे को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद है आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSB। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो SSB और NIFT तो काफी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।

0: सर, इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि अंग्रेजी के एक पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी
1: जी
0: अच्छी पंक्ति है,
1: जी
0: टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मेरी
1: ओके
0: कहानी है कुछ ऐसी ही रही है।
1: जी
0: जब शुरुआत से बचपन से, तो यूं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फौज में आने का शौक था,
1: जी
0: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत, तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे,
1: ओके
0: जिन जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में, और
1: ओके
0: उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में, जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला। तो
1: अच्छा, तो
0: जब
1: आप उस
0: मैं
1: जमाने में पढ़ रहे थे। अच्छा
0: नहीं मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था, तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने
1: अच्छा
0: क्या क्या त्याग किए हैं देश के लिए, इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई।
1: जी,
0: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए, और राष्ट्र
1: तो
0: सेवा में ही
1: जी तो
0: अपने
1: जो
0: आप को देना
1: जो
0: है।
1: शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने, और
0: जी
1: आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
0: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है,
1: जी
0: उसको
1: जी
0: उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
1: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें, शिवम कुमार जी, के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए।
0: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए, और उन्होंने देश
1: जी
0: के जो के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। मैंने
1: जी
0: देखा कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन जब
1: जी
0: आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है।
1: क्या
0: इस
1: बात है,
0: जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
1: क्या बात है सर। देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
0: जी बिल्कुल।
1: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बंदा फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
0: जी 2018 UPSC में मैंने फॉर्म भरा, और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ 2020 के जनवरी माह में। सशस्त्र सीमा बल एकेडमी में मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहाँ पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई,
1: जी
0: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल
1: जी
0: की कठिन ट्रेनिंग के उपरांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था, उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जा करके फिर वो तमगा हासिल किया। मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
1: जी जी तो वो सफ़र जिस तरीके से रहा, आपको फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई, और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए, तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना, तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज़ को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी,
1: जी
0: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
1: जी
0: माता और मदरलैंड इससे ये स्वर्ग से भी ऊपर है, और इस चीज़ को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में
1: जी
0: अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर,
1: जी
0: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएँ हैं,
1: जी
0: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, और एक मेरा राष्ट्र
1: मातृभूमि,
0: मातृभूमि।
1: क्या बात है सर। यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
0: जी मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
1: जी।
0: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर
1: जी
0: पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे,
1: जी
0: और ये सब सर्वोपरि है। आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या
1: जी
0: आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो
1: जी
0: पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए, और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो SSB जब ज्वाइन किया तो आपने बताया

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिद जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए।

0: तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू, बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में अभी तक की, आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही एसएसबी एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन एसएसबी बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं सीआई एंड जेडब्ल्यू स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, सीआई एंड जेडब्ल्यू स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदाम में, उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे कि, जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे सी आई एन जी डब्ल्यू स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि एसएसबी की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजयी तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी, तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है। जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वो बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पर टेन्योर रहा है उससे सीखा है, उसको ट्रेनिंग्स को बताने की मेरी चेष्टा होती है ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
0: जी, अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा, और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा, भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
1: बिल्कुल शाही जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है
0: जी,
1: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
0: क्या बात है।
1: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
0: जी,
1: तो फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है
0: जी,
1: उसे बखूबी निभाए।
0: क्या बात है, ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार, जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
1: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के 3 रास्ते हैं
0: जी।
1: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो एसएससी द्वारा जीडी की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है।
0: ठीक है।
1: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पर जाना चाहे
0: जी,
1: तो एसएससी द्वारा सीपीओ की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में। और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
0: जी,
1: तो यूपीएससी द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है, जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
0: ओके, जैसे कि आपने यूपीएससी पास करके
1: जी बिल्कुल
0: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया
1: जी बिल्कुल।
0: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज़्यादा एक यादगार मैं कहूँ, और वो हर तरह से यादगार एंटी माइस्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था, वो ऑपरेशन कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।

0: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले 1-2 वर्षों में ही
1: जी
0: ऐसे नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सोमी जोशी सर, जो इंस्पेक्टर जनरल थे,
1: जी
0: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह,
1: जी
0: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबॉर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद,
1: जी
0: राणा और प्रदीप का, जिन सब के टीम वर्क ने जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं।
1: जी और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
0: जी, बिल्कुल, वो मेरे मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबॉर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज़ में।
1: जी तो हम यहां पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
0: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
1: जी
0: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से,
1: जी
0: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले, जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है, वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना।
1: जी
0: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में। जिस एरिया में मैं काम करता था
1: जी
0: लखीसराय बिहार में, वहाँ जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे, जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे। ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
1: जी
0: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली
1: जी
0: फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है, ये एक दिन
1: जी
0: का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
1: ओके तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको मतलब इनके उन जो काम थे इनके उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उनको भी आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, उनका उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे,
1: जी
0: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर किसी किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे
1: जी
0: ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना। और उनके डर के कारण वहाँ की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज़ पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया, इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
1: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है। असली
1: जी
0: खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया
1: जी
0: या आतंकवादी को मार दिया, असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकलें, जब आपका कॉन्वॉय निकले,
1: जी
0: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
1: क्या बात है,
0: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
1: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
1: जी
0: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
0: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था।
1: जी
0: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है
1: जी
0: उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताए आपको
1: जी
0: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली। फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में, और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था,
1: जी
0: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे। कोई

0: एक खास जगह थी जहाँ पे वो आने वाले थे, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई लगभग, हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए, और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के एसपी थे, एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई, जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे। हमने दो टीमें बनाई, और जंगल की अपनी चुनौतियाँ हैं।
1: बिल्कुल,
0: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी, क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं
1: जी,
0: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
1: जी,
0: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
1: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो लोग।
0: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई। क्यों? और जंगल में एक सिद्धांत चलता है, यू मिस एंड आई हिट। और पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था, हम से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
1: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पर रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा, और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग खत्म हुई
1: जी,
0: उसके बाद जाकर के हमने देखा तो हमने पाया कि 2 बॉडीज वहां पे हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज हमें वहां मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था अर्जुन कोड़ा
1: जी,
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जाकर के हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले 1 महीने बाद
1: जी
0: उसने उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने, और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन एसएसबी के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
1: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा।
1: जहां पे
0: कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरे टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व
1: जी,
0: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ।
1: बिल्कुल,
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता था उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था
1: और क्या बात है,
0: खाना खाता था।
1: क्या बात है
0: तो
1: सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहां जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन, वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूंगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहाँ पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के

0: बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं।
1: जी
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना,
1: जी
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है, जो
1: जी
0: अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं,
1: जी
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं। और एक राक्षस का
1: बिल्कुल
0: वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो
1: बिल्कुल,
0: आनंद आता है, वो
1: उसके
0: उसको
1: कहने क्या है,
0: उसको लफ्जों में बयां नहीं किया जा
1: क्या
0: सकता।
1: बात है। और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहले मैसेज आया है हमारे पास यहां पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल एआईआर न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणकम नमस्कारम। और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची तिरुचुपल्ली तमिलनाडु से।
0: जी धन्यवाद और जय हिंद राजेश जी आपको।
1: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर, आपको एसएसबी के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
0: कजरा कजरा लिखा है ये।
1: कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते
0: बिल्कुल
1: हैं?
0: बिल्कुल, ये मेरे साथ के हैं, मेरे
1: अच्छा
0: जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है, क्योंकि
1: जी बिल्कुल
0: ये मेरे
1: बिल्कुल
0: टीम के साथी हैं
1: साथी
0: जिन्होंने
1: हैं आपके।
0: कार्य किया है हमारे साथ।
1: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर, आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आवर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फेयरलेसली, दे आर रियल हीरोज। आई बो माई हैड टू देम, सो आई वुड से जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। माई सेल्फ शंकर लोध एंड माई वाइफ अंजलि लोध ऑफर ओबीडियंस टू ऑल माई टू देम, माई रिक्वेस्ट टू आर सर प्लीज फॉरवर्ड माई मैसेज शिवम सर। थैंक यू सर, आपका मैसेज हमने पहुंचा दिया है, शिवम सर सुन रहे हैं।
0: जी धन्यवाद मिसेज एंड मिस्टर लोध जी, मैं आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं,
1: जी
0: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद।
1: जी इसके अलावा मैसेज है ये, शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट है कंकड़खेड़ा मेरठ से।
0: जी बिल्कुल धन्यवाद आपको राजेश जी, मुझे
1: और
0: खुशी है कि
1: जी
0: एडवोकेट से लेकर के टीचर, सभी सभी
1: सभी
0: वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए, नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सल्यूट है। ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको।
0: जी बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि
1: जी
0: रही है, तो यहाँ से मैसेज आया।
1: बिल्कुल, और आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं, आप हमारे असली नायक हैं, जय हिंद जय भारत। यह है नेहा मिश्रा सर।
0: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग
1: जी
0: फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
1: और ये है सर जय हिंद सर, प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए, रोहित मेहर हैं ये विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से।
0: जी रोहित जी धन्यवाद, मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा, शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है।
0: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं, और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स
1: जी
0: के बीच की जो खाई है
1: जी
0: उसको, उस खाई को पाटना ही
1: पाटना
0: हमारा
1: है,
0: उद्देश्य था।
1: बिल्कुल करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूँ, आपकी बातें और आपकी आपके जज्बे को सलाम करती हूँ, उम्मीद करती हूँ हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मैं शबनम हूँ बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, गारंटी अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर ये आपको।
0: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
1: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन प्राइड ऑफ बिहार शिवम कुमार।
0: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
1: जी और ये हैं सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है, ये हैं मृदुल झा।
0: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का चल
1: जी
0: रहा
1: जी
0: है
1: जी
0: उसकी
1: ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़, कांकेर, छत्तीसगढ़ अपने 60 जवानों के

0: साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये एफएम रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार। कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं। उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
1: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं okay. तो अपना गुरु मानता हूं और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो okay. जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है।
0: क्या तो, बात है सर। तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से। आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स बिकॉज ऑफ हिज टीम एंड देयर डेडिकेटेड एफर्ट्स। अ लॉट ऑफ पीपल टुडे लिव टेरर फ्री, प्राउड ऑफ हिम। आयुष दाडिच हैं ये नई दिल्ली से।
1: जी बिल्कुल, ये हमारे जूनियर हैं और मैं उम्मीद अच्छा। करता हूँ कि जिस पहल की शुरुआत हम लोगों ने की है
0: जी,
1: उस पहल को आगे आने वाले जितने भी अधिकारी हैं उसको मकाम तक ले जाएंगे अपनी टीम के साथ।
0: बिल्कुल, और आयुष भी उसका हिस्सा रहेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: और यह है नक्सली ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई शिवम जी, प्राउड ऑफ। शालिनी पाठक लिख रही है आपके लिए।
1: धन्यवाद शालिनी जी आपका।
0: और यह है मैं सोता हूँ रातों को चैन से क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई जाग रहा है। शिव है ये मेरठ से।
1: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं, यही हमारी कल्पना है।
0: और यह सर शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो। टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथ ही हैं भी।
1: जी पंकज हमारे साथ के थे और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने जी गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है।
0: जी जी जी, और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आपको बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर के।
1: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन जी संभव ही नहीं था।
0: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं ये।
1: ये धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा मैं एफएम रेडियो को, एफएम रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूँ
0: जी,
1: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है और फौज के राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल। सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है, मैं आपको जैसे अभी बता रहा था। तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए, उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में। उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी। आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज़ और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियाँ हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम ये है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक,
0: जी
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं। जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे, उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज हो, लगातार उसको केटर करे, उसकी उसकी समस्या का

0: निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में, तभी जा करके वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है
1: जी
0: वो आपसे आगे, जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा। जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी
1: बिल्कुल,
0: वो आपके लिए खड़ा होगा।
1: तभी वो खड़ा होगा क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं। सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं। नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था। वो कौन सा अवार्ड था?
0: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में,
1: जी
0: 2025 के नवंबर में,
1: 2025 नवंबर, जी
0: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूं,
1: जी
0: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल सीएम के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहां का वासी हूं, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपनी टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था,
1: जी
0: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा।
1: जी और सर, इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जो जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था।
0: जी, मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है
1: जी
0: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में, उत्तराखंड में है, जहाँ मैं बतौर ट्रेनर हूँ। तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया। मेरे
1: जी
0: DIG सर थे, श्री DN बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया।
1: जी तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
0: सच पूछूं तो जब भी कोई ये कार्य करता है, अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीज़ें की जाती हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है वही आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके
1: जी
0: लिए मैं ये कर रहा था,
1: जी
0: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है।
1: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में और फैशन टेक्नोलॉजी से SSB में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए।
0: जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े परिवार से आता हूँ जिसमें कि हम लोग 4 भाई बहन हैं और मेरे माता पिता हैं और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म पत्नी भी हैं।
1: जी
0: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स में
1: जी
0: आना चाहता था। हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से, लेकिन
1: ओके
0: मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी 2 बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है
1: जी
0: मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था,
1: जी
0: 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
1: तो
0: वो
1: जाहिर है ये
0: बहुत
1: सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट
0: सबसे
1: सपोर्ट।
0: हाँ ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
1: सर, बिल्कुल समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे, लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूंगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये है वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये है हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे को हमारे ओर से सल्यूट, और काफ़ी लंबा मैसेज है, ये है पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरवाद से। और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें और जय हिंद कह रहे हैं, यह हैं सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी HC आर्मर सर, योर लीडरशिप इज़ इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर और योर अप्रिशिए

0: अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, शायद ये आपके साथ ही होंगे.
1: बिल्कुल मेरे साथ ही हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात.
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला. श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, आज के संदेश के हमारे खास मेहमान. धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का.
1: धन्यवाद सर.
0: जय हिंद.
1: जय हिंद. जय भारत.

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कभी खुशी कभी गम। लीजिए सुनिए सबसे पहले इस फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, गीतकार अनिल पांडे, संगीतकार संदेश शांडिलिया।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत,
1: लीजिए आप सुनिए फिल्म डेंजरस इश्क का ये गीत। आवाज़ें हैं राहत फ़तेह अली ख़ान और तुलसी कुमार की। गीतकार हैं शब्बीर अहमद, संगीतकार हैं हेमेश रेशमिया।

0: से बोल रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब युवा श्रोता सुनिए अपना कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों. स्वागत है आपका आपके शो में युववाणी में. उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने दिन को पूरे उत्साह के साथ जी रहे होंगे. कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके कपड़े या उसका घर या उसका काम नहीं होता, बल्कि उसकी आदतें होती हैं. और उन आदतों में सबसे खूबसूरत आदत होती है स्वच्छता. स्वच्छ रहने की ओर अपने जो एक कदम बढ़ाते हैं वो आदत, और अपने आसपास अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की जो एक आदत होती है वो सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत आदत होती है. कभी ज़रा सुबह किसी साफ़ सुथरे पार्क में टहल कर देखिए, किसी खुली हवा में सांस लेकर देखिए, पेड़ पौधों की हरियाली के बीच में बैठकर अपने अंदर के उस इंसान को महसूस करके देखिए. और फिर उसी जगह कल्पना कीजिए, चारों ओर कूड़ा कचरा बिखरा हो, बदबू आ रही हो, गंदगी फैली हो. बस यही अंतर है हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ जो हमें उसके लिए प्रेरित करती हैं कि हम साफ जगह पे कितना अच्छा महसूस करते हैं. और इसी जगह अगर हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएं तो हम उस वक्त क्या महसूस करेंगे. और वही होती है, वहीं से जन्म लेती है हमारी जिम्मेदारियाँ. हम अक्सर सोचते हैं कि देश को बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते होंगे, जबकि सच ये है कि कई बार बदलाव की शुरुआत केवल एक कदम से होती है, अपने घर से, अपनी गली से और अपनी सोच से. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्या द्विवेदी. आज का जो हमारा विषय है वो है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत. ये केवल एक सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है, हर परिवार की सोच है और हर युवा की पहचान बनाने वाला विषय है. दोस्तों, जब हम स्वच्छ भारत कहते हैं ना, तो अक्सर हमारे मन में झाड़ू, सड़कें और कूड़ेदान की तस्वीर आती है. लेकिन स्वच्छता का अर्थ इससे कई गुना बड़ा है. स्वच्छता का मतलब सिर्फ साफ हवा, स्वच्छ जल, साफ भोजन, स्वच्छ सार्वजनिक स्थल नहीं है. साफ सोच और एक साफ वातावरण जहां बीमारियों के लिए कोई जगह ना हो, ये है. क्योंकि जहां स्वच्छता होती है ना, वहीं स्वास्थ्य होता है. और स्वस्थ नागरिक ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है. हम सब ने बचपन में एक बात जरूर सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. यानी बीमारी होने से पहले हम उसका इलाज करने के बारे में, यानी इलाज कराने से बेहतर है बीमारी होने ही ना दे. मतलब हम उसके लिए बचाव पहले से ही तैयार रखें. और इसका सबसे आसान तरीका है स्वच्छता, क्लीनिनेस. वहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं. सोचिए, अगर हमारे आसपास कूड़ा जमा हो, नालियाँ गंदी हो, पानी रुका हो और मच्छर पनपेंगे, जैसे आज के टाइम पे बारिश का मौसम है और हमें हर जगह ये सब देखने को मिल रहा है, तो उसी के साथ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी से फैलती हैं. क्योंकि जब बारिश का मौसम जब ख़त्म होता है दोस्तों, तो हम देखते हैं सितंबर अक्टूबर के मंथ में ये सब बीमारियाँ बहुत ही ज़ोर पे होती हैं, सभी को हो रही होती हैं. वो इसीलिए होती हैं क्योंकि साफ़ सफाई नहीं होती. और जब बारिश होती है तो सारी जगह कचरा, कूड़ा, गंदगी फैल जाती है. और जब वो बारिश ख़त्म होती है तो उतनी ही तेज़ी से बीमारियाँ अपनी रफ्तार पकड़ लेती हैं. तो उसको सही करने से अच्छा, जैसे मैंने बोला, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन.

प्योर, हम कूड़ा फैलाएं ही ना, इसलिए जब बारिश हो तो वो साफ सड़कों में बहे, कूड़ा ना जमा हो, कहीं बदबू ना आए और उसके बाद बीमारियां ही नहीं फैलेंगी। दोस्तों, भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था केवल साफ सफाई का अभियान चलाना नहीं, बल्कि पूरे देश में स्वच्छता का जन आंदोलन बनाना। इस अभियान में लाखों लोगों ने खुले में शौच से मुक्ति, शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन, स्वच्छता के प्रति जागरूकता दिखाया। आज देश के अनेक शहर डोर टू डोर कचरा संग्रह, वेस्ट सेग्रीगेशन यानी गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करना और रिसाइकलिंग जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए कि क्या स्वच्छ भारत केवल सरकार की जिम्मेदारी है? जवाब है नहीं। अगर हम सड़क पर चलते चलते पानी की बोतल फेंक देते हैं, अगर हम पान या गुटखा इधर उधर थूक देते हैं सार्वजनिक स्थल पर जो बहुत खूबसूरत दिख रही हो, अगर हम पार्क में पिकनिक मनाने जाते हैं और अपना कचरा वहीं छोड़ के चले आते हैं, जिस नदी को हम देवी की तरह पूजते हैं वहीं पे कपड़े धो के चले आते हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की बनती है? नहीं, ये जिम्मेदारी प्रत्येक उस नागरिक की है जो उस वातावरण में रह रहा है। और अभियान वहीं से शुरू होता है। हर इंसान अपनी ओर से शुरू करे, वही असली अभियान होता है। युवा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ समाज हमें सीख देकर चला जाता है, वहाँ हम ही उस आदत को अपनी एक ज़िंदगी बनाएं और इस तरीके की चीज़ें फैलने से रोकें। हमें अपनी आदत बदलना होगा। हमें जो जैसे हम अपने छोटे भाई बहन, दोस्त पड़ोसी और आने वाली पीढ़ियों को भी ये सिखा सकें कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आदत क्या होती है। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल लाइफ के बारे में बात कर रही है, एक ऐसी जीवन शैली के ऊपर बात कर रही है जो कि हमें एक ग्रीन लाइफ दे सकती है जिसमें प्रकृति का सम्मान होगा। इसलिए हमें आज से ही वो बड़े बदलाव की शुरुआत करनी होगी। हमें चीज़ों को सही तरीके से समझना होगा, हमें वेस्ट मैनेजमेंट समझना होगा, हमें अपनी सोसाइटी के बारे में समझना होगा, हमें उस एनवायरनमेंट को समझना होगा कि कैसे हम क्लीन रखें। दोस्तों, ये भारत देश है जहाँ पे हम नेचर को देवी भगवान मानते हैं, और उस नेचर को हम गंदा करने से पहले क्या एक बार भी नहीं सोच सकते? ये जो वेस्ट है ये ह्यूमन का ही बनाया हुआ है, और अगर हम ही उसे सही तरीके से मैनेज करना नहीं सीखेंगे तो हमारी प्रकृति जिसे हम देवी की तरह पूजते आए हैं क्या वो खुश रह पाएगी? ये सवाल हमें खुद से करना चाहिए। स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और दवाइयों तक नहीं आता, स्वास्थ्य आता है साफ हवा, स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन और स्वच्छ वातावरण से। यदि हमारे आसपास का माहौल साफ होगा ना दोस्तों, तो मानसिक स्वास्थ्य और भी सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। साफ जगहों पर रहने वाले लोग अधिक ऊर्जावान, सकारात्मक और सक्रिय महसूस करते हैं। आज कई शहरों में लोग कंपोजिटिंग कर रहे हैं, यानी रसोई से निकलने वाले गीले कचरे को खाद में बदल रहे हैं। इससे कचरा कम होता है और पौधों के लिए प्राकृतिक खाद और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ये एक छोटी सी पहल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं मैं अकेले इंसान क्या कर लूँगा, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों कि हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक इंसान से ही हुई है, एक छोटे से इंसान की शुरुआत से ही हुई है। और अगर हर व्यक्ति रोज केवल 5 मिनट अपने आसपास की सफाई पे ध्यान देना, तो पूरा देश और उसकी तस्वीर एकदम से बदल जाएगी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, एक ऐसे समय में विशेष सावधानी हमें रखनी होती है। ये वही मौसम है, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, कूलर का पानी समय समय पर बदलते रहें, साफ पानी पीने में इस्तेमाल करें और हो सके तो पानी उबाल कर पिएं, क्योंकि इस समय बीमारियां और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप पानी उबाल कर पिएंगे तो आप बीमार कम पड़ेंगे। और खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखें। ये छोटी छोटी सावधानियां बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें बचा सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं दोस्तों कि स्वच्छता का मतलब सिर्फ अपने घर को साफ रखना होता है, लेकिन असली स्वच्छता तब होती है जब हमारी सोच हमारे घर की चार दीवारी से निकलकर पूरे समाज तक पहुंचती है। जिस सड़क में हम चलते हैं, जिस पार्क में हम शाम अपनी बिताते हैं, जिस बस स्टॉप पर हम उस बस का इंतज़ार करते हैं जो हमें मंजिल तक लेके जाती है,
हम उन सार्वजनिक स्थलों को जो हर रोज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे भी अपना घर

मच के उसकी साफ सफाई रखें। इसलिए उनकी देखभाल भी करना हमारी जिम्मेदारी है, प्रत्येक उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो उसका यूज कर रहा है। आज तकनीक के इस दौर में वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन भी लगातार काम कर रहे हैं। बड़े शहरों में गीला और सूखा कचरा अलग किया जा रहा है, लेकिन ये सब एकदम से असर तभी दिखाएगा दोस्तों जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, हम अपने रहन-सहन के तरीके को बदलेंगे और उस पहल को समझेंगे कि आखिर ये आगे चल के हमें क्या आउटकम दे सकता है, इसका क्या मतलब होगा आगे चल के। तो हम जब इन चीज़ों को समझ लेंगे तो यकीनन ये जो हम आज स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं ना, ये साकार होता हमें दिख जाएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का चर्चा का विषय। तो हम अपने प्रोग्राम को, जैसे कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो इंफोटेनमेंट होता है, तो इंफॉर्मेशन तो हमने आपको दे दी, लेकिन अब बारी है हमारे प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट की।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: तो दोस्तों, एड ब्रेक से पहले हम इतना ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुन रहे थे, और अब हम बात करेंगे जो आज की हमारी सुरीली शाम है उसमें। एक बार फिर से आपका स्वागत है। संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं का, हमारी संस्कृति का और हमारी आत्मा की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति भी है। कुछ वाद्य ऐसे होते हैं जिनकी धुन सीधा दिल तक पहुँचती है, और उन्हीं में से एक है बाँसुरी। इसकी मधुर तान कभी प्रकृति की शांति का एहसास कराती है, तो कभी मन में नई उम्मीद और सुकून भर देती है। युवाणी के इस विशेष मंच यानी उभरते कलाकार को हम आज लेकर आए हैं आपके सामने, और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के उभरते कलाकार, IIT BHU के छात्र प्रहर्ष मिश्रा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और इसी के साथ हम अपने आज के इस प्रोग्राम में इन्हें हम जोड़ते हैं। तो प्रहर्ष, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को।
5: नमस्कार, मेरा नाम प्रहर्ष मिश्र है, मैं यहीं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, और मैं बांसुरी वाद्य बजाऊंगा आज। और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ IIT BHU से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और
4: तो आप IIT BHU से पढ़ाई भी कर रहे हैं, और आप बांसुरी वादन में अपना एक बहुत ही अच्छा टैलेंट आप लेके हैं आपके पास। तो मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने कैसे इसकी शुरुआत की, कैसे आपको पता चला कि बांसुरी वादन में भी आपकी एक रुचि है?
5: मुझे संगीत शुरू से ही पसंद था। मैं जब भी सुनता था मुझे मन होता था कि मैं भी बजाऊं। अलग अलग वाद्य मैंने सुने तो मुझे बांसुरी बहुत ही पसंद आई, फिर मैंने बांसुरी सीखना शुरू किया वहीं से।
4: अलग अलग वाद्य बचाए, तो और कौन से वाद्यों में आपने पहले रुचि दिखाई?
5: पहले मैंने रुचि बजाई कीबोर्ड यानी सिंथेसाइजर में। मैंने वो सीखा कई साल अपने गुरु श्री विजय कुमार जी से, और अब मैं बांसुरी सीख रहा हूँ। बांसुरी मैं बनारस में सुश्री भद्रप्रिया जी हैं, उनसे सीखता हूँ।
4: तो आपने सिंथेसाइजर भी सीखा और बांसुरी भी सीखा, तो आपको कैसे पता चला कि आपका इंटरेस्ट बांसुरी की ओर है? आप सिंथेसाइजर को क्या अभी भी प्ले कर रहे हैं?
5: जी, मैं सिंथेसाइजर अभी भी प्ले करता हूँ। असल में जो मैं बजाता हूँ वो शास्त्रीय संगीत है, और बांसुरी एक शास्त्रीय वाद्य है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मेल है वो। और सिंथेसाइजर वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें वेस्टर्न ज्यादा खिल के आता है, तो मेरा शास्त्रीय संगीत में रुचि थी इसलिए मैंने बांसुरी भी सीखना शुरू।
4: आपकी रुचि शास्त्रीय संगीत में है, और बांसुरी के बारे में बहुत कम ही होगा जो हमारे श्रोता इसके बारे में पूरी तरीके से जानते होंगे। हमारे जो श्रोता साथी हैं, आप उनको इस खूबसूरत वाद्य के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
5: बांसुरी वन ऑफ द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है कंस्ट्रक्शन के मामले में, सिर्फ बांस से बनी है, बट इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि गायकी अंग का प्रयोग करें। असल में संगीत में भी दो मुख्य अंग हैं, तंत्रवाद्य और गायकी अंग। तंत्रवाद्य जैसे सितार और सरोद, इन सब वाद्यों पे बजता है, और जो भी गायकी अंग है वो गायकी और जैसे सारंगी हो गया या फिर बांसुरी हो गया, इन सब वाद्यों पे बजाते हैं।
4: तो आपने तो इतनी आसानी से कह दिया कि बहुत सरल सा ये एक वाद्य है, लेकिन इसमें कितनी एनर्जी लगती है, आपने कितने साल दिए हैं इसको बजाने में, बताएंगे?
5: हाँ, इसमें एनर्जी तो काफ़ी लगती है, क्योंकि पूरा लंग्स का काम है, लगातार फूकना ही रहता है, और सिंपल ये कंस्ट्रक्शन में है सिर्फ, बजाने में तो कठिन है ही है। मैं इसको 5-6 साल से सीख रहा हूँ।
4: 5-6 साल से? अच्छा, जैसे आजकल हम सुनते हैं कि बहुत सारे इसमें स्टडीज भी हो रही हैं, तो क्या आपने बांसुरी वादन में कुछ स्टडी में भी कुछ किया है?
5: जी, मैंने यहाँ प्रयाग संगीत समिति से 4th ईयर भी पास किया है, और अभी तो मैं क्योंकि

0: थोड़ा पढ़ाई में व्यस्त रहता हूँ अपनी कॉलेज की, तो उतना नहीं कर पा रहा, बट मेरा फ्यूचर में करने का मन है।
1: फ्यूचर में करने का मन है। आप इसको एज अ करियर देखते हैं कि नहीं?
0: अभी तो एज अ पैशन ही देखता हूँ, एज अ हॉबी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बजाना, करियर अभी मैंने सोचा नहीं है।
1: तो प्रहर्ष, आप इतने खूबसूरत वाद्य को यहाँ लेकर आए हैं हमारे बीच, हमारे श्रोता साथियों के बीच में, तो हम चाहेंगे कि आप उनके लिए, हमारे लिए कुछ बहुत खूबसूरत सा हमें बजा के सुना दें।
0: जी, मैं राग गोरख कल्याण बजाऊंगा। ये कमाज थाट से उत्पन्न हुआ काफ़ी मीठा राग है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा बजा पाऊँ।
1: प्लीज़।

0: बहुत खूबसूरत। और हमारे श्रोता साथी जिन्होंने ये सुना होगा तो उन्हें भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। आपने इस राग का क्या नाम बताया?
1: गोरख कल्याण।
0: तो हमारे श्रोताओं को इसके बारे में थोड़ा और विस्तार रूप से बताएंगे।
1: गोरख कल्याण ये राग बागेश्री से थोड़ा मिलता जुलता राग है। इसमें गंधार नहीं बजाते हैं जब बागेश्री में, तो ये गोरख कल्याण जैसा बन जाता है। ये इसका बजाने का समय रात्रि है, बट अभी मैं यहाँ भी बजा रहा हूँ, और ये काफ़ी मधुर और मीठा राग है।
0: जैसे हमने कुछ बातें सुनी हैं कि जो भी राग है उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो किसी काल के लिए हुई, जैसे अभी आपने बोला एक रात्रि काल के लिए हुई है, तो इसको पीछे प्ले करने का क्या मतलब था, भाव क्या, लोगों को क्या आप जताना चाहते थे? जैसे आपने कहा कि ये एक गायकी वाद्य है,
1: जी
0: तो आप बजा के क्या लोगों को बताना होता है?
1: जी इसका मतलब गोरख कल्याण मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि काफ़ी मीठा राग है पर इसमें गंभीरता भी है।
0: गंभीरता भी है
1: जी
0: जी। तो जैसे आपने अपने बारे में बताया कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, IIT BHU से कर रहे हैं, और आप संगीत को भी अपना पैशन मानते हैं, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं, कैसे बैलेंस करते हैं दोनों चीज़ें आप?
1: जी बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल कभी कभी लगता है, पर मैं कोशिश करता हूँ रोज़ाना रियाज़ के लिए समय निकालूँ, और जो भी मेरे गुरु बताते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उतना तो कम से कम करूँ ही, और फिर वीकेंड्स पे जब छुट्टी रहती है तो मैं ज़्यादा समय देने की कोशिश करता हूँ।
0: तो श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हमारे इतने प्यारे दोस्त प्रहर्ष मिश्रा, और वो हमें इतनी मीठी मीठी बातें बता रहे हैं इस बांसुरी के बारे में, और इतनी मधुर राग उन्होंने अभी हमको सुनाई है, तो हम इनके बारे में और भी जानते हैं। तो आप हमें बताएं कि आप इन रागों पे जो इतना वक्त दे रहे हैं, आप इनको इतना समझ रहे हैं, इतने अच्छे से समझ रहे हैं, आपने सिर्फ बांसुरी को ही क्यों चुना? मतलब और भी तो वाद्य हैं, आपने बोला क्लासिकल में, तो क्लासिकल में भी तो और भी वाद्य हैं, तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ बांसुरी में ही था?
1: जी सिर्फ बांसुरी में तो नहीं, मुझे और भी वाद्य पसंद हैं, पर बांसुरी की एक मिठास है जो सिर्फ बांसुरी में ही मिलती है। और ये मतलब इतना सिंपल इंस्ट्रूमेंट लगता है देखने में, और बहुत ही मनमोहक इसकी आवाज़ आती है, तो मेन था इसकी आवाज़ जो मुझे बहुत पसंद आती है।
0: तो हमारे जो श्रोता साथी हैं जो शायद इस तरीके के वाद्यों पे अपनी बहुत रुचि दिखा रहे होंगे, जिनको ये पसंद होगा इस तरीके से उनको बजाना, तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैसेज तो मैं इतना ही दूंगा कि रोज़ रियाज करें, ये करने की विद्या है, तो जितना करेंगे उतना अच्छा होगा, और गुरु की बात ज़रूर माने, वो जो भी बताएं वो उसको ज़रूर फॉलो करना है।
0: और ये बताएंगे कि कैसे आप बैलेंस करते हैं तो वो भी कर पाएँ?

0: तो रोज आपको समय निकालना पड़ेगा, एक शेड्यूल बना लीजिए आप कि शाम को अगर आपको समय मिलता है तो शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आप दे सकें उतना रियाज, और फिर जब छुट्टी मिले समय मिले तो जम के जितना समय दे सकें आप उतना अच्छा है।
1: यूथ के बीच में एक बात होती है कि हम लोग करियर बनाने के लिए अपनी लाइफ दे रहे होते हैं, और हमारी एक सबसे अल्टीमेट गोल होता है कि हम पैसे कमाएं, अपनी लाइफ को सेटल करें। तो आप उन सब के बीच में बांसुरी को भी देखते हैं?
0: जी, मतलब अपना शौक तो करना ही चाहिए, जब आदमी प्रसन्न रहता है तभी वो अच्छे से काम कर पाता है।
1: तो आप प्रसन्नता को ज़्यादा महत्व देते हैं।
0: हाँ, मतलब जरूरी है वो भी।
1: तो हमारे श्रोता साथी शायद इंतज़ार कर रहे हैं एक और मीठी सी राग का, तो आप उन्हें एक और राग सुनाना पसंद
0: जी, मैं
1: करेंगे?
0: वृंदावनी सारंग राग बजाऊंगा। ये कहते हैं कि स्वामी हरिदास जो तानसेन के गुरु थे उन्होंने बजाया था, और जब वो बजाते थे तो कहते थे कि श्री कृष्ण भी आते थे वहीं पे सुनने
1: वाह।
0: के लिए।
1: तो हमारे जो श्री कृष्ण हैं, हमारे जो श्रोता साथी हैं जो इसको सुनने वाले हैं, तो आप इसको प्ले कीजिए, शायद कोई उसमें से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए और आपके लिए चिट्ठी लिख दे।
0: जी।

0: देखा करते थे, कुछ भी भगवान कृष्ण के बारे में जब परिचय उनका पढ़ा करते थे तो हम ये सुनते थे कि वो बांसुरी बजाते थे, और इतनी मधुर बांसुरी बजाते थे कि लोग मोहित हो जाते थे। आज प्रहर्ष ने भी उतनी ही मधुर बांसुरी बजा के हमारे जितने श्रोता साथी उन सभी को मोह लिया। प्रहर्ष, आपने इतनी मधुर बांसुरी बजाई, इतने रागों का आपको ज्ञान है, कैसा लगता है जब आपकी लोग तारीफ करते हैं इन सब चीज़ों को लेके?
1: जी पहले तो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी समय देता हूँ, तो जब कुछ अच्छा बजता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों की तारीफ से ज़्यादा खुद को जो अच्छा लगता है मैं उसको ज़्यादा महत्व देता हूँ।
0: सेल्फ
1: जी
0: सेटिस्फैक्शन इसको बजा के आपको बहुत मिलता
1: जी
0: होगा ना।
1: काफ़ी
0: तो आज हमारे इस स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगा, क्या महसूस कर रहे हैं हमारे श्रोताओं से जुड़ के?
1: जी, मेरा पहली बार ऐसा अनुभव था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण ही एकदम अलग है और संगीतमय है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का।
0: तो प्रहर्ष, हमारे श्रोता साथियों ने आपकी इतनी मधुर बांसुरी का जो आनंद लिया है और आपने उन्हें इतना मनमोहित किया है, तो हमारे जो श्रोता साथी हैं और उनसे आपको एक धन्यवाद कहते हैं हम। और इसी के साथ आप अपने हमारे श्रोताओं से आप विदा लें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के लिए बजाने के लिए, और सभी को मेरा नमस्कार।
0: तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे अभी प्रहर्ष मिश्रा, और उन्होंने इतनी मधुर बांसुरी बजाई, हमारे श्रोताओं को मनमोहित कर लिया। उन्होंने हमारे श्रोताओं को बताया कि एक जो बांस की लकड़ी का जो वाद्य है वो भी लोगों को मोहित कर सकता है, वो भी लोगों को बांध सकता है। उन्होंने बताया कि ये एक गायकी वाद्य है, मतलब जो लोग गा के प्रस्तुत करते हैं बांसुरी, वो अपनी धुन से, अपने सुर से लोगों को प्रस्तुत कर देती है, वो अपने मन के भाव लोगों को बता देती है, जता देती है। इतने मधुर उन्होंने राग को हमारे सामने प्रस्तुत किया, और सच में जैसा उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब स्वामी हरिदास जी इसको प्ले किया करते थे, इसको बजाया करते थे, और भगवान कृष्ण स्वयं उसको सुनने चले आया करते थे। तो मुझे आज वो बांसुरी सुन के, उसकी मधुरता को महसूस करके ये महसूस हुआ कि शायद भगवान कृष्ण सही में इसको सुनने के बाद आ जाया करते थे। श्रोताओं, अब हमें अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ना होगा, और इसी के साथ अब हम वक्त है हमारे प्रोग्राम में अगले गीत का।

तो दोस्तों, इस गीत के बाद वापस से बारी है अब अपने अगले सेगमेंट प्रेरणा पुंज की। जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं दोस्तों, जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि पीढ़ियों को हिम्मत, देश प्रेम और कर्तव्य का अर्थ समझाती हैं। ऐसी ही एक कहानी आज हम प्रेरणा पुंज में लेकर आए हैं। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, चारों ओर धूल का गुबार है, आसमान में बारूद की गंध फैली हुई है, दूर से भारी भरकम टैंकों की आवाज लगातार करीब आती सुनाई दे रही है। हर तरफ युद्ध का माहौल है, सामने दुश्मन की संख्या में बहुत ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं और उनके हाथों में अधिक शक्तिशाली हथियार हैं। ऐसे कठिन समय में अगर कोई सैनिक ये सोच ले कि अब पीछे हटना बेहतर है, तो शायद इसमें कोई दोष की बात नहीं है। लेकिन उस रणभूमि में एक ऐसा जवान भी था जिसने परिस्थितियों को नकार दिया और अपने हौसले को बड़ा माना। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन के आगे वो झुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ने की उन्होंने ठानी। यही कहानी है भारत के उस अमर सपूत की, वीर अब्दुल हमीद की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में धामूपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को जन्मे अब्दुल हमीद का बचपन बहुत ही साधारण परिवेश में बीता। परिवार आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, ज़्यादा संपन्न नहीं थे, लेकिन संस्कारों और मेहनत की जो सीख थी उन्हें बचपन से ही दी गई। वे बचपन से ही फुर्तीले थे, मेहनती थे, आत्मविश्वास से भरे हुए थे। गांव के लोग कहते थे कि ये लड़का बड़ा होके ना कुछ ज़रूर बड़ा करेगा, और पूरे मन से वो हर काम किया करते थे। शायद यही गुण आगे चलकर उन्हें भारतीय सेना का एक असाधारण योद्धा बना देगा। युवावस्था में ही उन्होंने भारतीय सेना का रास्ता चुना। उनके लिए वर्दी केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि मातृभूमि की सेवा का संकल्प था। सेना में रहते हुए उन्होंने अनुशासन, धैर्य और साहस को अपने जीवन में अपनाया और उसी के वो अपना मतलब वचन मान के, उसको वचन दे के अपना आगे बढ़ने लगे। साथ ही सैनिकों के बीच वे बहुत शांत स्वभाव के रहते थे, कर्तव्यनिष्ठ थे और इसी के लिए वो जाने जाते थे। वे कम बोलते थे, लेकिन जब देश की रक्षा की बात आई तो वो सबसे आगे खड़े दिखाई दिए। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों युद्ध छिड़ गया। पंजाब के असल उत्तर सेक्टर में पाकिस्तान ने अपने अत्याधुनिक पैटर्न टैंकों को वहाँ पे तैनात किया और बड़ा हमला कर दिया। इन टैंकों को उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली टैंकों में गिना जाता था। उनका उद्देश्य भारतीय सीमा में तेज़ी से आगे बढ़ना था, लेकिन भारतीय सेना के सामने चुनौती इतनी बड़ी थी, उसका जवाब उतना ही साहसी था। अब्दुल हमीद ने उस समय 4 ग्रेनाइट बटालियन में तैनात थे। उनके पास कोई भारी टैंक नहीं था। वे जीप पर लगी 106 मिलीमीटर रिकॉयलेंस गन का संचालन कर रहे थे। लेकिन युद्ध केवल हथियारों से नहीं होता, बल्कि रणनीति, धैर्य और आत्मविश्वास से जीता जाता है, और ये सभी चीज़ें उनमें थीं। उन्होंने खेतों और पेड़ों की आड़ बेहतरीन उपयोग किया उसका। दुश्मन को अपनी सही स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगने दिया, सही समय का इंतज़ार किया और फिर ऐसे सटीक वार किए कि एक से बड़ा एक दुश्मन वहाँ पे ध्वस्त हो गया। उनकी इसी बहादुरी ने पूरे युद्ध की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुश्मन की ताकतवर टैंकों को वहाँ पे धूल चटा दिया उन्होंने और रेजिमेंट में अपना परचम लहराया, जिसके जिन्हें भारतीय सेना के अदम्य साहस की उन्होंने अपना लोहा मनवाया। लेकिन युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वीर अब्दुल हमीद लगातार अपनी स्थिति बदलते रहे, दुश्मन पर हमला करते रहे और अंत तक अपने कर्तव्य पर डटे रहे। इसी दौरान दुश्मन की गोलीबारी में वे गंभीर रूप से घायल हुए और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, कि सैनिक का जीवन केवल उसकी वर्दी से नहीं, बल्कि उसके निर्णयों से महान होता है। वीर अब्दुल हमीद जानते थे कि उनके सामने खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व से ये साबित कर दिया कि देश की सुरक्षा पहले होती है। उन्होंने देश के लिए अपने आप को उस पर न्यौछावर कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि जो सैनिक बात कहते हैं कि हमसे पहले देश, उन्होंने उस बात को झुटलाया नहीं और सच साबित करके दिखाया। दोस्तों, वीर अब्दुल हमीद की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा नायक वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता। साहस का अर्थ डर
का होना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद भी सही काम करना होता है। आज के युवाओं के लिए वीर अब्दुल हमीद का जीवन बहुत बड़ा और बहुत संकल्पनीय है। तो दोस्तों, अब हम अपने प्रोग्राम में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते हम अपने श्रोताओं को अपने प्रोग्राम का ये अंतिम गीत सुनवाते चलते हैं।

तो दोस्तों, अब हमारे प्रोग्राम में, हमारा जो प्रोग्राम है वो समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। तो चलते चलते हम अपने श्रोताओं को प्रश्न काल यानी कल का जो हमारा प्रश्न था उसका उत्तर बताएंगे और आज के प्रश्न को हमारे श्रोताओं के सामने रखेंगे। तो हमारा कल का प्रश्न था, भारत का पहला जैव मंडल बायोस्फेयर रिजर्व कौन सा था जिसे यूनेस्को ने विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया है? और उत्तर है नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व। और हमारे जो श्रोता साथी हैं जिन्होंने इसका सही उत्तर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो आज का प्रश्न है वो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? हमारे जो श्रोता साथी हैं वो अपना उत्तर दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे yuvvaniald@gmail.com पे, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे 8004926250 पर। तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त हुआ। मैं दिव्या द्विवेदी लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।

समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारत

0: में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिस्त्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रूपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। आज रात 9:30 बजे आप सुनेंगे गज़लों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम।

रात 10 बजे आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में संगीता शंकर का वायलिन वादन होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आप सुनेंगे विनीता मिश्रा के गाए गीत और भजन। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर काव्य कॉमेडी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे शैलेश कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर विजयानंद तिवारी का काव्य पाठ। सबरस का समय होगा रात 8:30 का। ये थी जानकारी हमारी आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में शत्रुघ्न प्रसाद से बातचीत होगी। बरसात में खेत की उर्वरक क्षमता बनाए रखने हेतु मृदा संरक्षण विषय पर। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल अग्रवाल की वार्ता होगी उदर में होने वाले सामान्य रोग। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन। नमस्कार प्रयागराज ये कार्यक्रम होगा 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर ज्योति पांडे के स्वर में गीत और भजन होंगे। 10:30 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा जिसमें कल आप सुनेंगे मोहनलाल जैसल और उनके साथी कल्लू निराला और साथी छंगूलाल लहरी और उनके साथी के स्वर में लोकगीत। 11:00 फिल्म संगीत एक ही कलाकार यूथ एक्सप्रेस ये कार्यक्रम होगा 11:30 पर। दिन में 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रोहित मालवीय का तबला वादन होगा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:30। 1:15 पर हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम। 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT। शाम 5:00 बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। शाम 5:15 युवाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता सुनेंगे खेल जगत। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 सुभाष यादव की वार्ता होगी हमारे गांव उनकी ऐतिहासिक थाती और ऐतिहासिक जिम्मेदारी। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 में डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी की वार्ता होगी नव्यन्याय भाषाया वैशिष्ट्यम। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में संगीता भरद्वाज के गाए गीत और भजन आप सुनेंगे। अंग्रेजी कार्यक्रम होगा 8:30। गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम होगा 9:30। रात 10:00 आप सुनेंगे माला तिनखा का लिखा नाटक पहचान। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन होगा। ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए देशभक्ति गीत।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: राष्ट्रनिर्माणस्य लक्ष्यं प्रति द्रुतगत्या अग्रे सरति। मेलबोर्न नगरे भारतीय समुदायस्य भव्यं सम्मेलनं चासौ सम्बोधयति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये रक्षा सुरक्षा सहयोगाय ऐतिहासिकं संयुक्त घोषणापत्रं हस्ताक्षरितम्। अनेन सहैव ऑस्ट्रेलिया देशस्य यूरेनियम धातोः दीर्घकालिक आपूर्तेः महत्वपूर्ण सन्धिः अपि निष्पादितः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णनेन भुवनेश्वरे गभीर समुद्र मत्स्यपालन सम्पदः शाश्वत उपयोगाय राष्ट्रियाभियानस्य विहितं विधिवत् अनावरणम्। राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः अन्तर्गतं वयस्क साक्षरता मानदण्डानवाप्य उत्तराखण्ड राज्यं देशस्य पूर्ण साक्षर राज्यानां गौरवपूर्ण सूच्यां सम्मिलितम्। प्रावृष्टावत् कृत्स्नेहि देशे व्याप्ता दिल्ल्यां विगतरात्रिकालात् अश्रान्त वृष्ट्या सामान्य जनजीवनम् अत्यन्तं बाधितम्। अपि च भारत इंग्लैंडयोः मध्ये पञ्च क्रीडात्मिकायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ तावत् दशवादने क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धो वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
0: विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया सम्बन्धानां ऊर्ध्वगामितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनीज इत्यसावपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जन उत्साहं दृष्ट्वा एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोः नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे कश्चन ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। अनेन ऑस्ट्रेलिया देशात् भारताय यूरेनियम इत्यस्य आपूर्तिः सुलभा भविष्यति। अयं संयोगः भारतस्य स्वच्छोर्जा लक्ष्याय नवीनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव सह साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सप्लाई चेन प्रणाल्याः संचालनेन सहैव एकात्म महत्वपूर्ण खनिज वीथि निर्माणेन सामरिक औद्योगिकी सुरक्षा क्षेत्रम् अनवरतम् समेधते।
1: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
0: अद्य प्रातः तावत् उभौ प्रधानमन्त्रिणौ भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् भागं गृहीतवन्तौ। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन इत्यनेन अद्य भुवनेश्वरे ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे भारतस्य उच्च समुद्र मत्स्यपालन सम्पदः शाश्वत उपयोगाय एकस्य ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियानस्य विधिवत् शुभारम्भः अकारि।

0: पंचो राम राम। का हो रानी भैया, का हाल चाल बटे?
1: देखो हो रघू भैया, हाल समाचार तो ठीक है।
0: हाँ भैया ठीक है रहे हाल,
1: लेकिन मुला दौर राजा ये समय देखा खूब बरसात है। हाँ हाँ हाँ
0: सही बात है भैया, जितना बारिश हुई भैया थाने भरे उतना अच्छा रही भैया।
1: ये तो एकदम सही कहते हैं। देखा ये जो खेती है ये भैया देखा पानी का है।
0: बिल्कुल भैया,
1: और देखा दौर राजा बरसत हैं तो एक बात और भैया किसान भैया बहनी हरन के जरूर समझे के चाहे कि देखा ये जौन जल है
0: हाँ भैया,
1: एक अगर भैया बचावा जाए तो भैया बहुत उपयोगी होतो हो।
0: हाँ भैया, जल संरक्षण आज के समय में बहुत आवश्यक बाटे भैया।
1: हाँ
0: कैसे भैया देखा जो गांव में कितने तालाब बाटे सूख गए बाटे ना,
1: हाँ
0: कितना
1: हाँ
0: कुआं सूख गए बाटे, तो हम कई भैया देखा आप सभी जो है मिलजुल के इकट्ठा हुआ, सरकार के भरोसे ना रहे हैं,
1: हाँ
0: सब कुछ
1: हाँ
0: सरकारें ना करिए भैया, ये
1: एकदम
0: हमार तुम्हारा आप सबके फर्ज बाटे कि जो
1: हाँ
0: कुआं सूख गए बा या जो तालाब सूख गए बाटे भैया उनके साफ सफाई करके जो बरसात के पानी हो भैया वही में संरक्षण करें हुए।
1: एकदम सही कहे। अच्छा एक बात और है रघु भैया, देखे जोन पानी है देखे सही बात यह है कि जोन पिए वाला पानी है भैया वो देखे 1% हो,
0: हाँ
1: 1% पानी जोन है
0: हाँ
1: वह भैया पानी के नाम से पिया जाता है,
0: बिल्कुल
1: बाकी और सब भैया पानी जोन है वो उपयोग कहे नहीं। तो भैया देखे पानी जोन पिए वाला बहुत जरूरी है और साथ ही साथ किसान भैया बहनी हरण के ही समझदारी लियावे के चाहिए कि जोन पानी है ओके भैया बचाए के रखें। और साथ ही साथ देखे अपने कुछ किसान भैया बहनी हरे ऐसा हैं कि जैसे जब मकान बनवावत हैं ना भैया
0: हाँ भैया, हाँ
1: तो अपने घरे के बगले एक ही गड़ाहा खोदवाए देते हैं।
0: हाँ हाउदी बना देते हैं।
1: हाँ सोख्ता टाइप का, तो ये है कि उमन का है कि जोन बरसात का पानी आवत है खाली वह पानी हो
0: हाँ भैया,
1: वह पानी उमन जात है तो उसे ये होता है कि भैया पानी जोन है
0: हाँ भैया,
1: कम से सोता बनाए कि भैया नीचे चला जाता है और जौने से कनम से भैया पानी के जोन स्टेटा है वो भैया मेंटेन रहे थे।
0: हाँ कैसे भैया देखा जो गर्मी जब पड़ा थी तो, और जो आजकल लोग समर सेबुल लगाए बटे भैया,
1: हाँ
0: उससे जो भूमिगत पानी बाटे जल जल
1: हाँ
0: बाटे
1: हाँ
0: वो कम हो जात बार भैया,
1: यही
0: गर्मी में
1: बात
0: काफ़ी नीचे
1: एकदम
0: चला जाता है।
1: कही गया हो रघु भैया। देखे का है कि पहले अपने खियाँ नल रहे
0: हाँ भैया,
1: तो भैया उसे चापाकल जो उन पानी भैया खींच जाए जितना जरूरत रहे आदमी उतना ही
0: उतने
1: निकाले,
0: निकालत रहा।
1: कुआं रहे तो भैया जितना जरूरी रहे पानी उतना ही निकाले। लेकिन अब का है भैया देखे घरे घरे लग गए हो समरसेबुल,
0: बिल्कुल
1: और समरसेबुल लगे से भैया ये है कि भैया 1 बाल्टी पानी निकाले के है तो पहले 2 बाल्टी पानी ठंडा करे विदा निकलिए कि भैया तहीं ताजा हो जाए और फिर ओकरे बाद भैया भरे के बाद 2 बाल्टी गिरे
0: देखा था कि बालू आओ तो निकाल देते
1: और
0: ना।
1: निकालते थे। तो भैया किसान भैया बहनी हरन के ये बात के ध्यान रखें कि पानी के जितना जरूरत हो भैया उतना निकाले।
0: बिल्कुल
1: और अच्छा एक बात और रहे देखा छोटा छोटा प्रयोग कह के भी भैया किसान भैया बहनी हरे चाहें तो जैसे घरे में का है
0: हाँ
1: कि जैसे महिलाएं हैं भैया सब्जी धोए दें
0: हाँ भैया,
1: तो जो सब्जी धोए के बाद जो पानी बचत है वो पानी अगर भैया अपने गमला में डाल देते हैं
0: हाँ भैया,
1: या फूल पत्ती में डाल देते हैं तो ओकर जोन है
0: पेड़ की सिंचाई भी हो जाए भैया,
1: हाँ
0: ओके
1: उपयोगिता भी
0: उपयोग
1: हो
0: हो
1: जाए।
0: जाए।
1: और साथ ही साथ भैया देखे एक बात और रहे हो कुछ भैया बहनी अरे ऐसा हैं कि भैया पता चले ताटे नहाते हैं
0: हाँ भैया,
1: तो नल खोले हैं भैया बाल्टी के ऊपर पानी जाता है भरत है बहत है
0: और साबुन लगावत है
1: साबुन लगावत है
0: नल
1: ना।
0: खुला बा पानी बहत बा
1: हाँ तो ये बात का भी ध्यान
0: ध्यान
1: दे
0: रखें।
1: हो। और साथ ही साथ एक बात और है
0: हाँ बोला
1: कुछ
0: भैया,
1: भैया बहनी अरे ऐसा हैं जौन भैया का करते हैं कि दाढ़ी बनवाते हैं
0: हाँ भैया,
1: तो जब दाढ़ी बनवाते हैं तो भैया का है नल
0: नल
1: खोल
0: खुला
1: दिए
0: है।
1: हैं और पानी भैया
0: हाँ
1: गिरते हैं तो किसान भैया बहनी हरे चाहे तो छोटा
0: हाँ ये
1: छोटा
0: सब
1: से
0: छोटी छोटी
1: भैया।
0: बात के ध्यान दें।
1: हाँ और एक बात है
0: बोला,
1: जैसे भैया कहीं कहीं देखे क्योंकि नल भैया हम सभी रास्ता में चलते ही
0: हाँ
1: चाहे स्टेशन भय चाहे रोड भय चाहे बस अड्डा भय पता चला नल भैया खुला है
0: हाँ टोटी कभी में टोटिया ने नल बाहर
1: हाँ
0: बट।
1: पानी बहता है ई बात के ध्यान दें। और अगर भैया दिखाता है कि नल चलत है तो उमन भैया का नाम से नल की खुदे बंद कह दी।
0: बिल्कुल भैया, अब भैया साथ ही साथ जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है
1: हाँ
0: इससे भैया जो भूमिगत जल बाटे वो तो ऊपर उगते हैं, अब भैया जो पानी इकट्ठा रहता है वही से भैया हरण के सिंचाई के काम आवत है खेते में।
1: ये बात एकदम सही कहे। अच्छा एक बात और रहे
0: बोला।
1: देखे भैया किसान भैया बहनी हरन के छोटी छोटी बात के ध्यान दें। और साथ ही साथ ही देखे जो उन किसान भैया बहनी हरे सिंचाई कर रहे थे कि भैया देखे खेती में पानी के जितना जरूरत हो

0: हाँ भैया
1: उतने पानी का उपयोग करें
0: बिल्कुल।
1: और ज़्यादा पानी न भरें। वो अच्छा कुछ किसान भैया बहनी हरे ईसान हैं कि बरहा से पानी भरते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: तो जब बरहा से पानी भरते हैं भैया, पता चला बरहा टूट गया है, दूसरे के खेते में पानी जाता है, तो इहू का भी ध्यान दें। और किसान भैया बहनी हरे भैया, जल के बचावें और ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो।
0: हाँ भैया हाँ
1: भविष्य में ही भैया देखा जल का दोहन
0: हाँ
1: बचावे के
0: कहते भैया देखा जल बाटे तो कल बाटे भैया।
1: एकदम सही कह। अच्छा भैया ये बताओ रघु, आज भैया अपने पंचायती में का लिए आए है हो?
0: अच्छा भैया देखा आज अपन पंचायती में
1: हाँ
0: एक किसान चर्चा बाटे,
1: हाँ
0: ज्ञान सिंह पटेल और हिंचलाल पटेल से
1: हाँ
0: राकेश कुमार मौर की बातचीत बटे सुना जाइए।
1: हाँ हाँ हाँ
0: बोला भैया कुछ गीत गाँव नहीं हो जाए है
1: देखो बिना ढोल मजीरे पंचायती निकना लागत हूँ। अच्छा तो हम सोचे थे आज लोकगीत है
0: राजमढ़ी घायल और साथी के,
1: हाँ हाँ
0: अब कहीं
1: हाँ
0: तू सुना किसान भैया सुने
1: सुनवाए दें भैया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया देखा,
4: हाँ
3: लोग गीत सुना का भैया, राजमणि घायल और साथी के,
4: हाँ हाँ
3: साथ साथ भैया देखा
4: संदेश हो गया।
3: अब भैया देखा जो है ये समय जो है बरसात के मौसम बाटे भैया है,
4: हाँ हाँ
3: तो तमाम तरह के साग सब्जी लगाई जाते भैया है।
4: हाँ हाँ देखे एक बात और रहे हो, देखा अपने पंचायती में हम सभी समय समय पर किसान चर्चा करावत रही थे।
3: हाँ हाँ
4: ऐसे ये है कि भैया किसान भैया बहनी हरे जौन विकसित किसान हैं भैया, उनसे क्या कहते हैं बात सुन के,
3: हाँ हाँ
4: भैया सुनत हैं गुनत हैं और हाँ, फायदा भी उठावत
3: हैं, अनुभव फायदा उठावत
4: हैं। हाँ हाँ तो आज किसान चर्चा में ज्ञान सिंह पटेल और हिंजलाल पटेल जी भैया हैं और उनसे भैया राकेश कुमार मौर्य भैया का हमसे बतियान है।
3: अच्छा, अच्छा
4: तो हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरण को सुनवा दिया जाए।
3: सुनवा दे भैया।
5: किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटे ना, आज देखा किसान चर्चा का दिन आए है। ये किसान चर्चा में हमारे जौन प्रगतिशील किसान भैया हरे हैं वो आवा थे अपने खेती किसानी का अनुभव बांटा थे, कौने तरीका से खेती करत बाटन जौन से और किसान भाई भी अपन का कहा थे सीख ले के बढ़िया खेती कर सका थे। तो इस सिलसिले में आज देखा दो ही किसान भाई आए बटन, एक ज्ञान सिंह पटेल भैया और एक जौन बाटे हिंसलाल पटेल भैया। भैया ज्ञान सिंह पटेल बाब आपका कहाँ घर बा, कहाँ का रहाई वाला है आप जौन
6: भैया? हमार ग्राम बनपुरवा, पोस्ट चिल्ला गोहानी और तहसील बारा के हम निवासी हैं।
5: अच्छा अच्छा, तो भैया यहाँ कितना खेत बा आपके पास जौन बा?
6: हमारे पास भैया 24 बीघा जमीन है।
5: अच्छा, जौन में खेती हो था भैया?
6: हाँ 24 बीघा जो है हम खेती करवाते हैं।
5: अच्छा अच्छा, अब भैया हिंसलाल पटेल आप घर कहाँ बाटे हैं?
7: चिल्ला गोहानी बनपुरवा।
5: अच्छा अच्छा, मैंने

0: गौहानी बनपुर आपको घर बाटे है, तो आपके पास कितना खेत बा, कौने कितना रकबा में खेती करत भैया?
1: 7 बीघा बा। 7 बीघा मानी जी खेत है।
0: 7 बीघा खेत बा।
1: हाँ,
0: तो हमें कितना का का खेती करत है?
1: 1 बीघा लौकी है।
0: हाँ,
1: 1 बीघा तरोई बोए है।
0: हाँ,
1: 1 बीघा मूली।
0: अच्छा अच्छा और धान कितना लगे हुए भैया?
1: धान लगाओ अलग 10 बीघा पड़े।
0: मैंने जब मैं 7 बीघा खेती है, 10 बीघा हम कितना धान लगे हुए भैया? कैसे?
1: नहीं देना पहले है ना
0: अच्छा, और दूसरे के भी
1: दूसरे
0: का
1: के।
0: थे लगा हुआ था,
1: हाँ
0: माने बटाव को ले लेता
1: हाँ
0: उनका जो
1: हाँ
0: पैसा देता है,
1: पैसा देते।
0: तो 10 बीघा अलग से भी मेहनत का
1: हाँ
0: भाई
1: हाँ
0: कमाई लेते,
1: हाँ
0: वो अच्छी बात है जो बाटे, तो वो का लगा हुआ ओकर तैयारी चलत बा है।
1: हाँ चला तो बा।
0: अच्छा, तो भैया हो का कहा थे दोनों किसान भाई, ज्ञान सिंह पटेल भैया, हिंसलाल भैया। सबसे पहले ज्ञान सिंह पटेल भैया बतावा कि आपके पास तो लंबी खेती का अनुभव बाटे, 24 बीघा खेत भी बाटे है, तो यहाँ घरी जोन बा हो खेती में का का लेत बाटा, कितना बीघा हम बतावा भैया?
2: भैया हो, यहाँ समय गर्मी के मौसम चलते ही बटे।
0: गर्मी का भाई, अब तो बरसात तो शुरू हो
2: हाँ,
0: गई
2: अब
0: बा।
2: बरसात भी चालू हो गई बा, तो हम बेहन जो है डलवा दिए हैं, हमारी बेहन तैयार हो गई है, लगभग 4-6 दिन में जो है धाने के बिया हमारे जो है खेते में लागे लागे। सबसे पहले हम धान के खेत तैयार करवाओ।
0: तो कैसे तैयार करवाया बताओ।
2: धान के खेत हम झूरे में भैया उसको जुतवा दिए थे, पहले पलाऊ करवाए। अब पलाऊ करवाए के बाद हमें जो है 10 बीघा में बढ़िया गोबर की खाद, 10-12 ट्रैक्टर गोबर की खाद व्यवस्था करके जो है और उसमें छिटवा दिए। छिटवाने के पश्चात जो है ओका हम जो है फिर नौफरवा चलवाए दिन, तो समतलीकरण हो गए, पूरी खाद जो है मिल गई। तो इस प्रकार से पूरी पूरी खेत की तैयारी जो है करके हम छोड़ दिए।
0: मतलब 10 बीघा में खाली धान लगे हुए।
2: 10 बीघा भैया धान लगवाई थी, और वह जो शेष खेत हमारे पास बचा है उसको हम जो है 4-5 बीघा हम बजरी बोवाई थी, तब बजरी
0: अच्छा
2: वाला
0: अच्छा
2: खेत भी जोता होता के रेडी रखे हैं, क्योंकि मौसम के मिजाज देखा जाते 2-4 साल से कि पानी बरसे लागत है तो निकलबा नहीं करत,
0: ना बात सही कह रहे
2: पंद्रह
0: हैं।
2: दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो किसान भाई जो है बढ़िया से जुताई नहीं कराई पौते, एक वजह से खेती में उनका दिक्कत। मान लीजिए धान जैसे हम बोवत है, तो धान के तो ठीक है, पानी अगर ज़्यादा हो तो हम लोहाई कराए ले तो हमार धान मजदूर बुलाए के, हाँ, बेहन उखड़वाए के लगवाई सकी थी, लेकिन अब जैसे बजरी में पानी ज़्यादा बरसे लाग तो फिर बजरी की बुवाई कायदे से ना हो पाए। तो और जो उन शेष खेत हमारे पास बचा था, हम साग सब्जी की खेती भी करवाई थी, 2 बीघा हम मूरी बोवा दी है
0: अच्छा
2: अपने खेते
0: अच्छा
2: में।
0: अच्छा
2: हमारी मूरी दुई दुई पत्ती जो है हो चुकी है, अब कतई दिखाई पड़ रही है कि कतौ कतौ जो है तीसरी पत्ती जो है लेने लगी है, और दवा के हम छिड़काव भी करवाए दे आए। और 1 बीघा हम जो है लौकी भी बोआए है, और 1 बीघा खुरथी बोआए है।
0: कुर्थी का होत भैया?
2: खुरथी वो है बरसेम जे का बोलत हैं,
0: ग्वार फली
2: ग्वार
0: में।
2: फली,
0: हाँ, कहूँ बरसेम भी
2: कहूँ
0: बोया।
2: बरसेम बोलत हैं, कहूँ ग्वार फली बोलते हैं, कतो कतो खुरथी बोलते हैं। तो हमारे एरिया में खुरथी होकर ग्वार फली के
0: अच्छा
2: बोला करत थी,
0: अच्छा
2: तो
0: अच्छा
2: ग्वार फली जो है बढ़िया पैसा देती है, तो ग्वार फली जो है इसको भी 1 बीघा करवा दिए हैं। और 2 बीघा भैया हम तरोई भी जो है अपने खेते में बोआए है, क्योंकि गर्मी में सब हम रेडी करवाए रहे खेत, तैयार तैयारी बेहतरीन करवाए के जब हमारा खेत बना है, तो जैसे बरसात भाई तो इसे बोवाई दिन साग सब्जी वाली फसल। और खास फसल हमारे मूली होत है, और मूली के हम बेहतरीन ढंग से जो है तैयारी करके जो है बोवाई थी, और मूली सबसे बढ़िया पैसा भी देती है।
0: बात सही कहा था ज्ञान सिंह भैया। हम कहीं से देखे में और तो सब जगह मूली होत ना, इन पहले होत रही मुना, अब जो न बाटा ही है कौनो सीजन में ना ही होत बा। आप तो मान लो बरसात में, बरसात में तो और भी कठिन होत है,
2: जी
0: और सबसे अच्छा पैसा बरसात वाली मूली देत
2: बर
0: है। तो हम मूली के बारे में थोड़ा विशेष रूप से आपसे जानना चाहब, जो है कुछ और किसान भाई भी सीख ले सकें। तो मूली खेत के तैयारी से लेके बुवाई तक के कुछ बतावा जो बा, कैसे खेत तैयारी की है, कब शुरू की है एक जो बा?
2: भैया, हम 1 जून में खेत जुताई दिन है,
0: हाँ
2: हाँ, लगते जून जो है हम पहले अपने खेत को जुताई दिन, और जुताई के पश्चात जो है ओका पलेवा कीन,
0: अच्छा,
2: ओका हम
0: माने
2: पले,
0: जोताए रहा वैसे धान कटे।
2: हाँ, मतलब कि गर्मी में जुता दिए थे, जिसमें हमको
0: नमी रही हुए तभी तो जुताए होगा
2: नहीं,
0: ना,
2: नहीं झूरे जुताए थे, जब
0: झूरे
2: पलाऊ
0: जुताए होता
2: कराते,
0: है।
2: हाँ पलाऊ कराते हैं तो झूरे खेत जुतवाते हैं, जिससे एकदम से खेत बढ़िया
0: हाँ।
2: बन

0: जाए,
1: जो में कीड़ा मकोड़ा रहे, गर्मी की धूप लगे,
0: हाँ गर्मी की धूप लगे, बढ़िया हवा खा जाए खेत। ओके बाद जब नौफरवा से जुताई दी थी तो समतल तरीके से हो जाए, तो ओका पलेवा कराए, पलेवा कराए कि जब खेत हमार पक गया कायदे से, तब जो है हम उमें जो है फिर सोका जुतवाए, और जुतवाए दिन तो उमें पाटा ओटा मरवाए के जो है बेहतरीन खेत बनाए ले।
1: अच्छा, खाद नहीं डाला कौनो?
0: नहीं, इसमें जो है किसी प्रकार के देसी खाद जो है जब डाल देते हैं तो जब बहुत देसी खाद हो जाता तो जड़ी में करे कीड़ा लगे थे, तो ऐसे हम पचे गोबर के खाद जौन मूली वाला खेत हो तो उसमें गोबर के खाद बहुत कम फेंकवा हो जाए थी,
1: या तो बहुत पहले जाइए डालवाई।
0: हाँ बहुत पहले रहा था तो ठीक रहे, लेकिन अगर हाल हाल में अगर गोबर की खाद आप फेंकोबे तो जड़ी में कीड़ा लगे ही, तो ओके खातिर जो है जैसे खेत बन गए, जब खेत बनावे लगा एक बार फिर से पलेवा किए तो पिंडा मेथिलीन जो दवा होती है उसका छिड़काव कर देते हैं जिससे खर पतवार कम आवे, तो ओका हम जो है छोड़ दे थे कुछ दिनों के लिए खेत, उसे छोड़ दे थे, तो जब छोड़ देवा करी थे तो घास जोन बटे ओकर खर पतवार जोन बटे झुराए जाते हैं, और जब झुराए गए तो जुतवाए, जुतवाने के पश्चात जो है नौफरवा से एक दुबही जुतवाए लेन, ओके बाद जो है बिया छीट के, और छीटे के पश्चात एक बिदहनी करवाई के, अब पांटा जो है बैल से पांटा मरवाई देते हैं जिससे जो है खेत के जो हेंगा होता है वो सारे जगह जो है पांटा जब लग जाता है तो बैठ जाते है, तो जो मूली की अखुआ निकलता है वो सीधा निकलता है, तो मूली जब टेढ़ी होगी तो उपारेंगे तो टूटेगी, और जब बैल से पांटा मारा रहता है तो मूली कभी जो है टूटेगी नहीं। अच्छा। और उसी में जो है जड़ ओड़ के कीड़ा के लिए अब तो बाजार में विभिन्न प्रकार की दवा भी आई है जड़ों के लिए, तो जड़ के लिए दवा हम डाल देते हैं। हाँ
1: बोते की,
0: हाँ बोत के बाद एक बार जड़ के दवा डाल के और तब जो है मूली को बोवाइए, और फिर उसको जो है जब पहली गुड़ाई दे तो दवा के छिड़काव करें,
1: गुड़ाई भी करत है?
0: हाँ गुड़ाई करवा देते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो गुड़ाई करवाई दे तो ओके दवा के छिड़काव कोई दे तो उसमें जो है जड़ के भी छिड़काव और पत्ती के भी छिड़काव, क्योंकि पत्ती को भी हमको बचाना है मूली में, अगर पत्ती बची रहेगी तभी बाजार में सही दाम उसको वो मिल पाएगा, अगर पत्ती और जड़ दोनों सही प्रकार से नहीं रहेगी तो आप अच्छा दाम न पाई पाई है।
1: तो आप जो बाटा ही बात है गोड़ाई वाला दवाई डाल गोड़ाई करवाई चुका है सब?
0: हाँ एक बार जो है उसकी जो पतली पतली घासें हैं हल्का हल्का खुरपी एक बीघे में मरा गई है, एक बीघा अब जो है उसमें खुरपी नहीं मराई पाएगा।
1: तो इस समय का स्थिति बढ़िया बा मूली?
0: हाँ मूली बहुत अच्छी भैया,
1: पत्ती को होगी
0: अब एक एक बीघा तो तीसरी पत्ती निकल आई है, और एक बीघा जोन बा अब दुई पत्ती बटे, तो एक बीघा जोन तीन पत्ती बा ओका हम गुणवायु हो चुका आई। हाँ तो वो मूली जो है हमारी ग्रोथ कर रही है, अब ये 40 से 45 दिन में अब वो मूली हमें निकले लगे, यह समय मूली के रेट भी अच्छा है,
1: दाम हाँ बरसात में बढ़िया मिलता है, सब नहीं उपजाए
0: पाओ? हाँ नहीं सब तो नहीं
1: उपजाए। अनुभव का पहली बार बोए अगर पहले भी बोता?
0: नहीं भैया हम मूली बराबर जो है बराबर मूली बोते रहे, हम अषाढ़ वाली मूली जून के जून से जब मूली के पकड़ते हैं मई जून से, हाँ तो यही मई जून में तो पैसा है, मई जून जुलाई अगस्त ये चार महीना अगर आप मूली बढ़िया से तैयार कर लीजिए तो साल भरे के खेती के पैसा आप पाई जाब।
1: एक बताओ जहाँ मूली खेती करत वहाँ का खेत का स्थिति, जैसे माने कोनो खेत में पानी लग जाए था कोनो पानी नहीं लगा?
0: भैया हमारा जो खेत है जहाँ हम मूली बोवाते हैं 3-4 बीघे तो वो जो है उसमें पानी नहीं टिकता है।
1: हाँ तभी ठीक हो तो,
0: अगर पानी टिक जाए तो मूली बढ़िया हमार बढ़िया हो ही न पाए, तो उस मूली को अगर समतल में बोएंगे तो मान लीजिए गर्मी में बढ़िया होता, लेकिन अगर पानी बरस जाए तो अषाढ़ में सब खराब हो जाए। अषाढ़ वाली जो मूली है उसको थोड़ा खेत जो है ऊंचा ढाली के हो, मतलब पानी दे तो
1: निकल जाए, माने लागे ही ना पानी,
0: पानी न लागे तो आपकी मूली बची रहेगी।
1: तो ये तो रही तो मूली के बात, एकरे अलावा नुआ तोरई की खेती कर?
0: तरोई भैया 2 बीघा तरोई भी हम बोए हैं, और तरोई भी जो है हम बहुत पहले से बोवाते हैं, पहली फसल तरोई ने हुआ करे थे।
1: तो कर का स्थिति भैया?
0: ओकर स्थिति है कि वो तीन तीन चार चार इतनी इतनी आई गई बटे गई ले लागिया,
1: मैंने गवा फूटे शुरू,
0: हाँ गवा फूटना कहीं कहीं एक एक एक एक बीता डेढ़ डेढ़ बीता गई चल चुकी है।
1: तो मैं तो खाद उद डाले हो?
0: हाँ हमें जो है
1: का तैयारी रही भैया?

0: खेत जोताने के पश्चात उसमें बढ़िया सड़ी गोबर के खाद फेंकवा करके अब ट्रैक्टर से जोतवाई के जो है हिंगवाई के, और उसके बाद जो है घोड़े से खींच के दो दो तीन तीन मीटर दो दो ढाई ढाई मीटर पे बीच के गिराए दें, और
1: अच्छा
0: गिराए
1: अच्छा
0: के पश्चात इतना दूरी एक कहती 2.5 मीटर, फिर जो है 2.5 मीटर जब दूरी रहे तो दोनों के दूरी बराबर न हो चाहिए, एक तरफ 2.5 मीटर रहे एक तरफ 2 मीटर रहे, तो
1: अच्छा अच्छा
0: होत का है कि वो का हम बैल से जोतवाई दी थी। अब जैसे अब आई गई बा तो किसान के एक सहेजे है जिके पास बैल बटे कि भैया हमार तनी तर्रोई जोत दे है
1: मतलब
0: एक दो
1: इतना
0: बही,
1: जगह रखा था कि बैल हमें चल सके,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: नुकसान ना हो।
0: नुकसान न हो, तो का हम एक दो बही खेत अपन जोताई देवे, और जोताई के पश्चात जो है उस पर जैसे DAP पेड़ पौधा पे लगावे के बाद तो जब जोताई जाए तो खुरपी से वो पे DAP लगवाई देव, अब बस काम खत्म।
1: तो यहाँ समय तो गवा फूटत बाटे, तो यहाँ समय कौन खाद देवा, देसी खाद वगैरह भी?
0: नहीं अब देसी नहीं, बस दो ही खाद देते हैं, एक बार DAP लगा देते तो छोड़ देते हैं, अब जब पानी बढ़िया से बरसे तो एक आध नहीं यूरिया के झापक मार देवे जैसे जो है बढ़िया से चल दे फूल फल आवे लगे।
1: हाँ, तो कब तक फलत आवे लगे
0: अभी
1: हमें?
0: मान लीजिए कि अभी है कि 20 उस दिन में उसमें फल आना चालू हो जाएगा।
1: अच्छा, बाजार जाए लाए शुरू हो
0: हाँ
1: जाएगा,
0: बाजार जाओ, मूली और ये
1: एक
0: दोनों,
1: साथ ही हो।
0: हाँ एक मान लीजिए 4 6 8 दिन 10 दिन।
1: अच्छा बताओ, मूली जैसे तो कुछ लोग तो बारिश कहा थे भाई डुड़ोही पे बोवा जाए, मेड़ी बने के तो ज्यादा बढ़िया हो था, तो आप लंबे खेती करा था ना, बड़ा मत हो बहना थे जोन।
0: भैया हमरे कहती बलुई मिट्टी बा, हम
1: अच्छा
0: लोग अगर मेड़बंदी कर दे थी तो
1: हाँ
0: मूली के जड़ खाए लेती।
1: हाँ ये बात है।
0: हाँ और जैसे मिट्टी वजन होए तनी पानी
1: तो
0: क्षमता ज्यादा होई ओकर, हाँ
1: हाँ
0: लेके तो ओहमे मेड़बंदी से जो खेती करत है
1: हाँ
0: उला बनाई के तो
1: हाँ
0: करे हिया जो है मूली बहुत अच्छी होत है।
1: ज़्यादा अच्छी
0: हाँ
1: होता है।
0: वो तो तरोई को खेती मेड़बंदी से करा कर थी।
1: हाँ एक बात और, जैसे बरसात का खेती ज़्यादातर लोग बतावत हैं मचान विधि से अच्छा होता, आपके यहाँ ये कोनो बात नहीं ना?
0: भैया हमारे यहाँ मचान विधि से नहीं होते, हमारे कुछ अगल बगल में लोग हैं ना जैसे लौकी नेनुआ ये दोनों फसल जो है जैसे
1: करेला
0: हाँ
1: बरसात वाला है।
0: करेला लौकी नेनुआ ये जो है मतलब 5 बिस्सा 8 बिस्सा बांस ले लें हमें गाड़ की डोरी जो है डोरी चारों तरफ से बिंध देते हैं, और
1: अच्छा
0: नीचे
1: अच्छा
0: जो है बोवाई के और उसी में गड़ाई कर देते हैं, और वो चढ़ करके पड़ता है और वो
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया फरत है, लेकिन थोड़ से ही होता है कि
1: मेहनत
0: भाई
1: होता
0: ओकरे
1: है।
0: लिए बांस से बल्ली की व्यवस्था करी
1: कुछ
0: डोरी
1: लोग
0: की
1: तो
0: व्यवस्था
1: तार भी
0: करी।
1: लगा देते हैं लोहे के
0: हाँ
1: जैसे।
0: कुछ लोग तो पतला वाला जो ये स्टीलेटर वाला तार आता है लोकल वाला उसको जो है खींच करके बांध देते हैं, उसको खोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, जैसे डोरी रहेगी तो मान लीजिए जैसे गवा चढ़ा है तो उसमें कहाँ गांठ बांधे कहाँ नहीं गांठ बांधे हैं, और डोरी भी क्या होती है जैसे डोरी बाटे तो कतौ कतौ से दरे दरे से काट के अपन लपेट के हटाई ले।
1: हाँ बात सही कहते हैं। अब जोन बतावा था ग्वारफली भी ले बाटा,
0: हाँ
1: ओकर का
0: ग्वारफली भी,
1: स्थिति बा?
0: ग्वारफली भी जो है भैया जाम आई है छोटी छोटी है, अभी तो 90 दिन की फसल होत है, अभी है कि अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बरसात हो जाते हैं तो ये बकुलिया जावा करते हैं।
1: हाँ ये बात है,
0: हाँ
1: खराब हो
0: लेकिन
1: जाएगा
0: अबा
1: थोड़ा।
0: तो ठीक हमका दिखा दिया टे, अब की बार जो है पिछले बार बोए थे तो बकुलिया गए थे तो बहुत अच्छा फायदा नहीं दे पाए थे, लेकिन अब की बार तो बकुलिया नकुलिया नहीं बा सही चल रही है अभी।
1: तब
0: हाँ
1: मतलब यह मुख्य जोन में तीन सब्जी खेती की है
0: हाँ
1: बतावा,
0: तीन तीन मेन सब्जी
1: तो
0: है।
1: बढ़िया बात है। एक अनुभव बतावा का फायदा बा हमें, आपका नजर आवत तो फायदा ले चुका है,
0: भैया हो
1: मूली में तो फायदा हमें नजर आवत बा भाई।
0: जो है अभी कहा कि जो ग्वार फली है ये भी बहुत बढ़िया पैसा देती है,
1: हाँ, दाम अच्छा
0: इसमें
1: मिलत
0: इसमें
1: एकर।
0: लागत भी नहीं है, इसमें लागत का मतलब बीया ही भर आपको बोना है, एक आध बार यूरिया उरिया छेड़ दे, बाकी DAP ओपी की जरूरत नहीं है, बहुत खाद वाद की जरूरत नहीं, जितने बढ़िया कम मतलब बहुत मजबूत खेत रहेगा तो रोग ज़्यादा लगेगा
1: सही
0: बकुलिया जाएगी, और
1: कहा।
0: जितने कमजोर खेत है उतने बढ़िया ग्वार फली अच्छा फरत है।
1: अच्छा।
0: इसका जो रेट होता है अन्य सब्जियों से बहुत अच्छा होता है क्योंकि 200 रुपया धारा से चालू होता है, तो लास्ट लपेट तक 175 तक आते आते जो है सारी जो है ग्वार फली की तुड़ाई हो जाती है और पैसा अच्छा देती है।
1: तो एका कैसे बेचा था, बाजार ले जा तो खुद या कि ऐसे
0: भैया
1: दे था व्यापारी के
0: हम
1: दे था?
0: बाजार ले जाते हैं, हमारी निजी आढ़स भी है
1: अच्छा
0: जेसरा
1: अच्छा
0: में, मैं आढ़स भी खोला हूँ। हाँ
1: हाँ, तो वहाँ तो
0: तो
1: बिक जात होगी
0: हाँ
1: ये तो।
0: वहीं बाजार में आढ़स पे ले गए तो वहाँ पर जो है भाई

0: लोग आते हैं दूर दूर से,
1: या वैसे खाई वाले ले जाते
0: खाई
1: हैं
0: वाले ले थे,
1: व्यापारी
0: ज्यादातर व्यापारी लोग ले थे। आ जैसे मान लो वैसे वो लोग बागायन, क्योंकि किलो 2 किलो की जरूरत, 4 किलो को पड़ी तो वह ले लें,
1: तो उसे ज्यादा फायदा मिल
0: फायदा मिल
1: जाता।
0: जाता।
1: भैया हिंसलाल पटेल भैया, अब आप बतावा कि आप जो सब्जी के भैया भी खेती के, आप वो सब्जी खेती के है,
2: हाँ,
1: तो आप कुछ बतावा कौन कौन सब्जी खेती की है भैया?
2: अभी 1 बीघा लौकी बोए हैं।
1: लौकी का स्थिति भैया
2: ठीक बा,
1: ठीक का मतलब का स्थिति बा, कैसे तैयारी किया, कब बोया होगा जोन बाटे है बताओ भैया।
2: जून में बोवा हम,
1: खेत कैसे तैयारी किए रहे होकर?
2: जताई दे नौ फरवा जताई कि बस बोवाई दे रहे हम
1: ऐसे सीधा ही लौकी,
2: सीधा
1: ऐसे तो
2: सीधा।
1: कहाँ लौकी कैसे बोया भाई, सीधा ऐसे छींटते है
2: नहीं पे खुरपी से बोवा।
1: खुरपी से बोवा,
2: हाँ,
1: मन नमी उमी रहे तभी तो जामे, कि कैसे जामे लौकी?
2: सिंचाई कई कई बोल रहे हैं,
1: सिंचाई मतलब खिया खेत फिर जोताए के नमी रही तब बोए, हमें खाद
2: नमी
1: उतना कुछ डाले रहे
2: कुछ नहीं।
1: तब ओकरे बाद का की है भैया?
2: अब खाद धई देत है,
1: आ
2: खाद धरत है,
1: जाम या एक बार खाद पेड़े पेड़े धरत
2: पेड़े
1: है,
2: पेड़े। हाँ,
1: कौन खाद धरत है भैया?
2: DAP
1: DAP ज्यादा धाई तो जरी जाए भैया,
2: ना ही 1 किलो धई सकी थे।

0: नमी उमी रहे तभी तो जामे कि कैसे जामे लौकी?
1: सिंचाई कई कई बोल रहे हैं,
0: सिंचाई मतलब खिया खेत फिर जोताए के नमी रही तब बोए। हमें खाद
1: नमी
0: उतना कुछ डाले रहे
1: कुछ नहीं,
0: तब ओकरे बाद का की है भैया?
1: अब खाद धई देत है, खाद धरत है,
0: जाम आए ओकर खाद पेड़े पेड़े धरत
1: पेड़े
0: है।
1: पेड़े हाँ।
0: कौन खाद धरत है भैया?
1: डीएपी
0: डीएपी डालता था तो जरी जाए भैया?
1: ना ही 1 किलो धई सकी थे,
0: 1 किलो धई
1: एक पेड़ धई सकी थे,
0: तो जरी जाए हो
1: ना जरे ओका हिसाब हो तो धरे कि ना
0: का हिसाब बाटे?
1: लंबी दूरी से खुदाई कई के,
0: अच्छा खुदाई के कि नीचे दे दो?
1: नीचे दे दो
0: पेड़ छोड़ के, जो
1: पेड़ छोड़ के एक बीता पेड़ छोड़ के।
0: तो यहाँ समय लौकी का स्थिति पे गवा हुआ फूटा था का
1: ना गवा ना फूटे थे कि बीता पेड़ हो गया।
0: कब तक फूटे शुरू हो जाए भैया?
1: अब फूटे चालू हो जाए करीब 10 रोज बाद।
0: अच्छा अच्छा मैं खरपतवार वगैरह भैया
1: कुछ नहीं बात,
0: कुछ
1: सफाई एकदम निराई,
0: सब सफाई निराई उराई करे है। एक अलावा काले है
1: फुर्ती वही ग्वालफली
0: और
1: तरोई बा एक बीघा।
0: तरोई का स्थिति भैया?
1: ठीक भैया ठीक बा,
0: ठीक में मतलब का स्थिति बा? गवा वाल फुटत बा के तनी बड़ी हो गई है
1: नहीं बा,
0: पेड़ कैसे बा? रोगान दुकान तो
1: रोगान
0: नहीं?
1: नहीं बा, गवा नहीं दे बा।
0: अच्छा अच्छा धानक खेती करत है भैया?
1: धानक खेती कर भैया।
0: धान कितना करत है?
1: धान 10 बीघा।
0: 10 बीघा है? अच्छा तो ओकर धान का बेहन डाल चुका है?
1: बेहन डाल चुका है, बेहन तैयार हो गई बा।
0: बेहन तैयार, बेहन कोनो रोग दोख बेरामी
1: कुछ नहीं रोग बा।
0: अच्छा अच्छा तो धान में एक संकर प्रजाति ले है?
1: नहीं हाइब्रिड की है,
0: हाइब्रिड वही संकर प्रजाति जो बाटे है। तो 10 बीघा में कितना नर्सरी कितना डाले रहे?
1: 35 किलो डाले है बीघा।
0: 35 किलो बीघा पीछे
1: नहीं पूरा
0: 10 बीघा भरे ना सब? एक कई धान लगावा था अलग अलग?
1: बस एक कई धान
0: सब खेते में पूरा
1: पूरा।
0: तो जो धान 10 बीघा में लगेबो ओकर का तैयारी बे, खेत तैयारी का चलत बो ओकर? भाई बाबू तो लगावे लाए समय हो गए तो कब मैंने ओकर खेत तैयारी कैसे किए है?
1: अब रगी नहीं पाए है, अब सीधा वहाँ में
0: जोताई नहीं करवाए रहे?
1: नहीं
0: कहे
1: मौका नहीं मिल पाए,
0: मौका नहीं मिल पाए। जैसे काफ़ी किसान भाई हैं हरी खाद में ढैंचा सन नहीं ये सब बुआई के जोतावा थी तब धान लगावा थी?
1: नहीं हम नहीं लगाए।
0: तो का डाले बिना खाद के लगे हुए धान?
1: नहीं यही मुर्गी वाली खाद गिराओ।
0: कथा के
1: मुर्गी
0: मुर्गी की खाद हर साल ही डालती है?
1: हर साल डाली थी।
0: तो बढ़िया लागत है, इसे फायदा रहा था?
1: फायदा रहा था,
0: धान मजबूत होते
1: हैं? मजबूत होते हैं।
0: अच्छा अच्छा तो खाली मुर्गी खाद
1: बस?
0: एक बार डीएपी वगैरह भी?
1: कुछ नहीं यूरिया,
0: डीएपी फास्फोरस
1: कुछ नहीं, सीधा यूरिया।
0: सीधा यूरिया तब जब लगाई लगान लाई लेते हो तभी डालत होगा?
1: हाँ
0: पहली सिंचाई के समय में?
1: हाँ।
0: अच्छा अच्छा तो धान जब लगेबो ओकर सिंचाई का व्यवस्था भैया?
1: समरसेबल अपने पास?
0: अपने पास समरसेबल बाटे है। और जोताई के लिए ट्रैक्टर से खेती करते हो?
1: ट्रैक्टर से हाँ।
0: तो गोबर खाद नहीं डलता भैया?
1: गोबर खाद थोड़ा बहुत
0: धान में तो डाला जाता जौन भाई?
1: डाला जाता, 4-5 मवेशी हैं,
0: 4-5 जानवर हैं।
1: हाँ।
0: का हैं भैंस हैं गाय?
1: भैंस हैं गाय हैं,
0: भैंस गाय दोनों हैं?
1: हाँ दोनों।
0: कई ठी भैंस कई ठी गाय?
1: 3 ठो भैंस हैं।
0: हाँ
1: दो ठो गाय हैं।
0: लागत है?
1: हाँ 8 भैंस लागत है, 2 ठो बनी हैं।
0: 2 ठो बनी हैं, 1 भैंस लागत है। गाय?
1: गाय 8 ठी लागत है।
0: कितना दूध हो जात है?
1: दूध हो जाता है करीब 10 लीटर तक।
0: तो पूरा खाई जाता है कि
1: बेचत? नहीं खाई नहीं जाए,
0: कुल बेचत है मतलब?
1: हाँ डेयरी पर,
0: डेयरी में दही देता है उसे नगद पैसा मिल जाता है, चूनी चोकर के भी तो चाहे ना?
1: चूनी चोकर हाँ।
0: अच्छा अच्छा और जोन बाटे है का लेबे नया कुछ खेती? लौकी हो गया का कहा थे ये ग्वारफली ले है?
1: हाँ।
0: तरोई ले
1: है? हाँ।
0: और बाग बागवानी कुछ?
1: हाँ, मूरी ले है।
0: मूरी ले है?
1: हाँ।
0: मूरी का स्थिति?
1: मूरी ठीक है,
0: जमा उमा हो गए?
1: हाँ हो गए।
0: कोनो रोग बिरामी
1: कुछ नहीं?
0: दवा वा छिड़के है?
1: दवा छिड़के है।
0: अच्छा अच्छा इत रही भैया हो धान का खेती मतलब कि आप अपन भी बोवत है दूसरे के भी लेके? दूसरे को लेके बोवत है? बोत का ओकर लगाओ था कुछ? अब तो बोई वाला सिस्टम बना है जो
1: नहीं वाला
0: पूरा सब लगाओ बोई का
1: सब लाइन लगा
0: तो धान बढ़िया हो जाए थे? अगर पहले भी लगाओ तो बे?
1: हाँ।
0: ये धान का पहले का ले रहा है उसमें गेहूं ले रहा है या खाली रहा?
1: गेहूं रहा।
0: गेहूं रहा तो गेहूं बढ़िया हो गया?
1: गेहूं बढ़िया हो गया।
0: अच्छा पूरा 10 बीघा?
1: पूरा 10 बीघा।
0: अच्छा अच्छा अरे गर्मी वाला जैसे उड़द मूंग ये सब नहीं ले रहा है?
1: नहीं नहीं ले रहे।
0: अच्छा अच्छा गोबे नहीं करते? लेबे नहीं करते?
1: लेबे नहीं कर गोरू सब चल लेती?
0: गोरू चल लेते? हाँ ये तो बात बा भाई। तो जब धान ना चरी हैं गोरू?
1: धान कितना चरी हैं
0: मतलब देखभाल करत होगा?
1: देखभाल करित होगा।
0: अच्छा अच्छा तो भैया हो ज्ञान सिंह पटेल भैया आप बतावा 10 बीघा धान आपो लेत बाटे ओकर का तैयारी बा आपको भैया?
2: भैया हम खेत वो तैयार करके एकदम तैयारी हमारा सही है, हमारा जो बिया है वो तैयार हो गया है।
0: मतलब खेत तैयारी में हरी खाद वगैरह?
2: हरी खाद

0: हम पूरे खेत में जो है जोता करके बढ़िया से उसमें जो है हम सनई बोवाई दिए थे। हाँ, सनई बोवाई को जुतवाऊ दे है,
1: सड़ावत है,
0: आप सड़त या अब यह 4-6 दिन बाद जब एकदम रेडी हो जाए लेवाई तुरंत करवाई के, अब बस उसमें हम हरी खाद यही सनई जो है और उसको जब इतनी इतनी थी उसी जुतवा दिए हैं,
1: पूरा सड़ जाए तो बढ़िया खाद हो
0: वो
1: जाए।
0: बढ़िया खाद हो जाए तो बढ़िया काम जैविक के काम करत हो। हाँ, इतनी बढ़िया खेत खाद के काम करत है कि फिर और खाद डाले के जरूरत ना ही बा, लेकिन आदमी अब किसान भाई है तो डलही जे हरी खाद के प्रयोग करत वो खाद कम डालत है, आ जे हरी खाद नहीं इस्तेमाल करत आ गोबर के खाद नहीं इस्तेमाल करे तो ओका DAP पोटास
1: सब डाला ही के पड़े
0: यूरिया के जरूरत पड़े, लेकिन हमका पजन के बहुत जरूरत नहीं पड़े।
1: रासायनिक खाद पे ज्यादा निर्भरता ठीक भी नहीं होत, खेत भी खराब होत है भाई, पैसा भी ज्यादा लागत। जरूरत बाग भारी खाद, गोबर खाद आजकल देखा केचुआ का खाद भी लोग डालत
0: बा। हाँ, वो भी बढ़िया अच्छी खाद होती, कंपोस्ट खाद।
1: अब आपके यहाँ सिंचाई का सुविधा भैया?
0: हम भैया स्वयं के जो है ट्यूबवेल लगवाए है,
1: अपन खुद
0: चार हाँ 4-3 के बोर है, हम अपना भी सींचते हैं और किसान भाई के भी जो है सिंचावा करी थी।
1: सींच ले तो उसे पैसा भी मिल जाता,
0: उसे पैसा मिल जाता जो है,
1: दूसरे को सुविधा भी मिल जाता।
0: जी जी,
1: बहुत निक बात भैया। ज्ञान सिंह पटेल भैया और हिंसलाल भैया, आप सब आया है, अपने अपने खेती के अनुभव बांटा है, हमारा और भी किसान भाई सीख ले हैं। आप सबके आवे खातिर, जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया, देखा किसान चर्चा रही।
3: हाँ,
2: ज्ञान सिंह पटेल और हिंसलाल पटेल भैया, बड़ा फरिया बतियाई ना,
3: एकदम सही कहा। और राकेश भैया फरिया पूछबो।
2: हाँ भैया,
3: अच्छा एक बात और है, देखा किसान चर्चा से किसान भैया बहनी हरे सब्जी के खेती के जरूर लाभ उठाई है, जैसे बरसात के मौसम में मुरई के खेती भी या मूली जे के कहते हैं ओकर भैया पैदावार के नाम से अगर किसान भैया करत हैं तो बहुत अच्छी आमदनी होते है।
2: बिल्कुल
3: समझते कि नहीं? तो हम ही कहते रहे भैया, आज देखे एक लोकगीत और है राम सूरत और संघाती के,
2: अच्छा
3: विकास गीत है नगदी फसल के नगद, तो हम सोचे थे किसान भैया बहन सुनवा दिया,
2: सुनवा दिया भैया।

0: हाँ भैया
1: हाँ
0: देखा, लोकगीत रहा भैया, राम सूरत और साथी के,
1: हाँ
0: बड़ा नीक रहा भैया
1: हाँ अच्छा
0: सुन।
1: एक बात और रहे हो रघु
0: हाँ
1: भाई,
0: बोला भैया।
1: देखा खेती किसानी में भैया देखा समय समय पर तरह तरह का चर्चा होता है, तो इस समय देखा बरसात का मौसम है भैया, देखे पशु के साथे साथे भैया पराली का भी ख्याल
0: हाँ
1: रखे के
0: लड़कन का
1: चाहे
0: दिलन का ध्यान दे
1: और
0: भैया।
1: लड़कियन के दिलन का भी ख्याल रखें भैया, देखे का है कि रात बिरात का नाम से थोड़ा चप्पल उप्पल पहने रहें भैया, देखे कर की रौना का नाम से ज़्यादा निकलते हैं,
0: हाँ
1: और
0: भैया
1: साथे साथ एक बात का और ध्यान दें भैया, देखे यह समय मच्छर के नाम से
0: हाँ
1: तेजी से फैली हैं, तो किसान भैया बहनी हरन के चाहे कि पूरा बाही का शर्ट पहने और भैया जो उन कूलर वूलर रहे भैया उमन पानी उनी
0: निकाल दे भैया।
1: निकाल दें, ठीक है भैया।
0: और साथ ही साथ भैया जो है खाने पीने का सामान जो है, क्योंकि भैया बरसात में कीड़ा मकड़ा बहुत रहा थे ना,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ढाक के रखें भैया।
1: हाँ ये सही कहे। अच्छा एक बात और है, देखे किसान भैया बहनी हरन के हमारे सबकर
0: प्रोग्राम
1: पंचायत
0: कैसा था।
1: घर प्रोग्राम कैसन लगत है, ओकर अपन प्रतिक्रिया देवे चाहें तो हमारे सबका व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2500, एक बार फिर से भैया दोहरावत ही 800-4926-2500।
0: हाँ हाँ
1: तो भैया देखा पंचों से विदा लेवे का समय होता है, तो पंचों
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

0: किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास का सपना डबल इंजन सरकार ने साकार किया है। सरकार इस क्षेत्र को यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है।
1: मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहाँ की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज अपने चित्रकूट दौरे के दूसरे दिन कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन किए और पावन कामदगिरी की परिक्रमा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों और रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही इनायत नगर स्थित एक सर्राफा प्रतिष्ठान के संचालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया कि संत समाज ने ट्रस्ट के फैसलों पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने मंदिर में चढ़ावा गिनती स्थल का निरीक्षण किया है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा न हो सके।
2: इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त तो हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले वीआईपी पास की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल के रेफरेंस आईडी सस्पेंड कर दी गई है। इसके चलते उनके माध्यम से विशेष दर्शन पास जारी नहीं हो रहे हैं। नई रेफरेंस आईडी अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में पहले से जारी किए गए विशेष पास मान्य किए जा रहे हैं। नए पास नई रेफरेंस आईडी जारी होने के बाद बन सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए श्री चौधरी ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
3: मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावी ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी सजा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति 10 से 15 जुलाई तक पणजी और लखनऊ का दौरा करेगी। इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। समिति इस दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, अधिवक्ता संघों और विभिन्न पेशेवर संगठनों के साथ परामर्श करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट नीतिगत नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश को 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को प्रदान किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन 543 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 750 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश के कुल उत्पादन में अकेले यूपी 22% योगदान कर रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना

0: सिन्हा ने कहा कि सरकार हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर प्रतिबद्ध है और ये कीर्तिमान आसानी से हासिल करेगी।
1: 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर विद्यार्थियों को 1,00,000 से अधिक डिग्रियां और 51 पदक प्रदान किए गए। पदक पाने वालों में 9 छात्र और 42 छात्राएं शामिल हैं। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किट का वितरण और 800 बालिकाओं का HPV टीकाकरण कराया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अब तक लगभग 3,00,000 बालिकाओं का निशुल्क HPV टीकाकरण कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने ये जानकारी दी है। TET परीक्षा 2 और 3 जुलाई को प्रतिदिन 2-2 पालियों और 4 जुलाई को प्रथम पाली में सम्पन्न हुई थी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कई जनपदों में बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। राजधानी लखनऊ समेत फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर सहित कई जिलों में आज बारिश हुई। बारिश और जलभराव के चलते संभल और मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। अमरोहा में बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गाँवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यहां 11 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 11 जुलाई तक प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: पिछले 24 घंटों के दौरान वेस्ट यूपी में हेवी टू वेरी हेवी रेन के साथ कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेन हुई है, और अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से कल जो है इसके सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 10 जुलाई को भी जारी रहेगा, और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में यह कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम में काव्य कौमुदी। लीजिए, इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए सुनील दानिश का काव्य पाठ।
1: सबसे पहले एक शेर पेश है, अर्ज किया है कि हमारा साथ जिसको खल रहा है, हमारा साथ जिसको खल रहा है, हमारे साथ वो भी चल रहा है, हमारे साथ वो भी चल रहा है। और एक गज़ल पेश है, उसका मतलब यूँ है कि अब यहाँ

सर को झुकाना भी खता लगता है। अब यहाँ सर को झुकाना भी खता लगता है, मेरी बस्ती में तो हर शख्स खुदा लगता है, मेरी बस्ती में तो हर शख्स खुदा लगता है। अब यहाँ सर को झुकाना भी खता लगता है, मेरी बस्ती में तो हर शख्स खुदा लगता है। और मेरी कश्ती को साहिल से तो कोई बैर नहीं, मेरी कश्ती को तो साहिल से कोई बैर नहीं, खुद सफीना मेरा तूफान से जा लगता है, खुद सफीना मेरा तूफान से जा लगता है। मेरी कश्ती को तो साहिल से कोई बैर नहीं, खुद सफीना मेरा तूफान से जा लगता है। और ये शेर बतौर ख़ास देखिए कि बूढ़े माँ बाप को रोटी जो नहीं दे सकते, बूढ़े माँ बाप को रोटी जो नहीं दे सकते, उनके कमरे में ये फानूस बुरा लगता है, उनके कमरे में ये फानूस बुरा लगता है। बूढ़े माँ बाप को रोटी जो नहीं दे सकते, बूढ़े माँ बाप को रोटी जो नहीं दे सकते, उनके कमरे में ये फानूस बुरा लगता है। और ये शेर है कि लाख खामोश हो चेहरे का समंदर, लेकिन लाख खामोश हो चेहरे का समंदर, लेकिन दिल की बस्ती में कोई हश्र बपा लगता है, दिल की बस्ती में कोई हश्र बपा लगता है। लाख खामोश हो चेहरे का समंदर, लेकिन लाख खामोश हो चेहरे का समंदर, लेकिन दिल की बस्ती में कोई हश्र बपा लगता है। और ये शेर भी देखिए कि आईने में नज़र आता है जो इंसान हमें, आईने में नज़र आता है जो इंसान हमें, उसका चेहरा तो कहीं देखा हुआ लगता है, उसका चेहरा तो कहीं देखा हुआ लगता है। आईने में नज़र आता है जो इंसान हमें, उसका चेहरा तो कहीं देखा हुआ लगता है। और ये शेर भी देख लें कि उसकी आँखों में कभी अश्क नहीं बहते हैं, उसकी आँखों से कभी अश्क नहीं बहते हैं, जिसने सीने में कोई दर्द छुपा रखा है, जिसने सीने में कोई दर्द छुपा रखा है। उसकी आँखों से कोई अश्क नहीं बहते हैं, जिसने सीने में कोई दर्द छुपा रखा है। और आखिरी शेर ये है कि वक्त के साथ हर एक चीज़ बदल जाती है, वक्त के साथ हर एक चीज़ बदल जाती है, पिछले मौसम से ये मौसम भी जुदा लगता है, पिछले मौसम से ये मौसम भी जुदा लगता है। वक्त के साथ हर एक चीज़ बदल जाती है, पिछले मौसम से ये मौसम भी जुदा लगता है। और मक्ते का शेर है कि जिसने मज़लूम के आंसू यहाँ पोछे दानिश, जिसने मज़लूम के आंसू यहाँ पोछे दानिश, मेरी नज़रों में वो इंसान भला लगता है, मेरी नज़रों में वो इंसान भला लगता है। जिसने मज़लूम के आंसू यहाँ पोछे दानिश, मेरी नज़रों में वो इंसान भला लगता है। और अब कुछ दोहे पेश कर रहा हूँ समाज फरमाने, अर्ज़ किया है कि दिल ही दिल में गूंजता खामोशी का शोर, दिल ही दिल में गूंजता खामोशी का शोर, दिल है तन्हा एक तरफ सारा जग एक और, दिल है तन्हा एक तरफ सारा जग एक और, दिल ही दिल में गूंजता खामोशी का शोर, दिल है तन्हा एक तरफ सारा जग एक और। और दूसरा दोहा है कि मुझको बस इतनी मिले चाहत की जागीर, मुझको बस इतनी मिले चाहत की जागीर, अपने सुख देकर उसे ले लूँ उसकी पीर, अपने सुख देकर उसे ले लूँ उसकी पीर, मुझको बस इतनी मिले चाहत की जागीर, मुझको बस इतनी मिले चाहत की जागीर, अपने सुख देकर उसे ले लूँ उसकी पीर। और अगला दोहा है कि जाने कितनी दूर है चाहत का वो गांव, जाने कितनी दूर है चाहत का वो गांव, चलते चलते थक गई नज़रें नंगे पाँव, चलते चलते थक गई नज़रें नंगे पाँव, चाहे जाने कितनी दूर है चाहत का वो गांव, चलते चलते थक गई नज़रें नंगे पाँव। और ये दोहा भी देखिए कि जीवन भर छलता रहा मन को ये विश्वास, जीवन भर छलता रहा मन को ये विश्वास,

0: चाहे जितनी दूर हो वो है मेरे पास, चाहे जितनी दूर हो वो है मेरे पास। जीवन भर छलता रहा मन को ये विश्वास, चाहे जितनी दूर हो वो है मेरे पास। और ये दोहा भी देखिए कि एक दिन उसने फ़ोन पर कह दी ऐसी बात, एक दिन उसने फ़ोन पर कह दी ऐसी बात, करवट लेते ही कटी मेरी सारी रात, करवट लेते ही कटी मेरी सारी रात। एक दिन उसने फ़ोन पर कह दी ऐसी बात, करवट लेते ही कटी मेरी सारी रात। और ये दोहा और देख लीजिए कि दिल ने ढूंढा था जिसे आँखों में ना आए, दिल ने ढूंढा था जिसे आँखों में ना आए, दुनिया की इस भीड़ में बार बार खो जाए, दुनिया की इस भीड़ में बार बार खो जाए। दिल ने ढूंढा था जिसे आँखों में ना आए, दुनिया की इस भीड़ में बार बार खो जाए। और ये दोहा भी देखिए कि दुनिया की हर चीज़ है दौलत की मीज़ान, दुनिया की हर चीज़ है दौलत की मीज़ान, जाने कब इस नींद से जागेगा इंसान, जाने कब इस नींद से जागेगा इंसान। दुनिया की हर चीज़ है दौलत की मीज़ान, जाने कब इस नींद से जागेगा इंसान। और ये दोहा भी देखिए कि वक्त वक्त की बात है कौन किसे समझाए, वक्त वक्त की बात है कौन किसे समझाए, लाठी ले बूढ़ा चले बच्चा दौड़ लगाए, लाठी ले बूढ़ा चले बच्चा दौड़ लगाए, वक्त वक्त की बात है कौन किसे समझाए, लाठी ले बूढ़ा चले बच्चा दौड़ लगाए। और ये दोहा भी देखिए कि बंटवारे में बंधु ने खेला ऐसा दांव, बंटवारे में बंधु ने खेला ऐसा दांव, मेरे हिस्से पेड़ है उसके हिस्से छांव, मेरे हिस्से पेड़ है उसके हिस्से छांव। और ये दोहा देखिए कि दरिया की हर मौज पर लिखा जिसका नाम, दरिया की हर मौज पर लिखा जिसका नाम, जीवन भर प्यासा रहा वो पंछी गुमनाम, जीवन भर प्यासा रहा पंछी गुमनाम।
1: काव्य कौमुदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुनील दानिश का काव्य पाठ, और लीजिए अब सुनिए इसी कार्यक्रम में डॉक्टर अमरजीत राम को।
2: कविता का शीर्षक है तुम भी लौट आओ। समय की दरिंदगी से आहट, मुट्ठी भर कालिक पुती गहन अंधेरी रात, सिसकते हुए लौट रही है शबनमी सुबह की ओर, तुम भी लौट आओ। जैसे महुए में लौट आई है महक, जैसे आमों में लौट आई है मंजरियाँ, जैसे शीरीष के फूलों की खुशबू में लौट आया है जीवन, जैसे बनों में लौटता है शिश्रांत, जैसे नवजात में लौटती है भाषा, लौट आओ। आओ मेरी बाहों में बाहें डाल कर देखो, सूर्य की किरणें तुम्हारे होठों की लालिमा से अतिरंजित अशोक के फूल पर पसर चुकी हैं। अर्धरात्रि से ही चांद नीम की टहनियों में अटका, हरे पत्तों के बीच कपासी रंग भर रहा है, हरी बिछली घासें चुन रखी हैं मोतियाँ तुम्हारे कानों के लिए, बेल ने सजा रखी हैं सफ़ेद सफ़ेद फूल तुम्हारे जूड़े के लिए, यहाँ से सुदूर पहाड़ों पर बुरांस के फूल टपकाने लगे हैं महावरी रंग तुम्हारी एड़ियों के लिए, इसलिए आओ बार बार आओ मेरी बाहों में बाहें डाल कर कहो, तुम हो तो हम हैं, हम हैं तो तुम हो, हम दोनों हैं तो सृष्टि और जीवन है। दूसरी कविता का शीर्षक है दुरभिसंधि। अमावस की चांदनी रात, बसंत की भीनी भीनी खुशबू, देवदार के हौले हौले झोंके, झींगरों की मधुर लोरियाँ और चीड़ों के झब्बेदार थपकियों में सोया मसूरी प्रातः आँखें मीचने लगा है। एक सुनहली सुबह के साथ सूर्य की किरणें मलिन झोपड़ पट्टियों पर दे चुकी हैं दस्तक, बुरांस एक अबोध बालक की हंसी में घुल रहा है, अफसोस दम तोड़ती दूभर नदी शांत है,

0: मैं झरनों के संगीत में अतीत तलाश रहा हूँ, तलाश रहा हूँ पहाड़ी के पार्श्व में उस मजदूरनी के पवित्र पगचिन्ह जो मिट्टी गिट्टी ईंट पत्थर ढोते ढोते दो घाटियों के बीच कहीं गुम हो गई सिर्फ एक रोटी के लिए। मैं बेबस मऊ चट्टानों से पूछ रहा हूँ उसका पता, जानना चाह रहा हूँ उसका हाल कि क्या वह बची है अभी भी पितृसत्ता के खौफनाक हथियार से, या फिर मार दी गई दुरभिसंधि से किसी सूनी सड़क या चौराहे पर अकालिक, जैसे मार दी गई देश की अनगिनत बेटियां। कविता का शीर्षक है उम्मीद। उम्मीद है वह फिर खड़ी होगी, सजल नेत्र लड़खड़ाते पांव और पैरों में ठुकी जार सत्ता की किले उखाड़ फेंकेगी, तोड़ देगी अत्याचार की सारी जंजीरें, लहू लुहान खुरदरी हथेलियों से रंग देगी अस्तब्ध दिशाएं, अंतरिक्ष का सूरज थोड़ा और लोहित होगा, सुलगती धरती की छाती थोड़ी शीतल। उम्मीद है वह एक दिन पूरी ताकत के साथ खड़ी होगी, और जब खड़ी होगी तो झुकेगा आसमान। कविता का शीर्षक है मसूरी की शाम। श्रम और संस्कारों में पूरित एक मजदूर ने अपनी स्प्रिया से पहाड़ के उच्च शिखर पर बैठी मोख रही है सन्निबद्ध भीमकाय शिलाओं के दरार और उसके सिर पर पड़े दुकूल से एक अनगढ़ सौंदर्य झांक रहा है। सन्निहित देवदार के दरख्त से बधा एक नन्हा सा बच्चा हीशर और काफल के खट्टे मीठे स्वाद के साथ मस्त है गिट्टी और मिट्टी में। उसे इंतजार है माँ के आने का। यह मसूरी की वही शाम है, वही समय है जब सूर्य बुरांस के चटक लाल फूलों पर अटका है, झरनों के संगीत में शाम झील की गहराई में उतर रही है, पहाड़ी चिड़िया चोच में दाने दबाए लौट रही है घोंसलों की ओर, गिलहरियां दरख्तों पर बधे गुंबदाकार पुआल पर बैठी हैं और जल्दी जल्दी कुतर रही हैं धान की पैया। मरकट अपने बच्चों को पीठ पर लादे चढ़ रहे हैं विशालकाय चीड़ के आखिरी साख पर, बहादुर कंधे पर पुटली टांगे घर की ओर, शिकार की तलाश में गुलदार झुरमुट का आड़ लिए नदी के मुहाने पर बैठा है शांत। लटकती हुई जीभ से टपक रही है लार। यह वही समय है जब एक मजदूरनी अपने अंदर समेट रही है संपूर्ण पहाड़। कविता का शीर्षक है किसान और उनके बच्चे। ऐ धुआं जा सुदूर उन बादलों से जाकर कहना, खेतों में धान रेंड़ने लगे हैं, मकई के बालों में दुधे लगने लगे हैं और सनई में लगने लगे हैं फूल। कहना कि मखमली धूप से सजी गांव की नम और मुलायम सगंध पगडंडियों पर दादुर गा रहे हैं स्वागत गीत, पपीहे साधना रत हैं कबीर और रैदास की भांति, और मयूर कर रहे हैं कथक नृत्य। ऐ धुआं जा जाके कहना उन काले घने बादलों से कि किसान सिर पर गोबर की टोकरी, कंधे पर फावड़े और फेटे में सोहनी खुरपी लेकर निकल पड़े हैं अपने खेतों की ओर। निराई करती स्त्रियां गा रही हैं फसलों के मंगल गीत। कहना कि तुम्हारे इंतजार में उनके बच्चे घोघी डाले और हाथों में कागज की कश्ती लिए खड़े हैं अपने ओरी के पास। ऐ बिजलियों जरा धीमे चमकना, लोहू हाड़ मांस से निर्मित इन अन्य बच्चे क्रांति के बीज हैं, उनकी मुस्कान में मेरी मुस्कान है, उनकी सांसों में मेरी सांसें।
1: काव्य कौमुदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अमरजीत राम से उनका काव्य पाठ। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं विनीता मिश्रा।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं फिल्म साजन के इस नगमे के साथ। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, SP बाल सुब्रमण्यम की, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दीवाना का गीत, आवाज़ें थी साधना सरगम और कुमार सानू की, गीतकार थे समीर, संगीतकार थे नदीम श्रवण। 1942 अ लव स्टोरी, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं कुमार सानू और उनके साथ हैं कविता कृष्णमूर्ति।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मोहरा में उदित नारायण और अलका याग्निक को। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे विजू शाह। और लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म तक्षक का गीत, आवाज़ है सुजाता त्रिवेदी की, गीतकार महबूब, संगीतकार यार रहमान।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। इसमें लीजिए, सबसे पहले सुनिए चंद्र आत्मा के स्वर में ये गीत रचना।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता

0: में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का

0: दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
1: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय की आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति आईवीएफ क्लिनिक, एआरटी केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7-सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है।

0: ईरान ने अमरीका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमरीकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमरीकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defence and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top 3 economies driven by motto of grow more, achieve more. Addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. And now the news in detail. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deal was signed following

0: The India Meteorological Department, or IMD, today said that the southwest monsoon has covered the entire country. IMD has issued a red alert for very heavy rainfall over Uttarakhand tomorrow. The weather agency has predicted heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, East Madhya Pradesh and Madhya Maharashtra over the next 4 days. Meanwhile, parts of Delhi NCR witnessed light to moderate rain today. In FIFA World Cup, France will face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. The match will begin at 1:30 a.m. Indian time. Spain will take on Belgium in the second quarterfinal match tomorrow late night. In the remaining quarterfinal matches, Norway will play against England, while defending champions Argentina will clash with Switzerland on Sunday morning. In Wimbledon tennis, Carolina Mukova of Czech Republic has reached women's singles final. 10th seed Mukova defeated 7th seed American player Coco Gauff in the first semi-final of the women's singles this evening. Later in the second semi-final, Ukraine's Marta Kotsyuk will take on Czech player Linda Noskova. And in men's cricket, India will face England in the 4T20 International of the 5-match series at the County Ground in Bristol tonight. The match will begin at 10 p.m. Indian Standard Time. The Indian team trailed the series 0-2, making this a must-win game to stay alive. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia adopt a joint declaration on defence and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of the world's top three economies, driven by the motto of Grow More, Achieve More, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: Aadab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज़्यादा तरक्की करो, ज़्यादा हुसूलयाबी करो के नज़्बुल ऐन से मुतासर होकर दुनिया की तीन आला तरीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। ख्वातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह की माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है, जो IVF क्लिनिक के जवाबित से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायज़ा लेगी। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल होने वाली अहम अशिया पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी है, ताकि मुल्क में उनकी मैनुफैक्चरिंग को फ़रोग दिया जा सके। ईरान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने बुशहर न्यूक्लियाई बिजली के प्लांट के नज़दीक फजाई हमला किया। उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी बेसिस पर हमले किए। और फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन में आज रात पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश आमने सामने होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब ने मेलबर्न में आज तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना लीडर समिट में शिरकत की, जिसके दौरान दोनों लीडरों ने वफ्द की सतह की बातचीत की, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करना था। भारत बहरुल काहिल में अमन व इस्तेहकाम कायम करने की गरज से दोनों लीडरों ने दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के सिलसिले में संगे मील की हैसियत रखने वाले एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए। नीज सालाना वज़राए दिफा के मुज़ाकरात की बुनियाद रखी और समुद्री सरहद की सिक्योरिटी में शराकत दारी के मुत्तहिदा लाहे अमल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को दरख्शां जमहूरियत और अहम तरीन समुद्री ताकत करार दिया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस

0: गवर्नेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में एक अहम माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई कर सकेगा। उन्होंने साइबर, अहम तरीन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया भारत शराकत दारी और एक मखसूस अहम तरीन मिनरल्स कॉरिडोर को शुरू करने का भी ऐलान किया।
0: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: बाद में आज वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत ज्यादा तरक्की करो ज्यादा हुसूलयाबी करो के नजबुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की आला तरीन तीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत की इक्तिसादी और तकनीकी पेशरफ्त को उजागर किया।
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है, हम अधीर है, बेसब्र है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: बाहमी शराकत दारी के लिए भारतीय बिरादरी को क्रेडिट देते हुए जनाब मोदी ने साफ लफ्जों में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात आला तरीन बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग के एक ऐसे इकोसिस्टम का जिक्र करते हुए जो चिप्स से शिप्स तक फैला हुआ है, उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अदवियात साजी के तमाम शोबों में एक आलमी ब्रांड है। कलीदी नौयत की सिक्योरिटी और इख्तिरात की तरफ तवज्जो करते हुए वजीर आजम ने भारत के अपने घरेलू दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर आलमी भरोसेमंदी को उजागर किया। उन्होंने बिलखसूस ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंसदाद दहशत गर्दी के मुतायिन शुदा निशानों का जिक्र किया।
0: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को कसीर सकाफती पावर हाउस कहकर उसकी सताइश की, जो ऑस्ट्रेलिया की खुशहाली को आगे बढ़ाने में मुआविन है। उन्होंने भारतीय बिरादरी को एक कतई लिविंग ब्रिज कहकर उसकी तहसीन की। ये ऐसा पुल है जो कभी न रुकने वाली शराकत दारी की बुनियाद फराहम करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मार्वल स्टेडियम के अंदरून तहसीन और सताइश के बुलंद नारे एक बुनियादी हकीकत की बाजगश थे कि भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात उमूमी सफारतकारी से बहुत ज्यादा बुलंदी इख्तियार कर चुके हैं। वजीर आजम मोदी का ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक उमंगों भरे तरक्की याफ्ता भारत, जो आलमगीर मैन्युफैक्चरिंग फतूहात से आगे बढ़कर इंतहाई अहम नौयत की इंसानियत नवाजी पर मबनी इकदाम का तस्वुर है, यह साबित करता है कि एक मजबूत भारत पूरी इंसानियत की खिदमत अंजाम देता है। जैसा कि वजीर आजम अल्बानीज ने जोश व खरोश से भरपूर इस बिरादरी को कतई तौर पर खलीज को पाटने वाला लिविंग ब्रिज कहकर एजाज से नवाजा, जिससे ये बिल्कुल वाजह है कि भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के इक्तिसादी इंजनों और कलीदी दिफाई राहदारियों को सरगर्म तौर पर ताउन दे रही है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मेलबर्न में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात हमजहत नौयत के और तेजी से पेशरफ्त कर रहे हैं। ब्रिक्स मुल्कों की ख्वातीन वुजरा की मीटिंग आज कोची में ख़त्म हो गई। ख्वातीन और बच्चों की नशोनुमा की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ब्रिक्स ममालिक में ख्वातीन की नशोनुमा से मुतालिक कई मुश्तरका मसाइल पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुश्तरका मसाइल ब्रिक्स ख्वातीन वुजरा ट्रैक जैसे प्लेटफॉर्म की इंतहाई अहमियत को उजागर करते हैं, ताकि मेम्बर मुल्कों के दरमियान मुजाकरात को आगे बढ़ाया जाए और

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब पेश खिदमत है गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ। शायर हैं नदीम परमार।

कहकशा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद फैजन अहमद की आवाज में शकील बदायूनी की गजल। कितने दीपक तेरी यादों के जलाए मैंने, सैकड़ों गीत तेरे प्यार के गाए मैंने। अब कोई गीत न गाने की कसम खाता हूँ, जज्बाए दिल को कभी आबाद न होने दूंगा। इस फसाने का अब अंजाम न होने दूंगा, अपनी खातिर तुझे बदनाम न होने दूंगा। खुद हर इल्ज़ाम उठाने की कसम खाता हूँ, आज फिर तुझको भुलाने की कसम खाता हूँ।

शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं। रात हंस हंस के ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल। ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं।

हम दिसंबर में शायद मिले थे कहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और जुलाई भी आ गई। 120 दिन 120 सदियां गुजर भी गईं, तुम भी जीते रहे मैं भी जीती रही, ख्वाहिशों की सुलगती रेत पर जिंदगी दबे पांव चलती रही, चलती रही, झुलसती रही। खैर छोड़ो ये सब, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ, क्यों परेशान हो आखिर?

इसी गज़ल के साथ ही कहकशा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म तुम बिन टू का ये गीत। आवाज़ें हैं रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह की, गीत है शकील आजमी का, संगीतकार हैं अंकित तिवारी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जुर्म का गीत। आवाज़ें थी साधना सरगम और कुमार सानू की। गीत इंदिवर का, संगीतकार थे राजेश रोशन। और लीजिए अब सुनिए फिल्म बॉर्डर का गीत, आवाज़ है रूप कुमार राठौर की, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए संगीता शंकर का वायलिन वादन, राग है बागेश्री।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संगीता शंकर का वायलिन वादन, राग था भाग्यश्री। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही

में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है।

0: ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियुक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals." Prime Minister Narendra Modi today said, "India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of Grow More, Achieve More." Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said, "The operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defense systems in carrying out anti-terror operations." Mr. Modi said, "The India-Australia partnership has reached new heights, driven by shared values, strong people-to-people ties, and expanding cooperation across key sectors." He described the 1 million strong Indian diaspora as a vital pillar of bilateral relations. Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese described the Indian community as a living bridge between the two countries. Union Home Minister Amit Shah stated that a secure border, a prosperous border region, and a vigilant society together can make the country secure. The Home Minister said this while addressing a conference of superintendents of police, that is SPs, from border districts in New Delhi today. Mr. Shah said, "The government is creating a robust system to make the country completely infiltration-free." He noted that the Narendra Modi-led government has scientifically increased border infrastructure by 400%. Referring to the Vibrant Villages program, the Home Minister said that under the initiative, efforts are being made to prevent migration, create jobs and ensure 100% implementation of government welfare schemes. Mr. Shah said, "The government is fencing the over 1,600-kilometer-long India-Myanmar border at a cost of 31,000 crore rupees." He stressed the importance of ensuring that information on demographic changes caused by abnormal factors in border areas is communicated from the grassroots to the highest level at the earliest. The Home Minister stated that the government's objective